सत्य शिव है, सुंदर है और वही अनंत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आराधना कार्यक्रम अब समाप्त।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 अगस्त 2026 सुबह के 5:53 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में मुख्य समाचार, पर उससे पहले आइए आपको दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक छोटा सा विवरण। 6:02 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुप्रभात। 7:00 हिंदी में समाचार, 7:02 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। 9:00 हिंदी में मुख्य समाचार, 9:02 पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने। 10:00 अंग्रेजी में समाचार, 10:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आर। 11:00 हिंदी में मुख्य समाचार, 11:02 पर प्रस्तुत करेंगे आपका खास कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2:00 रेनबो पर।
3: दिल के तराने गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
1: सुनिए रोजाना शाम 8:00 से 9:00 तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

नमस्कार, सुबह के 6 बज चुके हैं। वक्त है एफएम रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचारों का। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की अधिसूचना जारी की। बंदरगाहों के जुड़ने से इलेक्ट्रॉनिक वीजा और भी उपयोगी हो जाएगा। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क न लगने का आश्वासन दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने देने की अपील की। कहा, गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को गिरफ्तार किया गया। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 111 लोगों की मौत, 87 से अधिक घायल, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आज से अगली पीढ़ी के खोजकर्ताओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य और नवाचार SHINE पहल का दूसरा संस्करण आयोजित कर रहा है। 2 दिन तक चलने वाला कार्यक्रम देश भर में 83 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। कपड़ा मंत्रालय आज नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन IIHT सूत्र 2026 का आयोजन करेगा। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात

हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान। और अंत में FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे। तो ये थे FM रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल 102.6 पर बहुत बहुत स्वागत है सभी श्रोताओं का। कार्यक्रम है सुप्रभात, मेरा नाम है नेहा। सुबह के 6 बज चुके हैं और कार्यक्रम सुप्रभात में होंगी दिन हमारी जिंदगी से जुड़ी, हमारे दिन से जुड़ी बहुत सी बातें और मधुर गीतों का साथ भी बना रहेगा। श्रोताओं, आज के दिन की बात करें तो आज मंगलवार का मंगलमय दिन है और साथ ही तारीख है 11। अगस्त का महीना चल रहा है, वर्ष है 2026 और हर नई सुबह हमारी जिंदगी में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आती है। बीते कल की थकान पीछे छोड़ जाती है, जो हुआ उसे जाने दो, जो होना है उसे मुस्कुरा कर आने दो। आज फिर से शुरुआत करो, खुद पर थोड़ा और विश्वास करो, क्योंकि हर नया सवेरा यही कहता है कि तुम्हारे लिए अभी बहुत कुछ अच्छा बाकी है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा, आपके सारे अधूरे काम पूरे एक बार फिर से हो जाएंगे, यही विश्वास मन में लेकर आइए। कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं आप और मैं साथ मिलकर सुप्रभात में। मैं हूं नेहा, आपके साथ सुप्रभात।

When you rise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive, to breathe, to think, to enjoy, to love. भाई बिल्कुल सही बात है. जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो मैं ये समझती हूँ कि हमें इस बात का शुक्राना अदा करना चाहिए कि हमारे पास एक बार फिर से जिंदगी को भरपूर तरीके से जीने का एक और अवसर मिल गया है. कई बार लोगों के बहुत से सपने होते हैं, बहुत सी आकांक्षाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, लेकिन जिंदगी नहीं होती. हमारे पास अगर जिंदगी है, हम सांस ले रहे हैं, हमारे पास वो हर जरूरत की चीज है जो होनी चाहिए, तो हमें ईश्वर का शुक्राना अदा करना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी, ये जीवन बहुत सुंदर है और बहुत ही बहुमूल्य है मेरे दोस्त.

मिलकर क्या बोले, बड़ा ही जटिल प्रश्न है। और इस गाने में मिलने मिलाने की बातें हो रही हैं, मुद्दा शादी का है। लेकिन हर बार हम हर किसी से सिर्फ इसी मुद्दे के लिए तो नहीं मिलते। क्या कभी आपने सोचा है कि हम हर रोज कितने लोगों से मिलते हैं, लेकिन हर मुलाकात अपने आप में कितनी खास होती है, इस बात पर हम कितना विचार करते हैं। जानते हैं कि जापान में एक खूबसूरत विचार है, इचिगो इचिए। इसका मतलब एक मुलाकात एक मौका, यानी सामने वाला इंसान वही हो सकता है, जगह वही हो सकती है, बातें भी शायद वही हो, लेकिन जो पल अभी हमारे सामने है वो दोबारा बिल्कुल उसी तरह नहीं आएगा। इसीलिए अगली बार जब भी किसी से मिलें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि इसके बाद क्या होगा, थोड़ा उस पल में भी रहिए, बहुत आवश्यक है। सामने वाले की बात ध्यान से सुनिए, थोड़ा मुस्कुराइए और उस मुलाकात को महसूस कीजिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ मुलाकातें छोटी होती हैं लेकिन उनकी यादें बहुत लंबी होती हैं। तो आज किसी से मिलें तो दिल से मिलिए, क्या पता ये मुलाकात फिर कभी उस तरह ना हो। और इसमें एक बात मैं भी जोड़ना चाहूंगी कि अपने आप से भी जरूर मिलिए, क्योंकि वो मुलाकात सबसे खास होती है मेरे दोस्त।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना

है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

सुबह के 6:24 हो चुके हैं। प्रोग्राम है सुप्रभात, मेरे साथ मेरा नाम है नेहा। एक प्यारा सा गाना आपको सुनवाती हूँ और उसके बाद बहुत प्यारा सा विचार आपके साथ साझा करूंगी।

629 बाय द रेनबो क्लॉक, सुप्रभात में नेहा है आपके साथ। और साथियों पता है, एक बात मैं सोच रही थी कि हम सिर्फ अपने आसपास जो बहुत ही नज़दीक लोग होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, सिर्फ उनसे तो नहीं जिंदगी के बारे में सीखते, हमारे पास और भी बहुत से मौके होते हैं जिनसे हम जिंदगी के बारे में बहुत कुछ लर्न करते हैं, सीखते हैं। जैसे कि डिफरेंट कंट्रीज की जो फिलोसफीज हैं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने जापानीज फिलोसफी के बारे में बात की थी, एक बार फिर से मैं आपका ध्यान वहीं जापान की ओर आकर्षित करना चाहूंगी, क्योंकि वहां की एक फिलॉसफी है जिसे हम इकिगाई कहते हैं, तो इसके बारे में बात करना चाहूंगी। क्या कभी हम इस बात पर विचार करते हैं कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे पास सुबह उठने की और जिंदगी में आगे बढ़ने की वजह क्या है, किस बात के लिए हम रोजाना इस विश्वास के साथ उठ जाते हैं कि मुझे टाइम पर उठना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो कोई ना कोई वजह तो हमारे पास हो सकती है। और जैसे कि मैंने कहा कि जापान में एक बहुत ही सुंदर शब्द है जिसे हम इकिगाई कहते हैं, इस पर कुछ किताबें भी हैं जो लोग कई बार मैं अक्सर देखती हूँ मेट्रो में या फिर कई और अवसरों पर मैं उन्हें वो किताब पढ़ते हुए देखती हूँ, जिसका मतलब है जीने की वजह, वो चीज़ जो हमारी ज़िंदगी को मायने देती है। अब ज़रूरी नहीं कि हर किसी का इकिगाई कोई बहुत बड़ा सपना हो, कोई बड़ी नौकरी, बड़ी उपलब्धि या कोई बड़ा मकसद ही हो, ऐसा नहीं है। कभी कभी हमारी छोटी छोटी खुशियाँ ही हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं, जैसे कि किसी अपने से बात करना, अपने पसंद का काम करना, किसी की मदद करना, या फिर सुबह की चाय के साथ कुछ पल सुकून के बिताना, आराम से बैठना और ज़्यादा विचार अपने दिमाग में न लाना। इसीलिए अपनी जिंदगी की परफेक्ट पर्पस खोजने का दबाव अपने आप पर मत डालिए, बस ध्यान दीजिए कि कौन सी चीज आपको भीतर से खुशी और संतुष्टि प्रदान करती है। क्योंकि हो सकता है कि आपका इकिगाई कोई बहुत बड़ी मंजिल नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में छुपी कोई छोटी सी ही खुशी हो। और फिर देखिए, जब हमें इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई मेरी जिंदगी में वो क्या है जिसके लिए मैं दिल से कहूँ कि हाँ, यही तो है वो वजह जिसके लिए मुझे रोज अलार्म लगाना है, मुझे रोज समय से उठना है और चेहरे पर सच में, यकीन मानिए, प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ ही जिंदगी का स्वागत करना है।

0: जिया की बातें हो रही हैं और मेरे जिया में सच में आपसे बात करने के लिए बहुत कुछ है। और अभी फ़िलहाल कार्यक्रम में एक छोटे से एड ब्रेक के बाद मैं लौट कर जब आऊँगी ना, आप प्लीज़ मेरे साथ रुकिएगा, मेरा इंतज़ार कीजिएगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि दिल में बहुत वक्त से एक बात है और सोचा आज सुप्रभात में अच्छा मौका है, मैं आपसे वो दिल की बात कह दूँ। आप सुनेंगे ना?
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चारकर्ता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार।

और आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल पर सुप्रभात में मैं नेहा एक बार फिर से मुखातिब हो चुकी हूँ आपसे। सुबह के 6:45 होने ही वाले हैं कुछ ही पलों के बाद। और अब मैंने आपसे कहा था कि दिल की बात आपके साथ साझा करनी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे कह सकती हूँ, मुझे उस बात का एक कम्फर्ट फील होता है आपसे बात करने के लिए, और दिल में बात आई है तो कहना ज़रूरी है। और शुक्रिया इस बात के लिए कि आपने मेरी प्रतीक्षा की। और अब वो बात जो मैं करना चाहती हूँ आपसे, हम अक्सर अपने शहर के बारे में बहुत सी बातें कह देते हैं, यूं ही बेसाख्ता हमारे मुंह से निकल जाती हैं कि भाई ये नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, ये व्यवस्था होनी चाहिए, प्रशासन ने ये नहीं किया, शहर साफ होना चाहिए। लेकिन क्या कभी भी दिन के किसी भी पहर में, जिंदगी के किसी भी मौके पर हम ये विचार करते हैं या ये सवाल खुद से पूछते हैं कि इस शहर को बेहतर बनाने में मेरा क्या योगदान है? सिर्फ मेरा, किसी और का नहीं। सिविक सेंस, आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, बहुत बात होती है इसके बारे में। हम अक्सर, मैं सोशल मीडिया जब भी स्क्रॉल करती हूँ तो वहाँ पर कुछ वीडियोस होती हैं कि किसी ने यहाँ कचरा फेंक दिया, या किसी ने लाइन तोड़ दी जहाँ लाइन लगी थी, या फिर कहीं ट्रैफिक नियम का पालन नहीं किया, या फिर और कोई असुविधा अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी क्रिएट कर दी। और वहाँ फिर लोग बहुत सारे कॉमेंट्स करते हैं कि सिविक सेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग कॉमेंट्स कर रहे होते हैं और जो लोग कुछ गलत कर रहे होते हैं, हमेशा ये दो भागों में क्यों बढ़ जाते हैं? क्यों एक ही विचार हमारे मन में नहीं आता कि हम सभी सिविक सेंस का पालन करें? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है दोस्तों कि हम कूड़ा सड़क पर ना फेंकें, लाल बत्ती पर रुक जाएं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं, लाइन में अपनी बारी का सब्र से इंतजार करें बिना अपना आपा खोए, और सड़क पर चलते हुए दूसरे लोगों की सुविधा का भी ख्याल रखें। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन्हीं से तो एक सभ्य समाज बनता है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? मुझे करेक्ट जरूर कीजिएगा अगर मैं कहीं किसी भी बात को गलत कह रही हूँ। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग तो अपनी जिम्मेदारी समझें, लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत हम से ही होती है, मुझ से ही होती है शुरुआत। क्योंकि शहर सिर्फ वो जगह नहीं जहाँ हम रहते हैं, शहर वो जगह है जिसे हम सब मिलकर बनाते हैं। ये हमारा घर है, शहर से मिलकर हमारा देश बनता है। हमारा देश हमारा घर है, हमारा गौरव है, हमारा सब कुछ है। तो आज एक छोटी सी कोशिश हमें करनी चाहिए कि किसी अधिकारी को हम जिम्मेदारी याद दिलाने की बजाय अपने आप को बस ये कहें कि मेरी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं होगा जो किसी भी तरह का नुकसान इस पृथ्वी को, इस शहर को, इस समाज को पहुंचाएगा। और पता है, बहुत से एग्जांपल्स मैं अपने आसपास देखती हूँ, बड़ा दिल दुखता है। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि अगर मेरे सामने कुछ सही नहीं हो रहा है तो मैं उसको टोक देती हूँ, लेकिन कई बार इस बात का भी मुझे ख्याल रखना पड़ता है कि सामने वाला कितना तैयार है मेरी बात सुनने

अब जैसे कि हम कई बार मेट्रो में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, या कोई और वाहन पब्लिक व्हीकल में हम लोग सफ़र करते हैं, कम्यूट करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पर नियम होते हैं कि आप तेज़ आवाज़ में संगीत ना बजाएं या फिर कूड़ा इधर उधर ना फेंकें। तो लोगों को अगर ये बात आप कहते हो तो भाई वो सुनने को तैयार नहीं होते, आपसे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, और यकीन मानिए सपोर्ट में शायद ही कोई आपके आता है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मुझे गलत को रोकना है और गलत आगे बढ़ने से उसको नहीं मुझे आगे बढ़ने देना है, तो मैं अपना काम करती हूँ। क्या हमें मिलकर ये काम नहीं करना चाहिए? अगस्त का महीना चल रहा है, कुछ दिनों में हम आज़ादी का दिवस मनाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस, वो हर भारतीय के लिए है। तो साथ में ये विचार भी मन में अगर आ जाए कि हम सिर्फ तिरंगा फहराकर देशभक्ति का प्रतीक समझते हैं, या फिर छोटी छोटी जिम्मेदारियां जो हमारा काम है, हमें किसी को दिखाना नहीं है कि देखिए मुझे मेडल मिलेगा ये करने के लिए, ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। सिर्फ इसलिए कि हम बस फिक्र करते हैं, हम चिंता करते हैं, हमें एहसास है इस बात का कि हम इस प्यारे से देश में रहते हैं, बहुत सुंदर से शहर में रहते हैं, और इसको सुंदर बनाए रखना, इसकी निर्मलता को बनाए रखना मेरी ही जिम्मेदारी है। बस यही छोटी सी बात आपसे करनी थी, और मैं आशा करती हूँ कि मेरी बात आप ज़रूर समझ पाए होंगे। जो मैं कहना चाहती थी वो मैंने ज़रूर आप तक पहुँचाने की एक हम्बल सी कोशिश की है।

वक्त तो मेरा भी लौट चलने का आ गया है, लेकिन लौट कर वापस जरूर आऊंगी, इस बात का वादा करती हूँ। और आपको बता दूं कि आप अब से कुछ ही देर बाद कौन कौन से कार्यक्रम सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल 102.6 MHz के माध्यम से। फिलहाल हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है सुबह के 6:54 और ठीक 7 होंगे हिंदी में समाचार, और 7 के बाद कार्यक्रम रहेगा 7 से 8 के बीच में गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का पहला घंटा। उसके बाद सुबह 8 एक बार फिर से होंगे हिंदी में समाचार, और उसके बाद 8 से 9 के बीच में वक्त रहेगा गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का दूसरा घंटा आप सुनेंगे, जिसमें होंगी दिल्ली NCR की बहुत सारी जानकारियां, और आज कुछ खास बातें भी इस कार्यक्रम में होंगी 8 से 9 के बीच में। मैं नेहा उस कार्यक्रम में आपका साथ निभाऊंगी। सुबह 9 होंगे हिंदी में समाचार, और 9 से 10 के बीच में आप सुनिए आपका पसंदीदा और मेरा भी पसंदीदा कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने। और साथ ही इसी तरीके से आगे भी आकाशवाणी दिल्ली पर कार्यक्रमों का सिलसिला बादस्तूर जारी रहेगा। और अब वक्त हो गया है कि मैं आपसे लूं अनुमति, आपसे मिलूंगी 8, तब तक आप अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखिएगा और आकाशवाणी दिल्ली के साथ बने रहिएगा। यहां आपको ताजा तरीन जानकारी और साथ में बहुत सारा मनोरंजन, पूरा एक पैकेज आपके लिए हम तैयार रखते हैं। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आंटी नंबर 1 से, ये बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग सिर्फ आपके लिए आ रहा है मेरी प्लेलिस्ट से। क्या गाना है, बहुत समय बाद ये गाना मुझे मिला था तो मैंने सोचा भाई अपनी प्लेलिस्ट में इसे जरूर जरूर शामिल करना है। एंजॉय कीजिए इसे, मैं मिलती हूँ आपसे ठीक 8, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी मिली। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने देने की अपील की। कहा, गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस GeM पर सही गुणवत्ता से सही कीमत वाले सही उत्पाद को सही समय पर खरीदा जा सकता है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हुआ। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल प्रोफेसर बिमल पटेल से मुलाकात की। श्री पटेल को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण का जज चुना गया है। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 111 लोगों की मौत हुई, 87 से अधिक घायल और कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आज से अगली पीढ़ी के खोजकर्ताओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य और नवाचार पहल का दूसरा संस्करण आयोजित कर रहा है। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश भर से 83 स्थानों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। वस्त्र मंत्रालय आज नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन IIHT सूत्र 2026 का आयोजन करेगा। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

तो आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल 102.6 प्रोग्राम शुरू हो चुका है। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करते हैं शहीद खुदीराम बोस की, जो कि भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। उनके मन में बचपन से ही देशभक्ति और अंग्रेजी शासन के प्रति विरोध की भावना थी। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद वे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए और क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से जुड़ गए थे। आपको बता दें, 30 अप्रैल 1908 को उन्होंने अपने क्रांतिकारी साथी प्रफुल्ल चाकी के साथ मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश अधिकारी किंग्सफोर्ड को निशाने बनाने का प्रयास किया। इस घटना में किंग्सफोर्ड तो बच गया, लेकिन बग्घी में सवार दो महिलाओं की मृत्यु हो गई। इसके बाद खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया गया। और आपको बता दें, गिरफ्तार होने के बाद उन पर मुकदमा चलाया गया और फिर अदालत ने खुदीराम बोस को मृत्युदंड की सजा सुनाई। 11 अगस्त 1908 को, यानी कि आज के दिन ही वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर जेल में उन्हें फांसी की सजा दी गई। उस समय उनकी उम्र केवल 18 वर्ष और 8 महीने की थी। उनकी वीरता और बलिदान ने देश के युवाओं में आज़ादी की भावना को और भी मजबूत किया और फिर वे भारतीय इतिहास में एक अमर शहीद के रूप में जाने गए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और अब समय इतिहास के पन्नों में झांक कर देखने का और आपको बताने का कि आज के दिन ऐसी कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी थी इतिहास में जिनका जिक्र हम आपके सामने कर रहे हैं। आपको बता दें कि 11 अगस्त का जो इतिहास है भारत के लिए कई मायनों में बड़ा खास है। वर्ष 1961 में आज के दिन ही दादरा और नगर हवेली का भारत में विधिवत विलय हुआ था और ये केंद्र शासित प्रदेश बना था। इससे इस क्षेत्र का प्रशासनिक रूप से भारत के साथ एकीकरण पूरा हुआ और ये सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत आ गया। वर्ष 2021 में आज के दिन ही भारत ने DRDO की स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था और इस परीक्षण ने देश की स्वदेशी रक्षा तकनीक और मिसाइल निर्माण क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी। आपको बता दें कि वर्ष 1947 में आज के दिन ही संविधान सभा और अंतरिम सरकार से जुड़े महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम जारी हुए थे और वर्ष 1961 में आज के दिन ही भारत की अंतरिक्ष और वैज्ञानिक कार्यक्रमों के विकास की दिशा में संस्थागत प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए एक मंजूरी दी गई थी। वैश्विक इतिहास की बात करें तो वर्ष 1919 में आज के दिन ही जर्मनी में वाइमर संविधान लागू हुआ था जिससे जर्मन गणराज्य की संवैधानिक व्यवस्था की नींव रखे जाने में सफलता मिली थी। वर्ष 1965 में आज के दिन ही अमेरिका के लॉस एंजल्स में वॉट्स दंगे शुरू हुए थे जो अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल है। तो ये थी ऐसी प्रमुख कुछ घटनाएं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपनी खास पहचान बना करके रखी हुई है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

ये है आकाशवाणी का FM रेनबो और समय है कुछ जानी मानी हस्तियों को याद करने का। तो आपको बताते, सबसे पहले हम याद कर रहे हैं पैदी जयराज को। ये वो नाम है जो भारतीय सिनेमा में एक प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और निर्माता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत मूक फिल्मों से की थी और लगभग 170 फिल्मों में अभिनय किया। उनकी प्रमुख फिल्मों की हम बात करें तो शाहजहां, इंसानियत, हरामखोर, राजपूत, परदेसी, शोलाए, डॉन, मासूम और खून भरी मांग शामिल है। उन्होंने प्रतिमा

सागर और मोहर जैसी फिल्मों का निर्देशन किया था और ऐतिहासिक भूमिकाएं निभाने के लिए विशेष तौर पर जाने जाते थे, जैसे कि महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और अमर सिंह राठौर। उन्होंने हिंदी के साथ साथ मराठी, गुजराती और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया था। भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1980 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। आज भी भारतीय सिनेमा में उनके लंबे और महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें सम्मान के साथ में याद किया जाता है। फिलहाल एक खूबसूरत सा गीत हम लेकर के आए हैं आपके लिए, इसे आप सुने।

बहुत ही खूबसूरत इस ट्रैक को आपने सुना आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल पर। और श्रोताओं आपको बता दें कि आज ही पुण्यतिथि है वीएस नायपॉल की, जो कि भारतीय मूल के जाने माने ब्रिटिश लेखक और उपन्यासकार थे। उनका नाम था विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल और त्रिनिदाद में उनका जन्म हुआ था। और उनकी प्रमुख रचनाओं में हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, इन अ फ्री स्टेट, द मिमिक मैन, अ बेंड इन द रिवर, द एंजिमा ऑफ अराइवल शामिल हैं। और उनके लेखन में उपनिवेशवाद, प्रवास, पहचान और बदलते समाज जैसे विषयों को प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। उन्हें वर्ष 1971 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और वर्ष 2001 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और इससे पहले उन्हें 1990 में नाइटहुड सर की उपाधि भी प्रदान की गई थी। वे अंग्रेजी साहित्य के सबसे चर्चित और प्रभावशाली लेखकों में से गिने जाते हैं और उनकी रचनाओं ने उपनिवेशवाद के बाद के समाज और प्रवासी जीवन को साहित्य में विशेष तौर पर स्थान दिया था। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत एफएम रेनबो पर।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

और जो तो आपको बता दें कि आज ही हम याद कर रहे हैं लाल मणि मिश्र को, जो कि जाने माने शास्त्रीय संगीतक, संगीत शास्त्री और वाद्य विशेषक थे। उनका जन्म आज के दिन ही कानपुर में हुआ था 1924 में। आज आपको बता दें कि विशेष तौर पर विचित्र वीणा और सितार के कुशल वादक के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और संगीत की शिक्षा और इसमें होने वाले शोध को भी बढ़ावा दिया था। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत विभाग से जुड़े रहे और वहां उन्होंने संगीत को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको बता दें, पंडित लालमणि मिश्र ने भारतीय वाद्यों और संगीत पर कई महत्वपूर्ण लेख लिखे और पुस्तकें लिखी जो आज भी पढ़ी जाती हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक रही है तंत्रनाद, जो कि भारतीय संगीत और वाद्य परंपरा से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में मानी जाती है। वे भारतीय संगीत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और परंपरागत ज्ञान के समन्वय के समर्थक रहे और उन्हें उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा और भी उन्हें कई सम्मान प्रदान किए गए थे।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल 102.6। और आपको बता दें कि आज जयंती है यशपाल शर्मा की, जो कि भारत के एक प्रसिद्ध क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के महत्वपूर्ण बल्लेबाज थे। मुख्य रूप से मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते थे और दाएं हाथ के खिलाड़ी थे। उन्होंने भारत के लिए 37 क्रिकेट टेस्ट मैच और 42 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले थे और उनका जो करियर था वो 1978 से लेकर 1985 तक रहा था। आपको बता दें कि वे 1983 में क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के प्रमुख सदस्यों में शामिल थे। विश्व कप के सेमीफाइनल में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 61 रन की महत्वपूर्ण पारी खेल करके भारत की जीत में अपना एक अहम योगदान दिया था। यशपाल शर्मा ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में 1606 रन और एक दिवसीय मैचों में 883 रन बनाए थे और क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वे भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ता भी रहे थे। और उन्होंने आपको बता दें कि कई बार ऐसे मौक़ों पर शानदार प्रदर्शन किया जब भारतीय टीम को महत्वपूर्ण रूप से जीत के लिए उनकी ज़रूरत रही। और आज जन्मदिन है अंजू जैन का, जो कि भारत की पूर्व महिला क्रिकेटर और विकेट कीपर बल्लेबाज रही हैं। उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए टेस्ट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और विकेट कीपिंग के साथ साथ उपयोगी बल्लेबाजी के लिए भी जानी जाती हैं। उन्होंने भारत के लिए 8 क्रिकेट टेस्ट मैच और 65 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय

मुकाबले खेले थे। उनके नाम पर टेस्ट क्रिकेट में 338 रन और वनडे में 1179 रन दर्ज हैं। और आपको ये बता दें कि क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने कोचिंग और महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया था। फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपके लिए रेनबो पर, एंजॉय कीजिए इसे आप।

हर्षो, तो आपको बता दें कि आज ही जन्मदिन है हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता, निर्माता और उद्यमी सुनील शेट्टी का। उन्होंने 1992 में फिल्म बलवान से बॉलीवुड में अपने अभिनय की शुरुआत की थी। उनके मुख्य फिल्मों की हम बात करते हैं तो रक्षक, मोहरा, दिलवाले, गोपी किशन, बॉर्डर, हेरा फेरी, धड़कन, फिर हेरा फेरी और मैं हूं ना जैसी फिल्में शामिल हैं। विशेष रूप से एक्शन, कॉमेडी और गंभीर भूमिकाओं के लिए उन्हें जाना जाता है और फिल्म धड़कन में उनके अभिनय को काफ़ी सराहा गया था, जो कि ग्रे शेड में था, और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार मिला और कई फिल्मों का उन्होंने निर्माण भी किया था। खेल नो ऑर्डिनरी गेम जैसी फिल्मों के निर्माता के रूप में वो जुड़े रहे। अभिनय के अलावा भी कई

व्यवसाय में जुड़े रहते हैं और उनकी फिल्मों की अगर हम बात करते हैं तो फिल्म हेरा फेरी में निभाया गया उनका श्याम का जो किरदार है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमारे घर के आसपास के किसी एक लड़के का ही किरदार है। वाकई अपने आप में एक दिलचस्प अभिनेता तो हैं ही, साथ में अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीतने में भी आगे रहते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो उन पर फिल्माया गया है, इसे आप सुनिए, एंजॉय कीजिए।

0: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: हर्षिता, अब आपको ये बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच में पहला क्रिकेट टेस्ट मैच 15 अगस्त को गॉल के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। बहुत दिनों बाद भारतीय टीम श्रीलंका का दौरा कर रही है और इस टीम में बैटर सरफराज खान को 2 साल बाद टीम इंडिया में शामिल किया गया है। उन्हें श्रीलंका दौरे पर चोटिल साई सुदर्शन की जगह टीम में शामिल किया गया है। सरफराज ने पिछला टेस्ट मैच 2024 में न्यूजीलैंड के साथ खेला था और अभी तक वो 6 टेस्ट मैच ही खेल पाए हैं। फिलहाल मेरे चलने का थोड़ी देर के लिए समय हो चला है। नेहा आपके साथ में होंगी एक बार फिर से थोड़ी देर में। आप

नमस्कार, सुबह के 8 बज चुके हैं। अब वक्त है एफएम रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचारों का। संसद ने कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीआई लेनदेन पर कोई भी शुल्क न लगाने का आश्वासन दिया। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी मिली। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से संसद के सुचारू संचालन की अपील की। कहा, गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की अधिसूचना जारी की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर उचित गुणवत्ता के उचित मूल्य वाले उत्पाद की खरीदारी होती है। झारखंड विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल NSP के माध्यम से पूरे देश के कृषि विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप जारी की। इजराइल में भारत के राजदूत JP सिंह ने इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोगी एजेंसी मशाव की प्रमुख एनात शलीन से यरूशलम में मुलाकात की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल प्रोफेसर बिमल पटेल से मुलाकात की। श्री पटेल को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण का न्यायाधीश चुना गया है। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत, 570 से अधिक घायल, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आज से अगली पीढ़ी के खोजकर्ताओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य और नवाचार SHINE पहल का दूसरा संस्करण आयोजित कर रहा है। 2 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम देशभर में 83 स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। वस्त्र मंत्रालय आज नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन IIHT सूत्र 2026 का आयोजन करेगा। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान। और अंत में, नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल U23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। तो ये थे FM रेनबो दिल्ली पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल 102.6 पर गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। इस कार्यक्रम का ये दूसरा घंटा 8 से 9 के बीच में आप रोजाना सुनते हैं, जहां बातें होती हैं दिल्ली NCR की खास खबरों के बारे में। और आज के शो में और भी बहुत सी खास बातें जुड़ गई हैं जो आपको डेफिनेटली सुनने को मिलेंगी जब आप मेरे साथ 8 से 9 के बीच में बने रहेंगे। तो आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नेहा और आज हम बहुत सी ऐसी चीजें भी करेंगे जो आप रोजाना नहीं करते हैं भाई। क्या बातचीत करेंगे और क्या, और बहुत सारा प्यारा प्यारा संगीत यहां सुनेंगे। खास व्यक्ति से भी हमारी फोन लाइन के माध्यम से बात होगी और आपको मिलेगी बहुत ही बढ़िया सी जानकारी। और आज जब आप अपने काम के लिए निकले हैं ना, तो याद रखिएगा कि 1000 बर्क गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो अगर आप वो फूल हैं जो खिलने वाले हैं, तो फिर वो हौसला रखिए, क्योंकि आपको खिलने से कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से वेलकम है जी आपका गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में, नेहा देनाल।

हर घर तिरंगा। साथियों, तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये हमारी आजादी, हमारी पहचान और करोड़ों भारतीयों के गौरव का प्रतीक है। इसी भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए शुरू किया गया हर घर तिरंगा अभियान। इस वर्ष अभियान 9 से 17 अगस्त 2026 के बीच देश भर में मनाया जा रहा है। इस बार का अभियान हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने की भावना से भी जुड़ा हुआ है। इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए आप अपने घर पर सम्मान पूर्वक तिरंगा फहरा सकते हैं, तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी लेकर अभियान में भाग ले सकते हैं और देशभक्ति से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। अभियान की आधिकारिक वेबसाइट www.harghartiranga.com है। इस वेबसाइट पर तिरंगा फहराने का सही तरीका, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, सेल्फी अपलोड करने की प्रक्रिया, वॉलंटियर प्रोग्राम, तिरंगा से जुड़ी कहानियां, वीडियोस और डाउनलोडेबल सामग्री सहित कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध हैं। और याद रखिए, हर घर तिरंगा केवल घर पर झंडा फहराने का अभियान नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान, राष्ट्रीय एकता और देश के प्रति नागरिकों की भागीदारी की भावना को मजबूत करने का एक जन अभियान है। तो इस स्वतंत्रता दिवस अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराइए पूरे सम्मान के साथ। हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा।

0: सुबह के 8:16 हो चुके हैं एफएम रेनबो दिल्ली के स्टूडियो की घड़ी के अनुसार। और सिर्फ ये तिरंगा नहीं, इस देश की हर वो खास बात गूंजेगी जो इस देश को बहुत ही खास और यूनिक बनाती है। साथियों, ओडिशा के ग्रामीण कारीगरों और बुनकरों के खूबसूरत हुनर को दिल्ली वासियों तक पहुंचाने के लिए ऑरमास लेकर आया है दिल्ली पॉपअप स्टोर 2026। यहां ओडिशा के हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स और कई पारंपरिक प्रोडक्ट्स देखने और खरीदने का मौका है दिल्ली एनसीआर के लोगों के पास। और इस खास पहल के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ और मास से हमारे साथ जुड़ गए हैं श्री सत्य सर। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: थैंक यू मैम। नमस्कार नमस्कार
0: सर। आपको सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और मास का एक पॉपअप स्टोर दिल्ली में शुरू हो रहा है, आज उसका इनॉग्रेशन है, बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब आप हमारे श्रोताओं को बताएं इस खास पहल के बारे में।
1: थैंक यू मैम। एक्चुअली मैं तो डेप्यूटी ओरमास ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एंड ओरमास तरफ से दिल्ली वासियों और ओडिशा के भी जितने लोग दिल्ली में रहते हैं सबको मेरा प्रणाम। मैं उनको स्वागत करना चाहूंगा। आपको पता है ओरमास सिंस लॉन्ग टाइम से टू प्रमोटिंग ओडिशा वीवर्स एंड ओडिशा आर्टिशियंस। हम ओडिशा का आर्टिशियंस जो है वीवर्स है उनका फैमिली को हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो दिल्ली में हमारा ये जो डीएलएफ अभिनू में जो हमारा पॉपअप स्टोर है ये लिमिटेड पीरियड के लिए ओपन रहेगा। हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है तो टू प्रमोट आवर रिच कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ ओडिशा एंड डायरेक्ट सपोर्ट टू यूवर्स फैमिलीज। देन हम कैसे के वाइड रीच पब्लिक का पास हमारा वाइड रीच रहेगा ये प्रोडक्ट को लेके। आपको पता है डीएलएफ अभिनू एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारा ओडिशा का जो वीवर्स है जीआईटीआर प्रोडक्ट है, हमारा जो ओडीएपी प्रोडक्ट है जैसे कि कोटपाट साड़ी, टसर साड़ी, हमारा बमकई पाट, संबलपुरी साड़ी, ये सब अवेलेबल रहेगा। ये हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है।
0: जी सत्य सर, जैसे ही आपने साड़ियों की बात करी ना तो मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ जरूर आने वाली हूँ।
1: बिकॉज वेलकम वेलकम वेलकम
0: जी, इंडियन हैंडलूम बहुत पसंद है और बहुत ही अच्छा एक मौका है। सर आप हमें ये बताएं कि जो हमारे ओडिशा के रूरल आर्टिसंस हैं, वीवर्स हैं, दिल्ली जैसे बड़े

0: मार्केट से जब वो जुड़ेंगे तो ये इनिशिएटिव उनकी मदद किस तरह करेगा?
1: यस यस एक्चुअली अब देखिए क्या होता है ना, ओडिशा में क्या उनका पास बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है हमारा वीवर्स को, आर्टिशियन को, ये ओनली ओडिशा का अंदर ही रह जाता है। उनका पीछे जो बड़ा स्टोरीज है वीवर्स का, फैमिली का जो स्टोरीज है, वो एक्चुअली बाहर नहीं आ पाता है। तो ये हमारा एक छोटा प्रयास है, डीएलएफ एवेन्यू जैसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल बायर आते हैं, अच्छा पोर्टफोलियो रहता है, तो डायरेक्ट कैसे कंज्यूमर का पास, कस्टमर का पास हमारा वीवर्स का प्रोडक्ट हम लेके आए हैं, ये एक डायरेक्ट लिंक रहेगा बिटवीन वीवर्स एंड कस्टमर्स ऑफ दिल्ली एंड इंटरनेशनल नेशनल लेवल बायर्स।
0: दैट्स राइट सर, और साथ में आप हमारे श्रोताओं को ये भी बता दीजिए कि इसके दिन क्या रहेंगे, कब से कब तक ये एग्जीबिशन और कम सेल है, साथ ही इसके टाइमिंग्स क्या रहेंगे?
1: एक्चुअली एज यू नो टूडे हमारा जो पंचायत राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट का ऑनरेबल मिनिस्टर ये पॉपअप स्टोर को इनॉग्रेशन करेंगे, हमारा साथ भी हमारा सेक्रेटरी सर भी, कमिश्नर कम सेक्रेटरी सर भी रहेंगे, हमारा ओरमास का जो डायरेक्टर डॉक्टर मुनिका प्रियदर्शन मैडम भी आज आ रहे हैं, वो प्रोग्राम में अटेंड करेंगे। तो आज हमारा इनॉग्रेशन है, तो ये हमारा 10 सितंबर तक भी ओपन रहेगा, टाइमिंग रहेगा 10 सुबह मॉर्निंग 10 से शाम रात 10 तक ओपन रहेगा। तो किसी भी टाइम पे आप आइए, जो ड्यूरिंग टाइम आवर है, तो हमारा ये जो वीवर्स से मिलिए, और हमारा जो जादू है ओडिशा का कल्चर हेरिटेज है, वीवर्स का जो जादू है, आप एक बार स्टोर पे आके उसको आप थोड़ा देखिए और सपोर्ट कीजिए हमारा वीवर्स को।
0: बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल, अपने वीवर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे। साथ ही एक बार मैं रिमाइंड कराना चाहूंगी हमारे सभी श्रोताओं को कि हमें अब हमारे सभी श्रोताओं को आना है डीएलएफ मॉल साकेत में, क्या मैं सही बोल रही हूँ सर?
1: ग्राउंड फ्लोर में हमारा जो पॉपअप स्टोर है वो ग्राउंड फ्लोर में, तो आप एंट्री जब करेंगे पहले आपको ओरमास का पॉपअप स्टोर ही सामने आएगा, तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर में, ये मैं श्रोता को बताना चाहूंगा, हमारा ग्राउंड फ्लोर तो ही है।
0: बिल्कुल सही बात है सर, और अब चलते चलते एक बार फिर से आप हमारे सभी लिसनर्स को बता दीजिए क्या उनसे कहना चाहेंगे, किस तरह से आप उन्हें इन्वाइट करना चाहेंगे इस इवेंट पर।
1: डेफिनेटली मैं दिल्ली वासियों को मेरा ये रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, आपको पता है ओडिशा का गवर्नमेंट कितना सपोर्ट दे रहे वीवर्स को, उनका लाइवलीहुड में कैसे एनहांसमेंट हो, उनका पीछे जो स्टोरीज है वीवर्स का और आर्टिशियन का, कैसे वो कला में हमारा, जैसे कि आप बोलेंगे तो कटक का जो सिल्वर फिलीग्री है, डोकरा है, ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट का जो डोकरा प्रोडक्ट है, जीआई टैग का टसर है, हमारा जो कोटपाट साड़ी है, हमारा ये जो पट्टचित्र वाला कला है पुरी का, जगन्नाथ का देश बोलते हैं ओडिशा को, आप आइए हमारा ये जो ओडिशा का कारीगर का जो जादू है, आप हमारा स्टॉल पे आके देखिए और हमारा व्यूवर्स को सपोर्ट दीजिए। मैं ये मेरा रिक्वेस्ट है, पहली बार एक पहला इनिशिएटिव है, फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव ओरमास का है, तो अगर आप एक बार आइए हमारा स्टोर पे और हमको सपोर्ट कीजिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है दिल्ली वासी और ओडिशा का भी, जितने लोग दिल्ली में रहते आप ओडिशा को प्यार करते हो, तो हमारा स्टॉल पे आइए और हमारा सपोर्ट, आपका सपोर्ट रहेगा हमारा ये वीवर्स फैमिली के लिए।
0: बिल्कुल आएंगे सर, अब आप बेफिक्र हो जाइए, आप देखिए वहाँ कितने दिल्ली एनसीआर के लोग पहुँचते हैं, आप शायद भीड़ को संभाल नहीं पाएंगे, इतने लोग वहाँ पहुँचेंगे।
1: थैंक यू ये दिल्ली वासियों का ये मेहरबान होगा हमारा वीवर्स फैमिली के लिए, तो हमारा जो इनिशिएटिव है ये भी हमको और भी प्रेरित करेगा, अगले दिन में हम कैसे और उसको आगे ले जाए, हमारा ओडिशा का प्रोडक्ट कैसे और दिल्ली में और ज्यादा से ज्यादा पहुंचा जाए, ये हमारा काम रहेगा।
0: जी सर बिल्कुल, और बहुत सारी शुभकामनाएं आकाशवाणी दिल्ली की ओर से आपको इस इनिशिएटिव के लिए, और क्योंकि इंडिपेंडेंस का ये हमारा पर्व चल रहा है तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं इस बार के स्वतंत्रता दिवस की, और एक बहुत ही सुंदर गाना मैं आपको और सभी लिसनर्स के लिए प्ले कर रही हूँ। नमस्कार सर।
1: नमस्कार नमस्कार, मेरे तरफ से और मेरा डिपार्टमेंट तरफ से एफएम रेनबो की भी बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं, इतना हमको प्लेटफॉर्म मिला हमारा प्रोडक्ट हमारा कल्चर को दिल्ली वासियों का पास पहुंचाने में जो सहायता किया, और मेरा तरफ से मैं आपको दोबारा धन्यवाद देना चाहूंगी।
0: थैंक यू सो मच सर।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

साथियों, जब हम 18 वर्ष की उम्र में होते हैं तब क्या कर रहे होते हैं? पढ़ाई, दोस्तों के साथ समय बिताना या फिर मोबाइल पर वीडियो देखना? बेफिक्र होते हैं हम। आमतौर पर 18 वर्ष की उम्र में युवा अपने जीवन को सफल बनाने की तैयारी में लगे होते हैं। क्या पढ़ना है, कौन सा कोर्स करना है, कहां से करना है, कितने नंबर लाने हैं, पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी कैसी होगी, वगैरह वगैरह सवाल हमारे मन में होते हैं। जीवन की नई उम्मीदें, नए सपने और नई उमंगों से भरा होता है वो समय जब हम 18 वर्ष के होते हैं। लेकिन भारत की इस पवित्र मिट्टी में कुछ ऐसे सपूत भी जन्मे जो 18 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे तक पहुंच गए। आज ही के दिन 1908 में एक 18 वर्षीय युवक मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे की ओर बढ़ रहा था। ये युवक था खुदीराम बोस। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी कम उम्र में खुदीराम बोस को फांसी की सजा मिली? खुदीराम बोस ब्रिटिश शासन के प्रबल विरोधी थे और क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ चुके थे। वर्ष 1908 में उन्हें और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी को मुजफ्फरपुर के ब्रिटिश मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से भेजा गया था। 30 अप्रैल 1908 को उन्होंने एक ऐसी घोड़ा गाड़ी पर बम फेंका जिसे उन्होंने किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझ लिया था, लेकिन किंग्सफोर्ड उस गाड़ी में नहीं थे। इस घटना में गाड़ी में सवार दो ब्रिटिश महिलाओं की मृत्यु हो गई। खुदीराम बोस गिरफ्तार हुए। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र मामले में उन पर मुकदमा चला और उन्हें मृत्यु दंड की सजा दी गई। जब न्यायाधीश ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई तब भी उस 18 वर्षीय युवक के चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट थी। और फिर आया 11 अगस्त 1908 का वो दिन जब खुदीराम बोस ने हंसते हुए फांसी के फंदे को गले लगा लिया। अगले दिन अमृता बाजार पत्रिका ने भी उनके अंतिम क्षणों का वर्णन करते हुए लिखा कि वे दृढ़ता और प्रसन्नता के साथ फांसी के तख्ते की ओर बढ़ते गए, मुस्कुराते गए। खुदीराम बोस की शहादत हमें ये याद दिलाती है कि भारत की आजादी केवल इतिहास की किताबों में दर्ज एक घटना नहीं है, बल्कि उन अनगिनत युवाओं के त्याग और बलिदान की विरासत है जिन्होंने अपने भविष्य से पहले देश के भविष्य को चुना। उनकी शहादत को हमारा नमन।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या

0: इतनी जल्दी?
1: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़कर बस मिनटों में मेरठ।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्श।
6: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

सुबह के 8:40 गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में नेहा के साथ हैं आप, और अब सुनते हैं एक प्यारा सा गाना और उसके बाद बहुत सी जानकारियां लेकर आऊंगी मैं नेहा इस कार्यक्रम में सिर्फ आपके लिए।

सुबह के 8:45 और 30 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग रेली एनसीआर का दूसरा घंटा। मेरे साथ मेरा नाम है नेहा, ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल, जिसे आप दिल्ली एनसीआर में 102.6 के माध्यम से सुन रहे हैं और विभिन्न माध्यमों से देश भर के साथ साथ विश्व भर में सुन पा रहे हैं। और अब आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के लिए क्या खबर है कि राजधानी दिल्ली में 16 अगस्त से सिर्फ वही महिलाएं डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर का आनंद ले पाएंगी जिनके पास होगा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड। भाई इस बारे में बात काफी समय से हो रही है, हमने आपको पहले भी अवगत कराया इस बारे में कि 16 अगस्त से आपका जो पिंक टिकट होता है ना बस में, जब आप चढ़ती हैं, दिल्ली की बसों की बात हो रही है, तो आपको पिंक टिकट लेना होता है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा 16 तारीख से, और आपके पास वो पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड होना चाहिए जो आप यूज कर सकती हैं अपनी यात्रा करने के लिए। और साथ में ये बात भी सामने आ रही है कि जब बाहरी राज्यों से अगर महिलाएं आ रही हैं तो उनके लिए जो किराया है वो उन्हें देना पड़ेगा अगर उनके पास पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड नहीं है। तो अब तक तो यही जानकारी है। तो अगर आपने अभी तक पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड नहीं बनवाया है तो भाई राइट सोर्सेज से आप जल्द से जल्द अपना वो कार्ड बनवाएं और दिल्ली में आप सफर अपना बहुत ही सुगम बना सकती हैं। बसों से अगर आप सफर करती हैं तो साथ ही आप मजेदार गाने भी सुन सकती हैं एफएम रेनबो दिल्ली पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए। यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

सुबह के 8:52 हो गए हैं। आइए अब आपको बता दें कि कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिन्हें आप सुनेंगे तो सही, साथ ही उसमें भाग भी ले सकते हैं फोन और मैसेजेस के माध्यम से। तो आज के फोन इन प्रोग्राम्स की जानकारी कुछ इस तरह है। दोपहर 1 बजे होंगे हिंदी में समाचार और 1 से 2 के बीच में आप सुनिएगा प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन, जिसमें आज का विषय है बच्चों का मानसिक विकास और एक्सपर्ट होंगी दीपिका जैन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ये एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम रहेगा साथियों आज, तो जो पहले बातचीत हो चुकी है उस कार्यक्रम को आप जरूर सुने, आपको जरूर इसमें बहुत फायदा महसूस होगा। इसके बाद हम बात करेंगे दोपहर 2 से 3 के बीच में समाचारों के बाद आप सुनिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम आशियाना, जिसमें आज एक खास मुलाकात होने वाली है। हमारी गेस्ट होंगे डॉक्टर योजना शाह जैन, आप ऑथर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, योजना शाह जैन की आप बातचीत सुनिएगा। साथ ही दोपहर 3 से 4 के बीच में आपका पसंदीदा प्रोग्राम रहेगा रेडियो डॉक्टर, जिसका सीधा प्रसारण आज आप सुनेंगे। विषय रहेगा एंडोमेट्रियोसिस, बहुत ही महत्वपूर्ण आज का विषय है, और एक्सपर्ट होंगी डॉक्टर ममता मिश्रा, आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं, इनके साथ बातचीत आप जरूर सुनिएगा। और इसी तरीके से आकाशवाणी दिल्ली पर कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। अगला कार्यक्रम रहेगा दिल के तराने, गाने नए पुराने, और उससे पहले ठीक 9 बजे होंगे हिंदी में समाचार। और अब नेहा को दीजिए अनुमति, आप सभी अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, और हाँ, क्योंकि अब आपकी और मेरी मुलाकात होगी कुछ वक्त के बाद, तो अभी से मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी हमारे आने वाले इंडिपेंडेंस डे की। बहुत मन में गर्व के साथ इस पर्व को मनाइएगा, और हाँ, जो बातचीत आज हमने की थी सुप्रभात कार्यक्रम में, उसको थोड़ा सा उस पर रिफ्लेक्ट करते हुए जरूर सोचिएगा कि हम किस तरीके से ये दर्शा सकते हैं कि हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, हमें गर्व है इस बात पर कि हम भारत देश के नागरिक हैं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।

नमस्कार। सुबह के 9 बज चुके हैं। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। संसद ने कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यूपीआई लेन देन पर कोई भी शुल्क न लगने का आश्वासन दिया। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी मिली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद के सुचारू संचालन की अपील की। कहा, गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की अधिसूचना जारी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस जैम पोर्टल पर उचित गुणवत्ता के उचित मूल्य वाले उत्पादों की खरीदारी होती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए देशभर के कृषि विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप राशि जारी की। झारखंड विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन और तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल NSP के माध्यम से पूरे देश के कृषि विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति जारी की। इसराइल में भारत के राजदूत JP सिंह ने इसराइल की अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी मशाव की प्रमुख एनात श्लीन से यरूशलम में मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल प्रोफेसर बिमल पटेल से भेंट की। श्री पटेल को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण का न्यायाधीश चुना गया है। राष्ट्रराज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत, 570 से अधिक घायल। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आज से अगली पीढ़ी के खोजकर्ताओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य और नवाचार पहल का दूसरा संस्करण आयोजित कर रहा है। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देशभर के 83 स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वस्त्र मंत्रालय आज नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन सूत्र 2026 का आयोजन करेगा। और मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश तथा पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं खेलों की बात करें तो नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल U23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते हैं। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं। पेश अब तक के मुख्य समाचार। संसद ने कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यूपीआई लेन देन पर कोई भी शुल्क न लगाने का आश्वासन दिया। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी मिली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद के सुचारू संचालन की अपील की। कहा, गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की अधिसूचना जारी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस जैम पोर्टल पर उचित गुणवत्ता के उचित मूल्य वाले उत्पाद की खरीदारी होती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए देशभर के कृषि विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप राशि जारी की। झारखंड विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हुआ। इसराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने इसराइल की अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी मशाव की प्रमुख एनाथ श्लीन से यरूशलम में मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल प्रोफेसर बिमल पटेल से मुलाकात की। श्री पटेल को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण का न्यायाधीश चुना गया है। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत, 570 से अधिक घायल। वस्त्र मंत्रालय आज नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन IIHT सूत्र 2026 का आयोजन करेगा। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल U23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य सहित 17 पदक जीते हैं। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: there we go. That was a track, Dil Tera Deewana, from the movie Dil Tera Deewana, 1962 movie. Alrighty, time right now is 10:36 this Tuesday morning. The show is called The Mashups Music Hour. And yes, we'll be right back after these messages. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ. दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है.
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत. आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं.
3: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी.
4: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद. सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में.
3: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में. आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में.
4: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध.
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में.
5: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा.
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा. NECC द्वारा जनहित में जारी.

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी।

नमस्कार, पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद ने कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने यूपीआई लेनदेन पर कोई भी शुल्क न लगाने का आश्वासन दिया। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी मिली। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद के सुचारू संचालन की अपील की। कहा, गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोधी प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस जैम पोर्टल पर उचित गुणवत्ता के उचित मूल्य वाले उत्पाद की खरीदारी होती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए देश भर के कृषि विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप राशि जारी की। झारखंड विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल NSP के माध्यम से पूरे देश के कृषि विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप जारी की। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में जारी है। इसराइल में भारत के राजदूत JP सिंह ने इसराइल की अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी मशाव की प्रमुख एनात श्लीन से यरूशलम में मुलाकात की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल प्रोफेसर बिमल पटेल से मुलाकात की। श्री पटेल को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण का न्यायाधीश चुना गया है। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत, 570 से अधिक घायल, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। वस्त्र मंत्रालय आज नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन IIHT सूत्र 2026 का आयोजन करेगा। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान है। और नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। ये थे FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और अभी बबीता त्रिपाठी की वाणी बॉलीवुड सेल्स यानी बीटी विद बीटी शुरू हो चुका है। आप सब कहाँ हैं? यहीं एकदम दिमाग लगाइए, अपना कान इधर ही रखिए और दिमाग भी इधर ही रखिए। फिलहाल तो आपको रखना ही होगा क्योंकि आज बॉलीवुड सरताज बनने के लिए आपको कोशिश नहीं छोड़नी है। क्या पता आज के बॉलीवुड सरताज आप ही हो, तो आप सबका ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रही बात ध्यान न लगाने की, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज होती हैं, आपके लिए आप ही की पसंद की खबरें होती हैं, आपके फेवरेट स्टार्स, फिल्मों के बारे में, तो बॉलीवुड की पूरी दुनिया की लेटेस्ट अपडेट इसी घंटे होती हैं। आप सब कहाँ हैं? यही है ना, अपना ध्यान एकदम बॉलीवुड ट्रेल्स में लगा कर रखिए क्योंकि आकाशवाणी पर हर घंटे होते हैं।

बेहद खास इस घंटे बॉलीवुड की दुनिया में हम सैर करेंगे, अपडेट्स जानेंगे और भी बहुत कुछ होगा। आज किसका बर्थडे है ये भी तो जानना है और जो कुछ सरप्राइजेस हैं उसके लिए आपको सुनते रहना होगा आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। इस घंटे बीटी विद बीटी बबीता त्रिपाठी के साथ बॉलीवुड ट्रेल्स।

यस अभी आज जो सेलिब्रेशन चल रहा है उसके उपलक्ष में ये गाना हो गया, लेकिन हाँ एक और सेलिब्रेशन है जो आप सब के लिए खास है, हम सब के लिए खास है। हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त एकदम पास में है, और ऐसे में हम सब सेलिब्रेशन के मोड में हैं और इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। तैयारियां हर जगह क्या हो रही हैं, सेलिब्रेशंस भी शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में एक

हम मस्ती भरा देशभक्ति का गाना भी सुन लेते हैं, और साथ में आपको बता दूं कि बॉलीवुड की ढेर सारी खबरों के लिए आप बने रहिए, बॉलीवुड सरताज बनने के लिए आप बने रहिए, और जानने के लिए भी बने रहिए कि आज बॉलीवुड में लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, और साथ में आज बर्थडे किसके किसके हैं, बहुत सारी चीज़ें मिस ना हो जाए कहीं।

बसंती रंग में रंगिए, क्योंकि हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब भी स्वतंत्रता दिवस का बिल्कुल नजदीक है और सेलिब्रेशन के मोड में आ चुके हैं, और साथ में आप आकाशवाणी रेनबो पर रेनबो के रंग में भी रंगे हुए हैं, क्योंकि आप आकाशवाणी

आपको सुन रहे हैं और फिलहाल बॉलीवुड ट्रेल्स चल रहा है क्योंकि रेनबो में ना बहुत सारे कलर्स होते हैं। फिलहाल बॉलीवुड का कलर यहाँ पर बिखरा पड़ा है, आप सब इसको इंजॉय कीजिए। ये कलर बहुत ही बेहतरीन होगा क्योंकि और सारी चीज़ें होंगी, मतलब बॉलीवुड की अपडेट्स के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें आप भी जुड़ेंगे। आपको मैंने बताया है आपको बॉलीवुड सरताज जो बनना है उसके लिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा। फिलहाल तो आप ये सुनिए कि बॉक्स ऑफिस का क्या हाल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी बात करने की आदत तो हमें है नहीं। डीसी और एक और मूवी जो रिलीज हुई वो है ओ माय डॉग। चार दिन पहले ये मूवी रिलीज हो गई, लेकिन ओ माय गॉड ये क्या हुआ, इतना कुछ फायदा तो हुआ नहीं। दोनों ही मूवीज अच्छी चल रही है, लेकिन अच्छी का मतलब बहुत अच्छी नहीं है, औसत कमाई कर रही है। कमाई के मामले में अगर बात की जाए, बाकी तो पसंद सब अपनी अपनी होती है। डीसी द ब्लडी वैलेंटाइन ये मूवी रिलीज हुई थी, ये साउथ की मूवी है जो कि हिंदी में भी रिलीज हुई, कई सारी भाषाओं पर रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर बेटर कर रही है। और निर्देशक अरुण मथेश्वरन हैं और वामिका गब्बी और लोकेश कनगराज मुख्य भूमिकाओं में है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 4.40 करोड़ कमाए थे, चलता रहा मामला। और साथ में अब जब टोटल कमाई की बात करें तो चौथा दिन मिलाकर अब 24.19 करोड़ कुल लगभग कारोबार इस मूवी ने कर लिया है। और कौन सी मूवी कारोबार कितना कर चुकी है आप जानना चाहेंगे? ओ माई डॉग, जिसकी बात मैंने पहले की थी कि अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, पंकज त्रिपाठी मेरे फेवरेट हैं, लेकिन क्या करें, मूवी के कलेक्शन की बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कह सकते हैं। फिल्म ने अब तक कुल 3.40 करोड़ नेट की कमाई की है। कई बार फिल्में अच्छी होती हैं, इमोशनल होती हैं, आपकी फैमिली को दिखाने लायक भी होती हैं, लेकिन कमाई अच्छा नहीं कर पाती हैं, ऐसा भी होता है। तो कमाई पर बिल्कुल ना जाएं। अगर आपको फिल्म देखना है तो ओ माय डॉग और ये जो दूसरी मूवी मैंने बताया साउथ की मूवी है और अभी हिंदी में भी रिलीज हुई है डीसी, दोनों ही मूवी आपके पास हैं। डीसी द ब्लडी वैलेंटाइन, नाम जो बड़ा धांसू है, बेटर कमाई भी कर रही है, आप अपनी चॉइस है, देख सकते हैं। फिलहाल आगे क्या होगा, जाने क्या होगा, देखते हैं। फिलहाल तो आग लगी पड़ी है सावन में, बारिश हो रही है बाहर हल्की हल्की, और थैंक गॉड जब मैं पहुंच गई ना तब शुरू हुई, मजा आता है ऐसे ना, ऐसे लगता है एक चैलेंज मैंने मतलब जीत लिया हो कोई।

मैं एक बात आपको बता दूं कि मेरी बात को आपको इसलिए भी ध्यान से सुनना है क्योंकि 11:30 बजे आपके लिए एक सवाल आएगा जिसका जवाब देकर आप बॉलीवुड सरताज बन जाएंगे, और बॉलीवुड सरताज बनते हैं तो हमसे बात करने का मौका मिलता है और आपकी दुनिया आवाज सुनती है आकाशवाणी रेनबो के जरिए, ये क्या कम है। और अगर आप बॉलीवुड सरताज नहीं भी बने तो आपको मौका तो मिलेगा ही अपना नाम शामिल करवाने का। यस, आपका नाम शामिल होगा, आपके शहर का नाम शामिल होगा, ये भी क्या कम है। फिलहाल इतने सारे प्रलोभन देने के बाद आपको एक बात बता देती हूँ, बॉलीवुड में क्या कुछ चल रहा है आप जानना चाहते हैं तो हम इसीलिए बैठे हैं शो में। आपको बता दूँ, 7 डॉग्स नाम की एक कहानी आ रही है, एक इंटरपोल अधिकारी और एक अपराधी के इर्द गिर्द घूमती ये कहानी जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ मिलकर काम करती है। ऐसी कहानी अगर आप देखना चाहते हैं, नहीं भी देखना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि आपको जानना तो ज़रूर ही चाहिए कि इंटरनेशनल फिल्म में काम कर रहे हैं हमारे सल्लू मियां और संजय दत्त। यस, सलमान खान और संजय दत्त इंटरनेशनल मूवी में एक काम कर रहे हैं और दोनों एक साथ काम कर रहे हैं इतने सालों बाद। कितने सालों बाद? 26 साल बाद एक साथ वो दोनों स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। पहले कौन सी मूवी में आपने देखी थी, याद है? चल मैं रभा और साजन, ठीक है, ये दोनों मूवीज में ये दोनों साथ में दिखे थे। अब आ रही है 7 डॉग्स और इस मूवी में ये दोनों साथ में दिखेंगे, लेकिन मूवी कुछ खास है क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म है और आदिल अल अरबी बिलाल फल्लाह के निर्देशन में ये सऊदी अरब की एक्शन फिल्म है जो बन रही है। और 7 डॉग्स फिल्म की कहानी में जैसा मैंने बताया कि एक इंटरपोल अधिकारी और अपराधी के इर्द गिर्द ये घूमती कहानी है और इसमें जो दोनों भूमिकाएं हैं वो एकदम दबंग टाइप की हैं दोनों की, सलमान खान की भी और हमारे संजू मियां की भी। सलमान खान के कैरेक्टर का नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो जानकर भी क्या करेंगे, जौहर नाम है, लेकिन बता देती हूँ, संजय दत्त रंजीत बने हुए हैं। अब मूवी में क्या कर रहे हैं? एक्शन कर रहे हैं। फिलहाल तो हमें टीजर से यही सामने आया है, 51 सेकंड का टीजर है, उसमें सलमान खान का भी लुक एकदम देखने लायक है और संजय दत्त का भी एकदम दमदार अंदाज है और ये देखकर लोग यही कह रहे हैं क्या कमाल का इसमें इनका रोल है, एक्शन है। अब इतना ही समझ में आ रहा है, बाकी तो जो कुछ अगर आपको देखना है इस मूवी में उन्होंने करा क्या है, किस तरह का उनका रोल है, तो 21 अगस्त को सिनेमाघरों पे आ जाइएगा, मिलते हैं, देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि क्या रोल है, कितना दमदार रोल है इनका। फिलहाल तो गाना सुनते हैं, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग दबंग। आप सुन रहे हैं बीटी विद बीटी बॉलीवुड रील्स बबीता त्रिपाठी के साथ। बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आप सवाल से व्हाट्सएप मैसेज ही करना है और बॉलीवुड सरताज बन जाना है, बस आज तो बन ही जाएंगे।

अभी ओ माय गॉड की बात, ओ माय डॉग की बात की, ठीक है? ओ माय गॉड इसलिए कह रही हूँ कि अभी डॉगी डॉग की बात कर रही हूँ लगातार, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अब फिल्में बन रही हैं या डॉग यूज करना जरूरी हो गया है सभी टाइटल्स में। ओ माई डॉग तो समझ में आता है, उसमें डॉग्स की कहानी है। अब सेवन डॉग्स की बात की, उसका मुझे नहीं पता अभी कहानी में क्या है। लेकिन एक और मूवी है स्लम डॉग जो आने वाली है, इसमें भी डॉग ही है। अब ये डॉग के पीछे की कहानी क्या है, ये तो जो मेकर्स हैं वो जाने कि हर फिल्म में आखिर वो इस तरह का नाम क्यों ले रहे हैं। लेकिन पता नहीं नेशनल इंटरनेशनल सभी मूवीज में डॉग की का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि अब डॉग हमारे लिए बहुत लकी हो चुके हैं। खैर, स्लम डॉग 33 टेंपल रोड ये मूवी आ रही है और इस मूवी में तब्बू हैं। और ख़ास बात ये कि इसका टीज़र रिलीज़ हो गया है और जब टीज़र रिलीज़ हुआ तो उसमें लेडी सिंघम अवतार में नज़र आ रही हैं। तब्बू देखने लायक कमाल का इनका लुक है। लेडी सिंघम इसलिए कहा जा रहा है इनको क्योंकि क्या टक्कर दे रही हैं विजय सेतुपति को और एकदम ज़बरदस्त एक्शन करती हुई दिख रही हैं। और एक्ट्रेस गौरी हेगड़े का किरदार निभा रही हैं इस किरदार में, वो दिख रही है मतलब गौरी हेगड़े, और दमदार निडर ऑफिसर ऐसा उनका रोल है। और रिलीज से पहले जो झलक दिख रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये जो कमाल है वो इस मूवी में ज़बरदस्त वो करने वाली हैं। बहुत सारी अब मूवी उनकी आ रही हैं जिसमें उनका कमाल धमाल का एक्शन दिखता है और उनकी अदाकारी दिखती है और मेच्योर एक्टिंग देखने को मिलती है। और इस मूवी में तो फिलहाल एक्शन ही दिख रहा है, बाकी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिलहाल जो कैरेक्टर कह रहा है ना उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें विजय सेतुपति जो इसके लीड रोल में है उससे ये दमदार कैरेक्टर यानी तब्बू क्या कहती हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे अंदाज में हम पहले गोली चलाते हैं और फिर बात करते हैं। इस बात से ना मुझे एक बात समझ नहीं आई कि पहले अगर आपने गोली चला दी तो बात किससे करते हैं, वो तो गया काम से। और अगर उसको गोली नहीं लगी तो आप किस काम की, किस बात के ऐसे रौब दिखा रही हैं, किस बात का इतना एटीट्यूड है भाई। मूवी देखिएगा फिर डिसाइड करेंगे। फिलहाल उनकी ही एक मूवी अंधाधुन से ये गाना आप सुनते हैं, रहिए बीटी विद बीटी ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

0: समझ गए ना क्या हुआ है। तो अब आपको बता दूं कि समय भी हो गया है कि आपसे सवाल पूछ ले, थोड़ा एक मिनट लेट हो गया, क्या फर्क पड़ता है। आपको बता दूं कि आने वाली फिल्म एक है जिसके बारे में मैं सवाल पूछने वाली हूँ। आप सब तैयार हैं या नहीं है? एकदम तैयार हैं, तो चलिए सवाल पूछ लेती हूँ, और जिसका जवाब आपने दे दिया तो आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज, हमसे बात करने का मौका मिल सकता है। आपका नाम, आपका, आपके शहर का नाम जरूर शामिल होगा अगर आपने जवाब दिया है। तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। अब आप सवाल सुन लीजिए, किस अपकमिंग इंटरनेशनल फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त दिखेंगे एक साथ? किस अपकमिंग इंटरनेशनल फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त एक साथ दिखने वाले हैं? उस फिल्म का आपको नाम लिखना है। इतनी सी बात है, इतनी छोटी सी बात है, जिसका जवाब आपको व्हाट्सएप मैसेज के जरिए देना है। और व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए नंबर की जरूरत होगी, वही पुराना नंबर 9868107070। बहुत लंबा काम कर रहा है ये नंबर, इतना पुराना हो गया, लेकिन देखिए एनर्जी पूरी है इसमें, अभी भी पूरी जान है। देखिए मैसेजेस आने शुरू हो गए, एक बार फिर से 9868107070। इस पर आपको क्या करना है, अपना नाम, अपने शहर का नाम सबसे पहले लिखना है, उसके बाद आंसर लिखना है, तभी गारंटी होगी कि आपका मैसेज शामिल होगा। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लें, फिर गाना सुने तो कैसा रहेगा, जैसा रहेगा आपको सुनाई दे जाएगा। फिलहाल एक गाना सुन, एक ब्रेक लेते हैं और फिर म्यूजिकल ब्रेक।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: सावधान, आपका लालच ही साइबर अपराधियों की ताकत है। कैशबैक पाओ, क्लिक करो पैसे कमाओ, रेट करो पैसे कमाओ, शेयर मार्केट में पैसे बनाओ, IPO अलॉटमेंट कंफर्म पाओ, महंगी चीजें सस्ते में पाओ, तत्काल लोन पाओ, ऐसे दावों के झांसे में ना आए। साइबर अपराधियों से सावधान रहें।
4: शिकार होने पर तुरंत कॉल करें 1930 पर, या फिर शिकायत दर्ज कराएं www.cybercrime.gov.in पर। अधिक जानकारी के लिए फॉलो करें हमारे सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त को।
5: गृह मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: एनसीआरईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

और आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं बीटी विद बीटी बॉलीवुड ट्रेल्स, बबीता त्रिपाठी के साथ। बॉलीवुड की बात हो रही है तो आज का दिन बॉलीवुड के लिए खास है, क्योंकि आज ना दो जबरदस्त और कमाल के एक्टर्स का भी बर्थडे है, तो उनको हम सेलिब्रेट करना कैसे भूल सकते हैं। इस दिन को तो सेलिब्रेट करेंगे ही, क्योंकि हम तो हर दिन सेलिब्रेट करते हैं। आकाशवाणी रेनबो पर 2400 घंटे सेलिब्रेशन का माहौल रहता है, इन्फॉर्मेशन और सेलिब्रेशन एंटरटेनमेंट दोनों का हम ख्याल रखते हैं। फिलहाल बॉलीवुड की बात हो रही है तो बॉलीवुड में हमारे जो खास एक्टर और एक्ट्रेस है जिनका आज बर्थडे है वो कौन है जान लेते हैं। सुनील शेट्टी और जैकलिन फर्नांडिस हमारे दिल के बिल्कुल करीब, और 90s के दशक में सुनील शेट्टी का जलवा क्या बरकरार रहा था। और उनके डांस की बात हो, उनके एक्शन की बात हो, उनके डायलॉग डिलीवरी की बात हो, सब दीवाने हुए पड़े थे। और अभी भी जब सुनने को मिलता है, इनकी एक्शन फिल्में देखने को मिलती हैं, तो हम सब एक बार फिर से वो ताज़ा यादें ताज़ा हो जाती हैं और उस दौर में ही पहुंच जाते हैं। क्या एकदम मासूमियत चेहरे पर और साथ में मासूम सा उनका अंदाज था जिसके हम सब कायल हमेशा से रहे हैं। मोहरा फिल्म हो, दिलवाले हो, वैसे शुरुआत तो इनकी 1992 में बलवान मूवी से हुई थी एज अ हीरो। फिर उसके बाद

किसी भी मूवी में देखते हैं, हम सब बहुत पसंद कर देते हैं करते हैं इनके ख़ास अंदाज को, और हर किसी का अपना ख़ास अंदाज होता है। तो फिलहाल मैं चाहती हूँ इनको दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं देना, इनकी आने वाली फिल्मों के लिए भी हम इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अभी तो प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं, तो बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस करें या फिर एज एन एक्टर हमें देखें, हमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इनसे। और रही बात जैकलिन फर्नांडिस की, जिनका आज बर्थडे है, तो इनको भी हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और इनकी इनका जो मासूम अंदाज है, मासूम सा चेहरा है और एक्टिंग है, वो हम सब घायल हैं, हम सब क्या ही बात करें, इनके एक्टिंग स्किल के साथ साथ डांसिंग स्किल्स के भी हम घायल हैं। और रही बात इनको बर्थडे विश करने की, तो हम दिल से शुभकामनाएं देते हैं, ये बहुत अच्छी अच्छी फिल्में लेकर आए। मर्डर टू में जो इनको सक्सेस की शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी, हालांकि डेब्यू इन्होंने कर दिया था इससे पहले ही, लेकिन अलादीन मूवी जो थी वो आई थी और कब चली गई पता नहीं चला, लेकिन हाँ एक तरह से इनको पहचान ज़रूर मिल गई थी, क्योंकि आईफा अवार्ड में ना स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर फीमेल का इन्हीं को अवार्ड मिला था। उसके बाद जो कमर्शियल सक्सेस की बात करें तो मर्डर टू से हुई, उसके बाद रेस टू, हाउसफुल टू और फिर हाउसफुल थ्री, जुर्मा झलक दिखला जैसी जो छोटे पर्दे के सीजन हैं उसमें भी वो दिखाई देती हैं और ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंसेज एक से बढ़कर एक फिल्मों में भी हैं। तो इनको हम ढेर सारी बधाई देते हैं, इनके ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं इनके जन्मदिन पर, और कहते हैं कि आगे ऐसी ही अपनी अदाकारी से, अपने डांस से, अपनी एक्टिंग से हमें एंटरटेन करते रहिए। फिलहाल मुझे गाना समझ में नहीं आ रहा था, मेरे पास दोनों के बहुत बेहतरीन गाने थे, लेकिन क्या करें, कुछ कुछ कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, एक ही गाना चलेगा। और मौका मिला तो सुनील शेट्टी का भी एक गाना ज़रूर चलाऊंगी, फिलहाल ये गाना। और हाँ, सुनील शेट्टी और जैकलिन दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं उनके जन्मदिन की।

बार सवाल रिपीट कर दिया है, आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है 9868107070 पर। अपना नाम, अपने शहर का नाम पहले लिख दीजिए और अभी लौट कराऊंगी ना तो आपका नाम पढ़ना शुरू कर दूंगी। उसके बाद बॉलीवुड सरताज को लेकर आऊंगी, तो मिस मत कर दीजिएगा। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक, बीटी विद बीटी, बॉलीवुड ट्रेल्स, बबीता त्रिपाठी के साथ।

किस इंटरनेशनल फिल्म में, आने वाली किसी फिल्म में इंटरनेशनल लेवल पर ये मूवी बन रही है, किस मूवी में सलमान खान और संजय दत्त एक साथ दिखने वाले हैं? बस इसके बारे में आपको बताया था, अब आपको बताना है। यही आज की क्विज है जिसका जवाब देकर बन सकते हैं आप बॉलीवुड सरताज, और आपको व्हाट्सएप मैसेज करके आंसर देना है। ऑलरेडी बहुत सारे आंसर्स आ गए हैं, अगर आपने मिस कर दिया था तो

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

और आकाशवाणी रेनबो पर आप सब का इंतजार हुआ खत्म, आप सबके मैसेजेस की लाइन लगी पड़ी है और उस लाइन को हम ढूंढ रहे हैं शुरुआत कहाँ से करें। यस, शुरुआत करते हैं जहां से शुरुआत हुई थी वहीं से। सबसे पहले मुझे जैनन त्यागी मोदी नगर से लिखते हुए नजर आ रहे हैं और उससे पहले भी मैसेजेस आए हैं लेकिन वो जो आंसर है ना उससे रिलेटेड मैसेज नहीं है, तो सो सॉरी, कोई बात नहीं। रोहित श्रीवास्तव दिल्ली से लिख रहे हैं और कान्हा मेरठ से लिख रहे हैं। राजकुमार संतानी अकोला महाराष्ट्र से लिख रहे हैं। दिनेश कहाँ से लिख रहे हैं नहीं दिख रहा है अभी। सुनीता शर्मा शालीमार बाग से लिख रही हैं और रंजन कुमार गुलाब सिंह बुराड़ी से लिख रहे हैं और ये भी दिल्ली में ही है। और सूरत से किसका आंसर आया है, राहुल कुमार का आया है। विनोद सोनी का मैना चौक बठिंडा से, अनूप साहू का कहीं से दिख रहा है मैसेज। उसके बाद आंसर सबसे पहले किसने लिख दिया भाई, संजय ने, नहीं संजय इन्होंने आंसर लिखा है लंबा चौड़ा और सबसे पहले अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखा भी है लेकिन वो छिप इसलिए गया क्योंकि लंबा इन्होंने आंसर लिख दिया। कंचन सोनिया विहार दिल्ली से लिख रही हैं। मोहम्मद इम्तियाज भी दिख रहे हैं दिल्ली से ही और मिसेस धर्मभाटिया रोहतक से, दानिश खतौली से और अगला मैसेज मोनीश का दिख रहा है और तौसीफ अहमद का दिख रहा है श्रीनगर से, मोनीश बिलासपुर से लिख रहे हैं और संजय खत्री कोल्हापुर महाराष्ट्र से, सुखलाल बाला ये कहाँ से हैं, शायद कहीं से तो हैं पक्का वेस्ट बंगाल से हैं, और तनुजा शाह का महाराष्ट्र से और आशीष शर्मा का और पल्लवपुरम ये कहाँ पे है भाई, मेरठ में है। और नेक्स्ट भवाना हरियाणा से मनोज कुमार का मैसेज दिख रहा है। प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से दिख रहे हैं। अमरेंद्र कुमार रांची से, सलमान अरे भाई लंबा चौड़ा मैसेज क्यों लिखा, आपका नाम शामिल नहीं होगा तो फिर आप मत कहिएगा सोनू बिजनौर वाले। दीपा बिजनौर से लिख रही हैं और नेक्स्ट मैसेज दिख रहा है किसका भाई, फिल्म की पूरी डिटेल लिख डाली, अपना नाम पहले लिख दिया था, सही बात है लेकिन इतनी डिटेल लिखेंगे तो छुप जाएगा। वरुण वाष्णेय लिख रहे हैं अलीगढ़ से और भुवनेश्वर नेताम ग्राम, कुछ पूरा एड्रेस लंबा सा है, सही जवाब है लेकिन अपना नाम भी सबसे पहले लिखते, शायद ये भुवनेश्वर इनका नाम ही है। यस, और प्रोग्राम अच्छा है ठीक है। उमेश कुमार खयाला से, थैंक यू सो मच उमेश। सुमन का भी मैसेज सोनीपत आसाम से दिख रहा है। और भी मैसेजेस हैं लेकिन इन्होंने क्या किया है ना, लंबा चौड़ा आंसर लिखा है और उसके बाद फिर अपना आंसर लिखा है या नाम लिखा है, तो क्या करें, हमने तो आपको कहा था सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम और आंसर, फिर देखिए आपका नाम ज़रूर शामिल होगा। अब मेरी ड्यूटी ये है कि मैं ढूंढ कर लाऊं उनमें से कोई एक बॉलीवुड सरताज। अब नेटवर्क में रहने की जिम्मेदारी आपकी है, फ़ोन उठाने की जिम्मेदारी आपकी है, फिर ना कहिएगा शामिल नहीं हुआ और हमें तो कभी बॉलीवुड सरताज बनाते ही नहीं हैं। अगर आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो ज़रूर बॉलीवुड सरताज कभी न कभी बनेंगे ही बनेंगे।

0: राहुल अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
1: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
0: इम्पॉसिबल
1: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।

0: ये आकाशवाणी रेनबो और आप सबका इंतजार हुआ खत्म। और खास तौर से हमारे जो बॉलीवुड सरताज हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं आप सबसे बात करने के लिए, उनका इंतजार भी हुआ खत्म। तो चलिए सुनते हैं उनकी जुबानी, उनकी कहानी। हेलो
1: हेलो, हाँ जी मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं आप, कहाँ से बोल रही हैं आप, प्लीज बताइए।
1: हाँ जी मैम, मैं सुमन कर्मकार सोनितपुर आसाम से।
0: आसाम से सुमन, आपका बहुत बहुत स्वागत।

0: स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर।
1: थैंक यू मैम।
0: पता है आपकी एक्साइटमेंट देख के मुझे भी बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है आपसे बात करके।
1: थैंक यू मैम।
0: क्योंकि जब मैंने आपको कॉल मिलाया आप इतनी एक्साइटेड हो गई थी, मुझे लगा कि ये एक्साइटमेंट वाली बात तो है। तो सुमन, सबसे पहले तो आप रिलैक्स हो जाइए और देखिए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आकाशवाणी रेनबो आपको कभी भी कॉल कर दे बॉलीवुड सरताज बनाने के लिए, और अगर विश्वास रखेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है ना
1: जी मैम।
0: आपने मान लिया कि ये सचमुच में कॉल आई है?
1: जी मैम, क्योंकि मैं सुन रही थी ना।
0: चलिए ठीक है,
1: प्रोग्राम सुनती रहती हूँ मैं रेनबो का।
0: बहुत अच्छी बात है, और यही हम चाहते हैं कि आपको खुश करें, सरप्राइज दें और आपको बात करने का भी मौका मिले, जुड़ने का मौका मिले। तो सुमन, मैंने पूछा किस अपकमिंग इंटरनेशनल फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त एक साथ दिखने वाले हैं?
1: जी, मूवी का नाम है सेवन डॉग्स मैम।
0: सेवन डॉग्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉलीवुड सरताज बनने के लिए।
1: थैंक यू मैम।
0: सुमन, आसाम का मौसम कैसा है?
1: आसाम का मौसम अच्छा है मैम,
0: अच्छा
1: ना ज्यादा धूप नहीं आज। ठीक जी,
0: धूप नहीं है मतलब बारिश हो रही है कि नहीं वहाँ पे?
1: बादल छाए हुए हैं मैम, मौसम अच्छा है।
0: मौसम अच्छा है, चलिए ठीक है, एंजॉय कीजिए मौसम को और आपके दिन को भी। और आपने बताया कि आप टीचर हैं, आज छुट्टी ली है, तो देखिए आपका दिन बन गया, और छुट्टी इसीलिए ली थी, आज बॉलीवुड सरताज बनने का दिन था। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सुमन, ऐसे ही आकाशवाणी रेनबो से जुड़े रहिए, ठीक है?
1: ठीक है, थैंक यू मैम।
0: ओके, बाय
1: बाय मैम।
0: ये थी सुमन, आप सुनते रहे आकाशवाणी रेनबो ऐसे ही सरप्राइजेस के लिए और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के लिए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, आप वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम एंजॉय करेंगे इस शो के बाद, उसके बाद फिर बच्चों का मानसिक विकास, डॉक्टर सॉरी दीपिका जैन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बताएंगे इसके बारे में 1 बजे, और इसको सुनना मत भूलिएगा, रिकॉर्डेड प्रोग्राम होगा, आपके बहुत काम आएगा। फिलहाल मुझे बबीता त्रिपाठी को दीजिए इजाजत, बाय बाय।

0: Okay, that was Toxic by Britney Spears. Time right now is 12:23 this afternoon. And yes, we're going to take a quick break over here right now. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
5: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
6: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
7: पता का चाय, गजब का स्वाद।

0: Oh, that was Tommy Richmond with Bother Me over here. And yes, you can send across your messages on our WhatsApp number, which is 9868107070. I repeat, 9868107070. Like the way Arka from Gurgaon has sent us a message over here and asking me to play a Phil Collins number. Well, let me see what I can do for you, Arka. Alrighty, there we go. Okay, so we're going to take a quick break over here right now. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
2: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
1: अरे मम्मी, एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
2: हैं? इतनी जल्दी?
1: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
5: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
6: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय कालेखा से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
3: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में,
6: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।

0: There we go. That was Save My Love by American DJ Marshmallow, English singer-songwriter Ellie Goulding, and German producer Avion. Alrighty, nice, interesting name over there. And yes, nice trio with this beautiful track, Save My Love. Okay, time right now is 12:42, and we're going to take a quick break over here. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: हाय
2: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
5: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

और अब पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्यवाही समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निःशुल्क रहेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद के सुचारू संचालन की अपील की। कहा, गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मिलन

मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में हुई। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में भाग लिया। महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 घायल हो गए। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत, 570 से अधिक घायल, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। वस्त्र मंत्रालय आज नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन IIHT सूत्र 2026 का आयोजन कर रहा है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान। और नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। ये थे FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: सुदूर रेनबो हेल्पलाइन का आज का अंक सजीव नहीं है, ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी पर मैं प्रियंका मामगेन आप सभी का स्वागत करती हूँ रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम में। दोस्तों, घर परिवार में जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। एक बच्चा अपने माता पिता, घर परिवार, समाज को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ देश के भविष्य का भी आधार रहता है। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों के शारीरिक विकास, शारीरिक स्वास्थ्य पर सभी ध्यान देते हैं, लेकिन बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है। और रिपोर्ट्स कहती हैं कि ऐसा अधिकतर जानकारी के अभाव, जागरूकता की कमी से होता है। तो आज रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम में हम बहुत सारी बातें करेंगे बच्चों के मानसिक विकास से संबंधित, क्योंकि आज का टॉपिक है बच्चों का मानसिक विकास। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक्सपर्ट दीपिका जैन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: दीपिका जी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहता है, जो शब्द निकल कर आए हैं टॉपिक से ही, वो है मानसिक विकास। तो बच्चों का मानसिक विकास, जब हम ये शब्द कहते हैं, पूरा सेंटेंस कहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसे कैसे समझा जा सकता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है?
3: जी, मानसिक विकास कि अगर हम मैं परिभाषा की बात करूं तो मानसिक विकास का सीधा अर्थ है बच्चों की सोचने और बातचीत करने की, तर्क करने की क्षमता का विकास। यह इस तरीके से देखा जा सकता है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उसे समझने के लिए वे अपने दिमाग का, विचारों का, या विचारों को कैसे व्यवस्थित करते हैं, इस चीज की जो क्षमता होती है इसको मानसिक विकास कहा जाता है। और जितना हमारा शारीरिक विकास जरूरी है उतना ही जरूरी है मानसिक विकास होना, क्योंकि अगर मानसिक विकास नहीं है या क्षमता कम है समझने की, सोचने की, बताने की या किसी भी चीज से डील करने की, तो बहुत हद तक हम पिछड़े रह जाएंगे या हम उस तरीके से नहीं डेवलप कर पाएंगे खुद को जो होना चाहिए एक स्टैंडर्ड तरीके से, मतलब एक बिल्कुल स्वस्थ बच्चा होना चाहिए मानसिक तौर पर।
2: जी बिल्कुल। और ये कितना इम्पोर्टेंट है ये भी बता दीजिए, फिर म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और वापस आके बहुत सारी बातें करेंगे।
3: जी, जरूरी तो इसलिए है कि अगर हमें दुनिया में, हम देखिए, हम सोशल हैं, हम एक समाज में रहते हैं, समाज में हम आदान प्रदान के द्वारा हम चीजों को करते हैं। अगर हमारे अंदर मानसिक तौर पर समझने की, बातचीत करने की या किसी भी परेशानी को झेलने की या उससे लड़ने की क्षमता नहीं है, तो हम किसी भी तरीके से केपेबल या सक्षम नहीं है दुनिया में लोगों से डील करने में
2: मानसिक तौर पर।
3: क्योंकि मानसिक तौर पर दुनिया किसे ही क्यों, अपना परिवार है, हम खुद हैं। अगर हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे, अपने इमोशंस को, भावनाओं को, या अगर हम किसी परेशानी में फंस गए हैं तो उससे कैसे बाहर निकलें, बहुत छोटी सी बात है। अगर एक बच्चे को ये नहीं समझ आएगा कि उसको सड़क कैसे पार करनी है तो वो कैसे सड़क पर चलेगा, कैसे वो बड़े होकर ये डिसाइड कर पाएगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, किस में नहीं, तो ये तो उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक तौर पर विकास होना जरूरी है।
2: बिल्कुल। आज बात होगी बच्चों के मानसिक विकास से संबंधित। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हमें व्हाट्सएप करें, हमारा व्हाट्सएप नंबर 9868107070। इसी के साथ साथ दो फोन लाइन्स हैं जो बिल्कुल स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं, आप इन पर कॉल कर भी स्टूडियो से जुड़ सकते हैं और एक्सपर्ट को अपने क्वेश्चन बताकर उनका जवाब जान सकते हैं। नंबर है 0112342108401122342108। मिलते हैं छोटे से म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी पर प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन और आज का विषय बच्चों का मानसिक विकास। जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ बच्चों का मानसिक विकास भी बहुत जरूरी होता है। कहा जाए तो शारीरिक और मानसिक विकास, मानसिक स्वास्थ्य सिक्के के दो पहलू रहते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और आज हमारे साथ हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दीपिका जैन। आपका फिर दोबारा से स्वागत है दीपिका। दीपिका, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जब हम कहते हैं कि मानसिक विकास, तो क्या इसके लिए कोई एज डिफाइंड रहती है कि ये इस एज में सबसे ज्यादा रहता है मानसिक विकास?
1: जी देखिए, मानसिक विकास तभी से शुरू हो जाता है जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। हमें लगता है कि बच्चा जब बड़ा होगा तभी सीखेगा, बट ऐसा नहीं है। जब बच्चा माँ के गर्भ में आ जाता है तभी से उसका मानसिक विकास होना शुरू हो जाता है। जैसा माँ समझती है, करती है, जैसी जिस तरह से होता है, जैसे कहते ना कि जैसा माँ खाएगी वैसा बच्चे को लगेगा
0: मानसिक स्वास्थ्य के लिए।
1: बिल्कुल, जैसे माँ सोचेगी, माँ का मानसिक विकास है वैसे बच्चे का भी मानसिक विकास होता है। लेकिन अगर हम फिजिकल तरीके से बात करें तो जब बच्चा पैदा हो जाता है तब से लेकर 5 साल तक की उम्र तक बच्चे का जो मानसिक विकास है, मस्तिष्क है, वो उतना डेवलप हो जाता है जैसे कि किसी वयस्क यानी किसी बड़े इंसान का होता
0: जी
1: है।
0: जी बिल्कुल। तो क्या इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा विकास करते हैं और ये क्रूशियल एज रहती है मानसिक विकास के लिए?
1: यस, 0 से लेकर 5 साल तक की उम्र इतनी क्रूशियल और इतनी कह सकते हैं कि ऐसी उम्र होती है कि बच्चा जो सीखेगा वो आसपास से सीखेगा, जैसा घर में माहौल होगा वैसे उससे सीखेगा। और उसका 3 साल तक की उम्र तक तो 80% तक का विकास 3 साल की उम्र तक हो जाता है और 5 साल की उम्र में पूरा वैसा ही मस्तिष्क हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता आ जाती है जैसा कि कोई बड़ा आदमी, वयस्क पर्सन कोई भी। तो हमें बिल्कुल इस एज पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद सेकेंड जो स्टेज आती है वो आती है 5 साल से ऊपर के बच्चे, 8 साल तक की उम्र, जिसमें बच्चा अपने ही एनवायरमेंट से, आसपास का जो माता पिता है, सबसे पहले माता पिता को देखकर बच्चा सीखता है, उसके बाद बच्चा समाज में जाता है, लोगों से मिलता है, अपनी उम्र के बच्चों से मिलता है, अपने से बड़ों से मिलता है, वहां से बच्चा सीखना शुरू करता है। तो अगर हम देखें तो 0 से लेकर 8 साल तक की एज होती है जहां पर जो हमने बच्चे को दे दिया वो उसकी पूरी जिंदगी, उसकी पूरी उम्र उस तरह से चलती है,
0: यानी नींव पड़ जाती है बच्चे की शख्सियत की, उसकी पर्सनालिटी।
1: बिल्कुल
0: जी। इसके आगे भी फिर 8 के बाद भी बच्चे को कुछ रहता है गाइडेंस की जरूरत?
1: गाइडेंस की जरूरत तो देखिए बच्चे को तब तक रहती है जब तक बच्चा बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए। उसके बाद एज आती है जहां पर बच्चे का शारीरिक तौर पर इतना चेंजेस आ रहे होते हैं, आप बायोलॉजिकल चेंजेस, हार्मोन्स के चेंजेस बोल लीजिए, या बच्चे का शरीर कुछ सिग्नल्स, क्यूरियोसिटी मतलब कुछ जानने की थॉट्स आती हैं वो आना शुरू हो जाता है। बच्चा अपने शरीर के बारे में जानना चाहता है, उसके दिमाग में जो थॉट्स आ रहे होते हैं, जो बहुत सारे एक साथ चीजें चल रही, पीयर प्रेशर है, दोस्तों का जो एक प्रेशर होता है, कॉम्पिटिशन है, आज अगर हम देखें कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है, उसमें पीछे ना छूट जाए बच्चा, करियर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होने शुरू हो जाते हैं। तो 8 के बाद अगर हम देखें तो 14 साल तक की उम्र होती है जहां पर पेरेंट्स को और क्षेत्र में, अलग क्षेत्रों में, उसके करियर को लेकर, उसके शरीर को लेकर बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है।
0: कहीं ना कहीं उसके मानसिक विकास में ये सारी चीजें
1: बिल्कुल
0: असर करती हैं।
1: और अगर उस समय पर उनके सवालों का जवाब ना मिले तो बच्चा कुछ और ऑप्शन ढूंढेगा, जिसमें इंटरनेट बहुत ज्यादा सहायता करता है बच्चों की, जो कि गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। देखिए इंटरनेट कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन वहां इन्फॉर्मेशन जो सारा कंटेंट है वो इतना ज्यादा स्कैटर्ड है कि ये समझ पाना कि वो सही है या नहीं है, इसके लिए भी गाइडेंस की जरूरत है, तो वो भी माता पिता ही करेंगे।
0: बिल्कुल। एक क्वेश्चन आया है, उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है लेकिन वो कहते हैं कि अगर कोई बच्चा बचपन में अपने पिता को खो दे तो क्या इसका इफेक्ट पड़ता है उस बच्चे के मानसिक विकास पर, और उन्होंने इमोशनल डेवलपमेंट को भी ऐड कर दिया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल असर पड़ता है, क्योंकि देखिए अगर बचपन में ही कोई एक मतलब माता पिता या दोनों में से कोई भी एक जना नहीं रहे बच्चे के सामने, तो एक तो सामाजिक तौर पर बच्चे के मानसिक विकास पे असर पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो उसके दोस्त हैं, जो उसके आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनके पिता होंगे, तो ये देखकर उसको खालीपन महसूस होता है। मतलब इस तरीके से एक स्टेट आ जाती है जहां पर वो सीखने के लिए चाहता है कि

0: कोई हो, कोई सुनने, जैसे अगर दोस्त है उसका, वो बोले कि आज मैं अपने पापा के साथ वहां घूमने गया, वहां मैंने इतना मजा किया, तो उसको भी एक खालीपन का एहसास होगा कि मेरे पिता होते तो शायद मैं भी ये कर रहा होता। तो बच्चे का मानसिक विकास बिल्कुल असर पड़ता है उसके ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति उसकी जिंदगी में ना रहे तो।
1: जी, एक और क्वेश्चन आया है लता का, लखनऊ से। वो लिखती है कि मानसिक विकास के लिए शारीरिक विकास यानी शारीरिक स्वास्थ्य कितना जरूरी रहता है।
0: बिल्कुल जरूरी है। देखिए, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर शारीरिक विकास नहीं होगा, छोटे सा एग्जांपल से समझते हैं, अगर मेरा पेट खाली है, मैं भूखी हूँ सुबह से, तो मेरा दिमाग नहीं चलेगा, जाहिर बात है।
1: हाँ, या चिड़चिड़ा हो जाएगा,
0: चिड़चिड़ापन आ जाएगा। शरीर दिमाग के साथ उतना कोऑर्डिनेशन, उतना संतुलन नहीं बना पाएगा कि वो सही डिसीजन ले सके। तो शारीरिक विकास भी मानसिक विकास के लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना मानसिक विकास शारीरिक विकास के लिए जिम्मेदार है। दोनों एक दूसरे के पूरक
1: वाइस वर्सा है।
0: बिल्कुल
1: जी, बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के मानसिक विकास की। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हमें व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9868107070।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: वेलकम बैक आकाशवाणी रेनबो पर रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम और आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के मानसिक विकास की। बच्चों के जब मानसिक विकास की बात की जाती है तो माता पिता बहुत महत्वपूर्ण

0: भूमिका निभाते हैं और साथ ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो टॉयज, वो खिलौने जो वो बच्चों के लिए लेकर आते हैं और उन्हें देते हैं। हाल फिलहाल अभी सुना हमने प्रोग्राम के दौरान कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि जो आपके पास टॉयज है वो आप किसी दूसरे बच्चे को दे सकते हैं। ये कहीं ना कहीं इंगित करता है कि बच्चों की जिंदगी में, छोटे बच्चों की लाइफ में, डे टू डे की लाइफ में टॉयज बहुत इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं, महत्व रखते हैं। तो मिस जैन आपसे जानना चाहेंगे कि जब माता पिता टॉयज का सिलेक्शन करें तो वो किस तरीके से करें, किस तरीके के टॉयज वो अपने बच्चों के लिए खरीद कर लेके आए और क्या एज और टॉयज का कोई रिलेशन है, ये भी जानना चाहेंगे मानसिक विकास के लिए।
1: बिल्कुल, टॉयज और एज का डायरेक्ट रिलेशन है क्योंकि जैसे हम अपनी एज के अनुसार अपने खेलों का चयन करते हैं वैसे ही बच्चों के लिए भी हर तरीके की एज ग्रुप के लिए अलग अलग टॉयज हैं इस तरीके से, जिसमें उनके मानसिक विकास का बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं वो खिलौने। जैसे अगर हम बिल्कुल छोटे बच्चों की बात करें, जो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का बच्चा है, उन बच्चों के लिए जो आवाज करने वाले खिलौने होते हैं, रेटल्स, झुंझुने जिन्हें बोला जाता है, ऐसे खिलौने चूज करने चाहिए, ऐसे अनब्रेकेबल कि भाई बच्चे को चोट ना लगे, जिसमें वो खुद को देख सकें या उनको होल्ड कर सके, पकड़ सके, ऐसे सेफ खिलौने होने चाहिए जिन्हें वो मुंह में डाल सके
0: टीथर
1: के तौर पर, या कुछ और हम जैसे खिलौने होते हैं जिन्हें वो लेट कर, जैसे क्योंकि बच्चा 4 महीने 5 महीने का बच्चा बैठने में सक्षम नहीं है लेकिन, और वो सीख रहा होता है उस समय पे, तो डेंगलर्स होते हैं जो लटकने वाले खिलौने होते हैं, उस तरीके के खिलौनों का चयन करना चाहिए,
0: टम्बलर्स।
1: ठीक है, जब थोड़ा और बच्चा बड़ा हो रहा है, 7 महीने का 8 महीने का 12 महीने का 1 साल का बच्चा हो गया, उस टाइम पे बच्चा थोड़ा थोड़ा बैठना, रेंगना, सरकना सीख जाता है, तो उस टाइम पर जैसे गेम हम चूज कर सकते हैं, बॉल्स, हमने गेंदें जो होती हैं वो, जो थोड़ा मूवेबल बच्चे को बनाए थोड़ा सा इस तरीके के। उसके बाद आते ही है एज 1 से 2 साल की एज आती है, जिसमें पिक्चर पॉइंटिंग वाले जो गेम्स होते हैं, जैसे कि जो पिक्चर से रिलेटेड गेम्स होते हैं ना, जिसमें पिक्चर्स बनी होती हैं, हम बच्चे को सिखाते हैं ये एप्पल है, ये बंदर है, ये केला है, कुछ भी इस तरीके के चीज, ऑब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिसमें हम रंगों के नाम भी उन्हें दर्शा सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद एज आती है 2 से 5 साल तक की उम्र आती है, 3 साल 4 साल का बच्चा हो जाता है, उस समय पे जो खेल होने चाहिए, सॉफ्ट टॉयज होने चाहिए, ताकि बच्चे को भावनात्मक तौर पर भी बच्चे का डेवलपमेंट हो वहां पर।
0: बिल्कुल,
1: ठीक है। और इसके अलावा उस टाइम पे पजल से रिलेटेड जो गेम्स होते हैं, पजल सॉल्विंग गेम्स होते हैं ना, जिसमें जोड़ना होता है, तोड़ना होता है, ब्लॉक्स होते हैं, इस टाइप के गेम्स दिखाए जाने चाहिए, देने चाहिए, और इस तरीके से सुमोन। अच्छा, 3 साल 4 साल की उम्र में बहुत जरूरी है बच्चे को फिजिकल स्टिमुलेशन देना, मतलब सेंसरी स्टिमुलेशन, छूने की, क्योंकि 5 तरीके के हमारे इंद्रियां होती हैं जिसमें छूना भी, फील करना, टच करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम जीप से टेस्ट करना सीखते हैं, जो बच्चा शुरू से सीख जाता है, देखना सीख जाता है, सुनना सीख जाता है,
0: बिल्कुल ये डेवलप हो रही होती है,
1: डेवलप हो रही होती है, लेकिन फील करना वो सेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अगर अर्बन सिटीज की बात करें, बच्चों के लिए क्ले अवेलेबल है, लेकिन जहां हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, वहां पर क्ले कहां से आएगी, तो वहां पर गूंदा हुआ आटा दे सकते हैं बच्चे को, चावल, दाल, इस टाइप की चीजें दे सकते हैं, जिसमें बच्चा खेले थोड़ा बहुत और स्टिमुलेशन ले, समझे उस चीज को, खुरदरा पैटर्न, जैसे हम कपड़ा छू के बता देते हैं ऐसा है ना, तो ये स्टिमुलेशन भी मानसिक विकास को और अच्छे से, बेहतर तरीके से बढ़ाने में मदद करता है।
0: जी बिल्कुल। एक मैसेज आया है नेहा का जयपुर से, वो कहती है कि वो 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट है, वो आपसे सलाह चाहती है कि वो किस तरीके से अपने बेबी का मेंटल जो स्वास्थ्य है, जो मेंटल डेवलपमेंट है वो करें, और क्या क्या चीजें वो अपने व्यवहार में इंक्लूड करें कि इनसाइड बेबी का अच्छा मानसिक विकास हो।
1: इसके लिए सबसे जरूरी है अच्छा पोषण लेना, अच्छा खाएं, समय पर खाएं, और साथ में फिजिकल एक्टिविटीज करते रहें, मतलब ऐसा नहीं है कि उछल कूद करनी है फिजिकल एक्टिविटी में, एक जो गर्भावस्था होती है उसमें से शिथिल रूप से बैठे रहना भी कभी कभी हानिकारक होता है बच्चे के विकास के लिए, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो चाहे वो मानसिक तौर। तो मूवेबल रहें, चलते रहें, थोड़ा बहुत अपना काम करते रहें, किताबें पढ़ें, अच्छे गाने सुनें, स्क्रीन थोड़ा सा लिमिट कर दें, ज्यादा टीवी में ज्यादा नहीं इन्वॉल्व रहें, सोएं समय पर, कुछ कुछ हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, खाते रहें, और अपना विशेषकर ध्यान रखें कि फिजिकल एबिलिटीज से बियॉन्ड ना जाएं, मतलब कि जितना शारीरिक तौर पर वो झेल सकती हैं उतना ही करें, उससे आगे ना जाएं, और डॉक्टर के सलाह परामर्श लेते रहें, टाइम टाइम पर जो सप्लीमेंट्स हैं उन्हें लेते रहें, इससे शारीरिक और मानसिक तौर पर बिल्कुल ही बच्चे का सही विकास होगा।
0: अच्छा, इस कंडीशन में नई चीजों को सीखना जैसे नया कोर्स सीखना, क्या उससे भी फर्क पड़ता है?
1: बिल्कुल फर्क, आप नई स्किल सीख सकते हो, बिल्कुल
0: उससे बच्चे का भी मानसिक विकास होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप ये समझ लीजिए जो आप कर रहे हैं वही वैसा ही अपने बच्चे को बना रहे हैं।
0: बिल्कुल, एक ऐसा ही क्वेश्चन आया, वो कहते हैं कि जब पुराने जमाने

0: बात है 40-50 साल पहले की बात है, तो बच्चों को रात को कहानियां सुनाई जाती थी, ऐसे गेम्स होते थे जिनसे कि उनके जो इंद्रियां हैं वो डेवलप हों, जैसे उनके आंख में पट्टी बांधी और उसके बाद किसी ने क्लैप की तो क्लैप की आवाज में उनको जाना होता था और वहां पे बच्चे को छूना होता था, कुछ ऐसे होता था। तो वो कहते हैं कि आजकल सब लोग मोबाइल में ही लगे रहते हैं, बच्चों को भी मोबाइल दे देते हैं, तो ऐसे में पुराने खेलों को दोबारा से व्यवहार में लाना कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से ये सपोर्ट करता है मानसिक डेवलपमेंट के लिए जो भी विकास होगा उसके लिए, ये जानना चाहते हैं। और स्क्रीन टाइम के बारे में भी उन्होंने कहा है कि स्क्रीन टाइम से क्या मेंटल डेवलपमेंट में कोई प्रभाव पड़ता है बच्चों के।
1: देखिए, पहले मैं दूसरे क्वेश्चन का ही आंसर देना चाहूंगी। स्क्रीन टाइम से बच्चे का जो मानसिक विकास है उस पर गहरा असर पड़ता है, क्योंकि उसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं। एक तो स्क्रीन टाइम, मोबाइल बच्चा लेके बैठा है, फिजिकल एक्टिवनेस नहीं रहती। आप यकीन मानेंगे कि जो स्क्रीन टाइम है, अगर आपने 1 से 2 साल की उम्र में बच्चे को दे दिया, बच्चा बोलना भी नहीं सीखेगा, क्योंकि बच्चा सिर्फ देख रहा है। जो पुराने खेलों की आपने जो बात कही, पहला जो आपका सवाल था कि पुराने खेल क्या वापस आने चाहिए, वो जाने ही नहीं चाहिए थे देखा जाए तो। इसमें कमी देखिए पेरेंट्स की भी है। पेरेंट्स ना होकर के हो सकता है कुछ लोगों को ये बात शायद बुरी लग जाए, पेरेंट्स सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए हैं। पेरेंट्स सिर्फ सुविधाएं देने में लगे हैं अपने बच्चों को, बच्चों के साथ समय बिताना, बच्चों के लेवल पे आके उनसे बातचीत करना, उनको सुनना। शायद आजकल नए जो माँ बाप है, नए पेरेंट्स माता पिता बन रहे हैं, वो शायद उन्हें लगता है कि ओल्ड फैशन चीज है या ये इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो कमा रहे हैं। मैंने हाउसवाइफ्स भी देखी हैं काफी, जो घर में हैं लेकिन बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है, माँ कुछ और काम कर रही है या फिर कुछ नहीं भी कर रही है तो बच्चा फोन में लगा हुआ है
0: जी।
1: इससे मानसिक तौर पर तो गहरा बुरा प्रभाव पड़ता है। आप विकास छोड़िए, उल्टा रिवर्स इफेक्ट आएगा,
0: नेगेटिव
1: इफेक्ट आएगा। बच्चा बोलना नहीं सीखेगा समय पर, बच्चा खेलना नहीं सीखेगा, बच्चा दोस्त नहीं बना पाएगा, आइसोलेशन का शिकार, मतलब अकेलेपन का शिकार हो जाता है बच्चा। हमें लगता है अकेला ही तो है, कोई बात नहीं ना। एक तो वैसे ही कम, एक या दो बच्चों के बाद माँ बाप रुक जाते हैं कि नहीं और बच्चे तो नहीं, ठीक भी है, उनकी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड कर पा रहे हैं, लेकिन बच्चा अकेलेपन का शिकार हो रहा है और इतने छोटे छोटे बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, घबराहट हो जाना, अपनी बात ना कह पाना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना कर पाना, क्योंकि इमोशंस कब कैसे एक्सप्रेस करना सीखेगा बच्चा, जब वो बात करना सीखेगा। कई बार छोटे बच्चों को ये तक नहीं पता होता कि मेरे इस इमोशन का नाम क्या है, मैं क्यों चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है तो क्या इसको गुस्सा कहते हैं, इसे नाराजगी कहते हैं, ओवर एक्साइटमेंट हो गई है बच्चों में, क्या इसे खुश होना कहते हैं या ये शरारत है। बच्चे फर्क नहीं कर पा रहे हैं और इसका बहुत बड़ा कारण है स्क्रीन टाइम का होना, स्पेशली हाथों में मोबाइल दिए जाना, जो 5 साल तक की उम्र तक बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए। अगर आपको कहानियां सुनानी है, मुंह से सुनाइए, ऑडियो का इस्तेमाल कीजिए, सुन मतलब कानों का इस्तेमाल कीजिए रेदर देन आंखों का इस्तेमाल करने की बजाय, ठीक है। इसके अलावा जो बेड टाइम स्टोरीज होती हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। देखिए, इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो मैं ज्यादातर कहानी सुनाने वाला जो काम होता है ना, ये पिताओं को देती हूँ, फादर्स को, क्योंकि हम देखे ना, आज भी मैक्सिमम जो आवर्स हैं, दिन के घंटे हैं, बच्चा अपनी माँ को देखता है, पिता से उतना उसका टाइम इंटरेक्शन नहीं होता, कम्युनिकेशन नहीं होता। तो बेहतर है कि पापा लोग ये काम करें, रात को आए सिर्फ 10 मिनट निकालें, बेड पर जब बच्चा सोने जा रहा है उसको एक छोटी सी कोई भी कहानी सुनाएं, चाहे वो मॉरल स्टोरी हो, बच्चे के फेवरेट कैरेक्टर की स्टोरी हो, चाहे रिलीजियस कोई कहानी सुना सकते हैं इससे। और साथ में सिर्फ सुनाना नहीं है, उनसे 3 सवाल भी करने हैं, बेटा आपको स्टोरी कैसी लगी, आपको इस स्टोरी में सबसे ज्यादा अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा और क्यों, और इस स्टोरी से आपने क्या सीखा। आप बिलीव करेंगे 1 महीना कोई एक्सरसाइज करके देख लेगा, बच्चे का एक तो लिसनिंग पावर बढ़ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा, उसकी फोकस की जो एबिलिटी वो बढ़ जाएगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पापा से जो उसका कनेक्शन है, बॉन्ड है,
0: रिलेशनशिप
1: इतना बेहतरीन हो जाएगा कि कभी भी बड़े होने पर, क्योंकि हम पैदा होते ही बच्चे को जब डेवलप कर देंगे ये चीज, तो जब उसको कोई भी इमोशनल समस्या आएगी तो वो अपने पापा से पिता से कहने से डरेगा नहीं, ना वो कंफ्यूज होगा कि मैं अपने पापा से बात करूं या ना करूं।
0: जी हाँ, बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं बच्चों के मानसिक विकास से संबंधित। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हमें व्हाट्सएप करें, हमारा व्हाट्सएप नंबर 9868107070। दो फोन लाइन्स हैं जिन पर आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर है 0112342108401112342108। जब एक बच्चा घर का हिस्सा बनता है, माता पिता की जिंदगी का हिस्सा बनता है, बाकी परिवार के सदस्यों की जिंदगी का हिस्सा बनता है, तो बहुत जरूरी हो जाता है ये जानना कि बच्चों का मानसिक विकास सही तरह से हो रहा है या नहीं, कैसे जानिए, जानेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।
2: लकड़ी की काठी का ठीपे

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: वेलकम बैक आकाशवाणी रेनबो पर। रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम आज का विषय बच्चों का मानसिक विकास और हमारे साथ हैं एक्सपर्ट दीपिका जैन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी दीपिका कि किस तरीके से जाने कि बच्चों का मानसिक विकास सही तरीके से हो रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अम्बाला से विधु ने भी यही क्वेश्चन हमसे किया है, तो हम जानना चाहेंगे।
2: जी, अगर हमें ये देखना है कि बच्चे का मानसिक तौर पर विकास ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हमें कुछ चीजें अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी अपने बच्चे के साथ में। पहली बात कि क्या बच्चा आपसे बात करने आता है, कुछ क्वेश्चंस खुद से करें कि क्या बच्चा आपसे बात करने आता है, क्या बच्चा अपनी उम्र के बच्चों के साथ उस तरीके से खेलता है जिस तरीके से बाकी बच्चे खेल रहे हैं, क्या बच्चा अकेला तो नहीं रहना ज्यादा पसंद करता, क्या बच्चे का रूटीन तय है, मतलब जो टाइम टेबल जो हम बच्चे के लिए बनाते हैं वो है, या बच्चे को कोई सेफ एनवायरमेंट या सेफ एक जगह, हम एक ऐसा रिलेशन कुछ ऐसा फील करा पा रहे हैं कि वो एक सेफ जगह पर है, स्थिर जगह पर है। तो

0: कुछ ये पॉइंट्स होते हैं जिस पर हम बच्चे से मेजर करते हैं कि बच्चे का मानसिक तौर पर विकास ठीक तरीके से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर इन सभी सवालों के जवाब ना में हैं या इनमें से ज्यादातर के जवाब ना में हैं, तो हमें सोचने की जरूरत है और हमें उस पर काम करने की जरूरत है कि बच्चे का मानसिक विकास अगर उस टाइम तक नहीं भी हुआ है तो हम आगे ठीक कर सकें। कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं अभी बताना चाहूंगी जिनको अगर हम मेजर कर लें तो हम जान सकते हैं कि बच्चे का मानसिक विकास ठीक तरीके से होता है कि नहीं। इसमें पहला है सेफ और स्थिर एनवायरनमेंट होना, घर में रिलेशंस होना। घर में झगड़े हैं, मम्मी पापा की बन नहीं रही है, या घर में कई और तरीके के कलेश हैं, या कोई अब्यूजिव लैंग्वेज, मार पिटाई, डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीजें हो रही हैं, तो जाहिर तौर पर वहां पर बच्चे का मानसिक विकास आप पॉजिटिव तरीके से तो नहीं कर सकते। दूसरा होता है कि बच्चा आपसे कितना कम्युनिकेट कर पा रहा है, क्या खुला कम्युनिकेशन है। देखिए, सवाल जवाब ऐसे होने चाहिए जिसमें हाँ ना के अलावा भी बातें हों। जैसे बच्चा मान लीजिए स्कूल से घर आया, आपने खाना खाया, बच्चे ने बोला हाँ या ना, दो ही इसके ऑप्शंस हैं। देखिए, टिफिन खोल के आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे ने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा,
1: लेकिन पूछना जरूरी होता है, लेकिन बॉन्डिंग के लिए।
0: लेकिन अगर इस सवाल को इस तरीके से पूछें कि इसे ये पूछने की बजाय कि आपने खाना खाया या नहीं खाया, अगर हम इसे ऐसे पूछें कि आज आपको खाना कैसा लगा, तो उसको बोलने का मौका मिलेगा, वो आपसे अपनी फीलिंग्स बता पाएगा, वो बता पाएगा कि उसको खाना कैसा लगा या उसके दोस्त के साथ उसने शेयर किया था, उसके दोस्त को भी कैसा लगा। 3 साल 4 साल का बच्चा स्टोरी टेलिंग में एक्सपर्ट हो जाता है, बताना शुरू कर देता है अपने दोस्तों की कहानियां, बताना तोतली जबान में ही सही बताना शुरू कर देता है।
1: जी जी,
0: तो कम्युनिकेशन के मौके दें। अब कम्युनिकेशन के लिए बैठना नहीं है कि हमें बैठना पड़ेगा, पेरेंट्स सोचेंगे अरे अरे ये तो एक काम हो गया। माएं घर में बर्तन धोते धोते भी बच्चे से बातचीत कर सकती हैं, खाना बनाते बनाते भी बातचीत कर सकती हैं।
1: बिल्कुल,
0: पिता जो है किसी भी खेल के दौरान बच्चे से उसके पूरे दिनचर्या के बारे में बातचीत कर सकता है। उस देखिए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो देखकर हम तय कर सकते हैं, पर वो उस काम में कैसा महसूस कर रहा है वो सिर्फ बच्चा ही बता सकता है। तो क्या और क्या ना से बेहतर है कैसे पे जोर दिया जाए, कैसा महसूस हो रहा है। तीसरा एक पॉइंट आता है कि जो उसके इमोशंस हैं, जो उसकी लर्निंग है, जो वो सीख रहा है आसपास से, उसको नाम देना, उसको समझ पाना। मान लीजिए कोई बच्चा चिड़चिड़ा है, उसे पता ही नहीं वो क्यों चिड़चिड़ा है या इस फीलिंग को कहते क्या है, तो वो आपको नहीं बताएगा। बाहर किसी से झगड़ा हो गया, वो कैसे बताएगा कि वो झगड़ा करके आया है। ठीक है, आप उसके शायद फटे कपड़े या मिट्टी लगे हुए हाथों से पहचान कर भी लें, लेकिन जब तक वो नहीं बताएगा, आप माँ हैं, आप पिता हैं, आप समझ लेंगे, लेकिन बाहरी दुनिया कैसे समझेगी। तो नाम देना बहुत जरूरी है किसी भी इमोशन को। चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की जिंदगी में स्कूल, टीचर्स। अगर टीचर्स या स्कूल अंडरस्टैंड कर पा रहा है बच्चे की जरूरतों को या उसकी कमियों को समझ पा रहा है, तो बहुत अच्छे तरीके से मानसिक विकास किया जा सकता है। तो कुछ आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं कि जिनसे आप अपने बच्चे का मानसिक विकास अच्छे तरीके से कर पाए। तो ये 4 पिलर्स हैं, मेन 4 पिलर्स, अगर हम इन पे ध्यान दें तो हम बहुत अच्छे से मेजर कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, वक्त की तो कमी है, क्या अभी हम डिस्कस कर सकते हैं उन पॉइंट्स को?
0: बिल्कुल हम कर सकते हैं। मेजरली जो पॉइंट्स होते हैं जिसपे बात ध्यान रखने वाली बातें हैं कि सबसे पहले बच्चे को सीखने के लिए प्रोत्साहित करें, उसको सिर्फ मोबाइल देके छोड़ देना या फिर ऐसे करके किसी भी काम में लगे रहना, देखिए खाली दिमाग शैतान का घर, ये कोई कहावत झूठी नहीं है। खाली बैठे बैठे इंसान कुछ भी करता रहे, इससे अच्छा कुछ प्रोडक्टिव करे, कुछ सीखे, कुछ नया सीखे, चाहे छोटा सा खेल ही सही। 0 काटा खेलते थे हम स्कूल में,
1: बिल्कुल
0: वो 0 काटा भी आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को एनहांस करने में उतना ही बड़ा रोल प्ले करता है जितना हम कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहे हो, कोई हॉकी या बास्केटबॉल जैसा गेम खेल रहे हो। वो 0 काटा भी वो ही रोल प्ले करता है बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटी यानी कि मानसिक विकास को बढ़ाने के लिए, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए। दूसरा पॉइंट है कि बच्चे के लिए ना लक्ष्य बनाएं, टारगेट सेट करें कि बेटा आज अब हम 1 हफ्ते तक रोज सुबह जल्दी उठेंगे और वॉक पे जाएंगे। बॉन्डिंग अपने आप क्रिएट होगी, वो बाय डिफॉल्ट चीज है, उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी। तीसरा पॉइंट है कि बच्चों के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, इसमें बहुत छोटा सा टाइम, आई नो इट शॉर्ट है,
1: बट
0: मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि जैसे माँ होती है ना, वो पिता के पर्स से बिना पापा के परमिशन के पैसे निकाल लेती है।
1: हाँ, या हम बैग खोल लेते हैं,
0: बैग
1: खोल लेते हैं,
0: है ना।
1: हाँ जी,
0: बच्चा वही देख रहा है। मैं बात कर रही हूँ वो 5-6 साल 7 साल के बच्चे की उम्र की, जो बच्चा अपने आसपास से देख रहा है। अब बच्चे ने क्या करा, एक दिन ऐसे ही माँ के पर्स से पैसे निकाले और ले के चल पड़ा। अब माँ को शक तो हुआ कि पैसे गायब तो हुए हैं। माँ ने 2-4 दिन ऑब्जर्व किया, चीजें करी, पता चला सच में बच्चे ने पैसे निकाले। अब बच्चे से बातचीत हुई। अब एक ही तरीका कि बच्चे को मारो पीटो और पनिशमेंट दो और खत्म करो, दूसरा तरीका है बातचीत करो। बच्चे ने ऐसा सीखा कहाँ से? एग्जैक्टली, क्या उसके दोस्त ने ऐसा सिखाया या कोई और बात थी? बच्चे को बिठाया गया।

0: जरा बातचीत की कि माँ समझदार थी, बच्चे से बातचीत की। तो बच्चे ने बातचीत के दौरान ये बताया कि मम्मी आप भी तो पर्स से पैसे निकाल लेती हो, तो मैंने भी निकाल लिया। मुझे लगा मेरा भी ये अधिकार है, जैसे आप बिना बताए या पापा आपके पर्स से बिना बताए कोई सामान निकाल लेते तो मैं भी निकाल सकती हूँ।
1: बिल्कुल, जो उसने देखा वही उसने अडॉप्ट कर लिया।
0: एग्जैक्टली तो पॉइंट इज कि बच्चे ने, वो इंटेंशन रॉन्ग नहीं था बच्चे का, लेकिन बच्चे ने सीखा कहाँ से, घर से या आसपास के माहौल से। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप वहाँ पर कैसे हम करेक्ट करेंगे बच्चे को कि बेटा आपको इसको ठीक करने का तरीका ये नहीं था कि हम बच्चे को प्रीच करें, प्रवचन दें, बच्चे को पनिश करें। माँ ने पिता के पर्स से अगली बार से जब भी कोई पैसा निकाला, कुछ करा, तो जोर से बोला, सुनो जी मैंने आपके पर्स से 20 रुपए निकाले, सुनो जी मैंने आपके पर्स में 10 रुपए रखे, या सब्जी वाले को मैं पैसे देकर आ रही हूँ आपके पर्स से निकाले। यही चीज बच्चे में आ गई और फिर दोबारा वो कारनामा दोबारा नहीं हुआ, बच्चे को ये सेंस आ गया व्यवहारिक तौर पे। ठीक है, आगे देखें तो खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। हमेशा पढ़ाई लिखाई जरूरी है मानते हैं, लेकिन खेल जो बच्चों का मानसिक विकास कर सकता है वो कोई दूसरी चीज नहीं कर सकती।

0: जो बच्चा होता है उसके मानसिक विकास में कोई फर्क पड़ता है, या जब दोनों को पाल रहे हो, जब एज गैप हो, एक है आपका 6 महीने का बच्चा और एक है आपका 3.5 साल का बच्चा, तो किस तरीके से मैनेज करना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए मानसिक विकास को प्राप्त कर रहे?
1: बिल्कुल, ये ना आमतौर पर मेरे ख्याल से सभी घरों में ये समस्या आती होगी कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज पे। तो इसमें बहुत सिंपल है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, तो बहुत सिंपल सी चीज करनी है। देखिए, समय तो बटेगा, जाहिर सी बात है, जो छोटा बच्चा उसको माँ की सबसे पहले जरूरत होगी, बड़े को शायद जरूरत है लेकिन उसको वो सेकेंडरी तौर पर ही रखेगी। लेकिन करना सिंपल सा ये है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि साथ में खाना खिलाएं, छोटे को फीड करा रहे हैं, बड़े को भी फीड कराएं उसी समय पर। ये ना करें तो बड़ा हो गया तू खा ले अपने आप, नहीं, साथ में कराएं। सिबलिंग से जो उसका भाई या बहन आया है दुनिया में, बड़े वाले को ये एहसास कराएं कि अब आपकी जिंदगी में एक और जन आ गया है, आपको उसको भी अपने लाइफ में का पार्ट बनाना है। छोटी छोटी जिम्मेदारियां बांटें, जैसे बच्चे का टॉवल ही क्यों ना लाना हो, आप ला सकते हैं, लेकिन बोले बड़े को, बेटा अपने छोटे भाई का या बहन का टॉवल ला दो, बेटा उसका खिलौना गिर गया है उसको अपने साथ खिला लो। छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें, इनका ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और दोनों का बॉन्ड भी आगे तक स्ट्रांग रहेगा।
0: आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की। एक्सपर्ट दीपिका, अगर आप चलते चलते कुछ कहना चाहें, क्योंकि अब वक्त यही कह रहा है कि हमें चलना होगा, तो आप लास्ट में क्या कहना चाहती हैं हमारे सभी लिसनर्स को?
1: मैं सभी लिसनर्स का थैंक यू सो मच, आपने मेरे को ये मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आके चीजें बताने का। बस इतना मैं कहना चाहूंगी इसको एंड अप करने के लिए कि पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है किसी भी बच्चे के मानसिक विकास के लिए। जैसा क्वेश्चन भी आया था कि अगर दोनों में से कोई एक नहीं होता तो क्या ही असर पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। तो सिंपल ये है कि आप जितना नॉर्मल और नेचुरल रहेंगे बच्चे के साथ, बच्चे की ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी। खाने पीने का नेचुरल तरीके से हम ध्यान रखते हैं, ऐसे ही हमें बच्चे की भावनाओं का, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सिंपल है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ मेहनत नहीं करनी, कुछ कहीं अलग नहीं जाना। और आप छोटे छोटे लाइफ स्किल्स को सीखते रहें ताकि बच्चा आपको देख के सीखता रहे।
0: जी बिल्कुल, आज रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम में हमने बात की बच्चों का मानसिक विकास। हमारे साथ एक्सपर्ट रहे दीपिका जैन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। दीपिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय हमें दिया और इतने सारे क्वेश्चंस के इतने अच्छे आंसर्स हमें दिए कि हमें बहुत अच्छे तरीके से ये जो टॉपिक है वो समझ आया। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका
0: जी। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
3: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
2: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
5: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
6: पता का चाय, गजब का स्वाद।
7: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
8: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
9: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
10: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
11: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
10: इम्पॉसिबल
11: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
7: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
8: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
12: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
13: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: रहा है बबल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज

0: की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

ये है एफएम रेनबो और अब इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्यवाही समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के संसद के सुचारू संचालन की अपील की, कहा गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल के साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में हुई। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए। विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में भाग लिया। महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 घायल हो गए। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लोकसभा में सरकार ने बताया है कि मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून की बदलती स्थिति और अलनीनो के कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की लगातार निगरानी की जा रही है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज वर्षा का अनुमान है। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ज्योतिका और वक्त हो चला है आशियाना का। और आज का आशियाना थोड़ा सा खास ज्यादा है, क्योंकि आज की जो हमारी मेहमान हैं वो बेहद खास हैं। उन्होंने अपनी एक ऐसी पहचान बनाई है जिसका शायद ही कोई मुकाबला कर सके। कभी साइंस की दुनिया, कभी किताबों और कविताओं की दुनिया, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, कल्चर और इन सब के बीच एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन इंडिया और जर्मनी का। और मुझे लगता है ना कि एक वुमन की जर्नी की खूबसूरती भी यही है। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही चीज बने, हम अपनी जिंदगी के अलग अलग दौर में खुद के नए वर्जन्स डिस्कवर कर सकते हैं। तो आज आशियाना एक मुलाकात वुमेन स्पेशल में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर योजना साहजैन, जो ऑथर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, टेडएक्स स्पीकर हैं, एआई गवर्नेंस एडवोकेट और कल्चरल एम्बेसडर हैं। योजना जी, आकाशवाणी एफएम रेनबो के आशियाना में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच ज्योतिका, आई एम सो एक्साइटेड टू बी हियर, सो थैंकफुल ग्रेटफुल टू यू और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, आई एम सो एक्साइटेड।
1: थैंक यू मैम, बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ यहाँ हैं। और आपके बारे में मैंने अभी तक जितना भी पढ़ा है वो मुझे लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं थोड़ा कम ही लग रहा है। बट सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूंगी आपकी अचीवमेंट्स को लेकर, कि इतने सारे टाइटल्स और इतने सारे रोल्स के पीछे जो योजना है वो खुद को कैसे डिस्क्राइब करेंगी?
2: योजना खुद को डिस्क्राइब करेगी एज अ क्रिएटिव, क्यूरियस, रेस्टलेस सोल और जिंदगी की के विद्यालय की एक विद्यार्थी के तौर पे एक एटर्नल लर्नर। क्योंकि ज्योति का मेरा मानना है कि टाइटल्स जो है ना वो तो आते जाते रहते हैं,
1: राइट?
2: व्हाट रिमेन्स एंड व्हाट मैटर्स इज द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट जो आप इस दुनिया पे, इस सोसाइटी पे छोड़ के जाओगे। और जो भी आपने मेरे बारे में बोला वो मुझे लगता है कि मेरी जर्नी, मैं उनको अलग अलग हिस्से नहीं मानती, वो मेरी जर्नी के अलग अलग एक्सप्रेशंस भर हैं। और मैंने खुद को कई बार रीइन्वेंट किया और हर बार यही सीखा कि कम्फर्ट जोन से जब आप निकलते हो, कुछ नया ट्राई करते हो, तो जो आपको कॉन्फिडेंस आता है उसका कोई मुकाबला नहीं होता। और यही मुझे लगता है कि मेरी अब तक के जीवन की सीख है कि टाइटल्स आपको डिफाइन ना करें, बल्कि आप जो भी अपनी ज़िंदगी में करना चाहें वो आप ट्राई ज़रूर करें।
1: बिल्कुल, वेरी राइटली एंड वेरी ब्यूटिफुली सेड कि आपने कभी अपने आप को एक पर्टिकुलर बॉक्स में नहीं डाला।
2: एग्जैक्टली।
1: एंड जैसे आप अपनी जर्नी की बात कर रही हैं, तो अगर मैं आपकी बचपन की जर्नी थोड़ी सी पूछना चाहूँ, क्या आप हमेशा से हर सब्जेक्ट को लेके या हर फील्ड को लेके क्यूरियस रही थी?
2: डेफिनेटली, एक क्यूरियस माइंड हमेशा क्यूरियस रहता है, क्योंकि जब आप क्यूरियोसिटी को छोड़ देते हैं, सीखना छोड़ देते हैं, तो आपकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है। बचपन की जहाँ तक बात है, फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं। मैं पहाड़ों से आती हूँ, आई एम अ प्राउड पहाड़ी, उत्तराखंड की वादियों से। तो पहाड़ों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत सारी स्ट्रगल्स देखी लाइफ में। मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वो समय था 1990s का टाइम, जब बहुत सारे चैलेंजेस हमारी हमारे देश ने देखे, फिनेंशियल क्राइसिस देखी, उस दौर से हम लोग निकले। तो वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मेकिंग यू नो योर ओन लाइफ बाय योर सेल्फ, क्योंकि ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम, कोई कुशन मैकेनिज्म नहीं हुआ करता था, आपको खुद अपनी ज़िंदगी बनानी होती थी। तो बहुत कुछ उसने सिखाया। और पढ़ाई के साथ साथ मुझे लगता है मैंने जो एक्स्ट्रा करिकुलर, कविता और एलोक्यूशन, पोएट्री, ये सारी चीज़ें जो की, उसमें मेरे परिवार का, खासकर मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ रहा, मेरी नानी का बहुत बड़ा हाथ रहा, जिन्होंने हमेशा कहा कि ठीक है, पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन अगर तुम अच्छा लिखती हो तो ये नहीं छूटना चाहिए।
1: सबसे पहले अगर आप, इफ़ यू लुक बैक, सबसे पहले आपने कब लिखना शुरू किया, डू यू रिमेंबर दैट टाइम?
2: यस, मैं मेरे ख्याल से थर्ड फोर्थ क्लास से लिखती थी।
1: वाओ,
2: छोटी छोटी कविताएं, स्निपेट्स। तो

0: मुझे याद आता है कि गांधी जयंती आने वाली थी और सुबह सुबह मैं भाग कर गई मम्मी के पास कि कल रात को मैंने ये गांधी जी पे कविता लिखी है। नब से धरती पर आया एक नन्हा सा तारा, देने आया था जो सबको जीवन का सहारा, 2 अक्टूबर की थी वो रात, धरती पर आया वो अकस्मात, ऐसे कुछ भी जोड़ के कुछ
1: और मैं पूछने ही वाली थी कि क्या आपको कुछ लाइंस याद है, एंड यू आर राइट देयर। मैम, आज हम वुमेन स्पेशल कर रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस में क्या वुमेन पर आज भी कुछ ऐसे प्रेशर्स हैं आइडेंटिटी चूज करने के, या तो आप करियर वुमेन बन जाइए या आप एक होम मेकर बन जाइए, दोनों जगह बैलेंस करना कई बार कई लेडीज के लिए बहुत टफ हो जाता है, एंड आई वॉन्ट मोर देन वन आइडेंटिटी, हर कोई ये चाह भी रहा होगा उनके लिए। अगर आप कुछ कहना चाहें कि आज हम शो में एग्जैक्टली किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं।
0: देखिए, आप जो बनना चाहते हैं वो आप बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले खुद को रेडी करना है। समाज, आपका परिवार, वो सेकेंडरी आता है, लेकिन पहले आपको अपने मन में ये धारणा बनानी है कि हाँ मैं ये हूँ, और अगर मैं कुछ और करना चाहती हूँ, आज मैं एक मदर हूँ, एक हाउस मेकर हूँ, मैंने अपने बच्चों के कारण में भी, बहुत छोटे बच्चे हैं, सेक्रीफाइस किया अपने करियर को, ठीक है, लेकिन मैं 3 साल के बाद वापस ये चीज़ रिज्यूम करूँगी, ये मेरा प्लान है, ये होगा, अगर ये नहीं सक्सेसफुल हुआ तो ये मेरा प्लान भी होगा। बिकॉज आज के टाइम पे मुझे लगता है हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं कि हम सिर्फ सरकारी नौकरियों पर या किसी तरह के यू नो फाइनेंशियल सेटअप या किसी एग्जिस्टिंग सेटअप में फिट होने के अलावा आज के दौर में इतने सारे ऑप्शंस हैं आपको अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे,
1: इवन द रिमोट वर्किंग ऑप्शन।
0: एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, यस, देयर इज सो मच, देयर इज सो मच स्कोप, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू, बस आप उसको बहाना मत बनने दीजिए। क्योंकि मुझे लगता है जहां पे लोग कहते हैं ना कि हम ये नहीं कर पाए, तो वो नहीं करने के लिए आप एक्सक्यूजेस एक्सटर्नल ढूंढते हैं, जबकि अगर आप सच में इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो रीजंस आपके अंदर, आपकी अपनी वजह से आप वो चीज़ नहीं कर पाए। अगर आपने वो स्टेप भी नहीं लिया तो आपको कैसे पता कि कामयाबी आपको नहीं मिलेगी।
1: फेल हुए तो चाहे रिग्रेट सही।
0: बिल्कुल, और फेलियर बस आपकी ज़िंदगी में ऐसा होना चाहिए कि आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और वो फेल हुआ, उस फेलियर को आपकी आइडेंटिटी मत बनने दीजिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे फेलियर्स देखे, बहुत बार खुद को री इन्वेंट किया, बहुत नई नई चीज़ें ट्राई करी, उनमें से मैं कहूँगी कि 70-80% बार में फेल हुई, लेकिन उनसे मैंने कोशिश की कि मैं सीखूं। और आज भी मैं ये नहीं कहती कि मैं एक बहुत सक्सेसफुल इंसान हूँ, हाँ, बट आई एम एन एटर्नल लर्नर, और हर चीज़ मुझे कुछ नया सिखाती है, एंड आई एम ऑलवेज क्यूरियस एंड ऑलवेज यू नो लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई न्यू थिंग्स, एंड ईच वन थिंग कॉम्प्लीमेंट्स अनदर, इट कीप्स ऑन बिल्डिंग इफ यू आर मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन विद अ पॉजिटिव माइंडसेट।
1: सो आई एम श्योर जो जो लोग हमें अभी सुन रहे हैं, अभी अभी हमें ट्यून किया है, हम आज बहुत सारी बातें करेंगे योजना जी के साथ, और हार बिल्कुल नहीं माननी है। अगर आज भी आप कहीं ना कहीं से शुरुआत करना चाहती हैं तो आप हमें ज़रूर सुनिए, स्टे ट्यून विद अस, क्योंकि हम यहीं पर हैं, आपको कहीं नहीं जाना है। वील बी राइट बैक।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो। मैं हूं ज्योतिका और ये है आशियाना, एक मुलाकात वुमन स्पेशल। और आज हमारी मेहमान है डॉक्टर योजना जैन। योजना जी, अभी तक हमने आपकी जर्नी को जाना, लेकिन एक चीज मुझे आपकी स्टोरी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। एक तरफ आप PhD इन फार्माकोलॉजी, साइंस और हेल्थ केयर से आपका गहरा रिश्ता है, और दूसरी तरफ आप एक राइटर हैं, पोएट हैं, लिरिसिस्ट हैं। यूजुअली हम साइंस को लॉजिक से और पोएट्री को इमोशन से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा मुझे एक मिक्सचर आपके अंदर दिखता है। ये आप इस पर कुछ कहना चाहेंगी? हाउ कम योर साइंस इज सो ब्यूटिफुली मर्ज्ड विद पोएट्री एंड लिरिसिक्स?
1: देखिए, मुझे लगता है साइंटिस्ट और आर्टिस्ट को ना हमें अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइंटिस्ट जो है वो फैक्ट्स के पीछे का वाई समझना सिखाता है, और जो आर्टिस्ट होता है वो इंसान के पीछे का, इमोशंस के पीछे का वाई समझना सिखाता है। और साइंस और क्रिएटिविटी मुझे नहीं लगता कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक जो अच्छा साइंटिस्ट होगा उसको इमेजिनेशन भी चाहिए,
0: राइट?
1: है ना, तो उसको क्वेश्चंस बनाने के लिए, उसको हाइपोथेसिस बनाने के लिए, पैटर्न्स देखने के लिए, प्रॉब्लम को नए एंगल से देखने के लिए। आप सोचिए एक साइंटिस्ट को क्या चाहिए अगर वही वो सेम धड़े से चला जा रहा है जैसे पुराने लोग।
0: कोई न्यू चैलेंज नहीं है।
1: टू डू सम काइंड ऑफ इन्वेंशन, सम डिस्कवरी, यू नीड टू लुक एट द थिंग्स मेथोडिकली। ऑफ कोर्स वो साइंस का पाथ है मेथड, बट द सेम टाइम यू नीड टू लुक एट थिंग्स क्रिएटिवली फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव। और वही आर्ट्स में भी होता है, वहां आप पैटर्न से खेलते हैं, नंबर से खेलते हैं, यहाँ आप कलर्स से खेलते हैं, शब्दों से खेलते हैं। तो दिमाग का एक भाग जब जागृत होता है तो दूसरा भाग भी जागृत होता है। मुझे लगता है हर साइंटिस्ट के अंदर एक आर्टिस्ट है, और हर आर्टिस्ट के अंदर एक साइंटिस्ट है। बस मैं खुशनसीब हूं, ईश्वर की कृपा है कि मुझे उन दोनों को एक्सप्रेस करने का और दुनिया के सामने लाने का मौका मिला। और इसके लिए मेरा परिवार, मेरा इकोसिस्टम, वो बहुत बड़ा उनका रोल था कि उन्होंने मुझे वो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया कि मैं वो कर पा रही हूँ। नहीं तो ज्यादातर लोग शायद वो कर नहीं पाते। वो साइंटिस्ट के लेवल में है तो वो जिंदगी भर वही करते रह जाते हैं, पर उनके अंदर आपको एक गायक मिल सकता है बहुत अच्छा, एक पेंटर मिल सकता है, पर उन्हें टाइम नहीं मिलता है। और प्रायोरिटीज ऐसी होती हैं कि वो उस वाले भाग को बाहर नहीं ला पाते,
0: एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिल पाता।
1: तो इसको कभी ये मत सोचिए, आप साइंटिस्ट हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर मुझे पक्का यकीन है कि एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है, एंड वाइस वर्सा।
0: सो आपके अंदर भी अगर कोई ऐसी कला छुपी है तो आज एक मौका है, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करिए, और क्या पता आपको आज कुछ नया महसूस हो।
1: एब्सोल्युटली
0: मैम, इसी से जुड़ा हुआ एक अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इंडिया से जर्मनी तक का ये जो आपका सफर रहा है, एक वुमन के तौर पर एक नई कंट्री में जाना, एक नई आइडेंटिटी बनाना, अपनी जगह बनाना, आसान तो नहीं रहा होगा, एंड उस जर्नी के बारे में कुछ बताइए आप।
1: बिल्कुल सही कहा आपने ज्योतिका, किसी भी कंफर्ट जोन से ना, मैं बार बार ये कह रही हूँ, क्योंकि अपना देश से बड़ा कंफर्ट जोन क्या होगा? आपकी भाषा, आपका खाना, आपके त्योहार, आपके लोग, उसको छोड़कर आप जब बाहर जाते हैं, चाहे किसी भी देश में जाएं, तो आप एक अपना बहुत बड़ा कंफर्ट जोन छोड़कर जा रहे हैं। और खासकर अगर आप ऐसी देश में जाते हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल नए सिरे से आपका वैल्यू सिस्टम, वहाँ का प्रोफेशनल इकोसिस्टम, लैंग्वेज, ये सब बिल्कुल अलग है, तो समझिए कि इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग। लेकिन एट द सेम टाइम द काइंड ऑफ पर्सन यू बिकम वंस यू एक्सप्लोर दीज न्यू टेरिटरीज ना, That is an exposure I would advise for each and everyone. शंकराचार्य ने भी पूरा यात्रा की थी, वो अपनी जगह पे बैठे होते, अपने घर में रहे होते, तो वो क्या वो सब ज्ञान अर्जित कर पाते?
0: बाहर जाना जरूरी है।
1: और मैं ये नहीं कह रही कि आप माइग्रेट हो जाइए कहीं, बस ही जाइए, हर किसी की अपनी सिचुएशंस होते हैं, डिसीजन पॉइंट्स होते हैं लाइफ के, लेकिन नए पर्सपेक्टिव्स गेन करना और दूसरी दुनिया को देखना भी बहुत जरूरी है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, चैलेंजेस एज अ वुमन डेफिनेटली आते हैं।

0: हैं, बहुत सारे आए। डर भी था और कई ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पे लगा कि यार सब छोड़ो और आ जाओ वापस। स्पेशली अभी हमारे इंडिया में मेडिकल सिस्टम हमारा जो है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है, और यूरोप में, यूएस में आप देखेंगे, वंस यू गेट इन टू द सिस्टम, यू अंडरस्टैंड द सिस्टम, इट इज़ फाइन, इट इज़ इट बिकम्स ईजियर। बट शुरुआत में काफ़ी दिक्कत होती है जब तक आप वहाँ पे सेटल नहीं होते, चीज़ों को समझते नहीं हैं। सो दोज वर द मोमेंट्स। देन देर आर मेनी नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स, स्पेशली ड्यूरिंग द फेस्टिवल टाइम्स,
1: आई एम श्योर
0: यू फील लाइक ओके।
1: मेरा अगला सवाल यही उठने वाला था कि आपको घर की, इंडिया की कितनी और क्या याद आती है?
0: अरे बहुत याद आती है, बहुत याद आती है, और इसीलिए तो मैं कहूँगी कि हम लोग शायद आप लोगों से ज़्यादा देश को मिस करते हैं, और हमारी देशभक्ति के जो लेवल्स हैं ना वो कई गुना बढ़ जाते हैं जब आप देश से बाहर रहने लगते हैं। ये मेरी कहानी नहीं है, ये मेरी भावना नहीं है, ये सारे 90% NRIs की मैं कहूँगी यही भावना है।
1: आई एम श्योर, और हम आगे बहुत सारी बातें करेंगे। थोड़ा सा, एक छोटा सा एड ब्रेक लेने का टाइम है, एंड वी विल बी वेरी वेरी वेरी क्विकली राइट बैक।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
5: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: वेलकम बैक। जैसे मैंने कहा था, बहुत ही छोटा सा एड ब्रेक लेंगे और हमारी बातचीत यहीं जारी रहेगी योजना जी के साथ। मैम, एक लाइन मैंने आपकी पढ़ी जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी कि भारत सिर्फ एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं, एक इमोशन है। और शायद इसी इमोशन की एक खूबसूरत एक्सप्रेशन रहा आपका एक रीसेंट इनिशिएटिव इंडिया बियॉन्ड बॉर्डर्स। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हुए इस इनिशिएटिव को आपने कॉन्सेप्चुलाइज भी करा और लीड भी किया। इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिखे कंपोज किया गाना पेट्रियोटिक सॉन्ग मन जन गण मन गाएगा म्यूजिक वीडियो भी लॉन्च हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: जी, दिस वर्ड्स दिस इंडिया बियॉन्ड बॉर्डर्स, ये हमारी संस्था लिटरेरी इंटेलेक्ट्स एंड पोएट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन यूरोप के अंतर्गत हमने कार्यक्रम करवाया था। और इस संस्था का जो मकसद है वो यही है कि इंडियन डायस्पोरा को इंडिया से जोड़ना, और दूसरा ओरिजिनल लिटरेरी एंड म्यूजिक चीज़ों को यू नो कंट्रीब्यूशंस को प्लेटफॉर्म देना। तो इसके अंतर्गत हम कई सारे कार्यक्रम करवाते हैं, और ये कार्यक्रम जो था फ्लैगशिप इवेंट था हमारा, जिसमें इस पेट्रियोटिक ट्रिब्यूट, मैं इसे कहूँगी NRI एंथम, जिसका लॉन्च हुआ और बहुत सक्सेसफुल, बहुत प्यारा लॉन्च हुआ, बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार मिला सबसे। तो ये गाना मैं समर्पित करती हूँ अब पूरे देश को।
0: यस, कुछ गुनगुनाना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, और ये ज़रूर कहूँगी कि ये सिर्फ मेरा गाना नहीं है, ये 3.5 करोड़ हिंदुस्तानी जो दुनिया भर में अलग अलग देशों में फैले हुए हैं और हिंदुस्तान की अलग पूरी दुनिया में जगाए हुए हैं, उन सबका गीत है। तो इसका जो कोर लाइन है, हुक लाइन है, वो है तन दूर देश की माटी से पर मन जनगण मन गाएगा। थोड़ा सा गुनगुनाती हूँ
0: जी।
1: माना पंछी

0: जब आसमान रंग जाएगा, तन दूर देश की माटी से, पर मन जन गण मन गाएगा।
1: बहुत
0: तन दूर

0: इस मौके पे मैं इस प्लेटफॉर्म से कुछ लोगों का उल्लेख ज़रूर करना चाहूँगी जिनके बिना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता. नेहा अग्रवाल जो हमारी कल्चरल पार्टनर रही, और आशुतोष भंडारी जो इस प्रोजेक्ट के असिस्टेंट डायरेक्टर थे मेरे साथ, शैशव भट्ट, आशुतोष भंडारी सिनेमेटोग्राफर्स, अश्वति सुकेश जो हमारी कोरियोग्राफर थी, और करीब 50 से ज़्यादा लोगों ने इस गाने में पार्टिसिपेट किया. दुनिया भर से इसके लिए क्लिप्स आई. प्रफुल्ल जैन जी का बहुत बड़ा सपोर्ट था. बच्चे बहुत सारे थे, और हम लोगों ने सर्दी में जब बर्फ़ पड़ी थी -3 डिग्री में हमने शूट किया है.
1: वाओ.
0: और नंगे पैर लोगों ने परफॉर्मेंस दी क्योंकि वो टेम्पल डांस परफॉर्म करे. सो दिस वॉज लाइक, दिस इज़ नॉट माई सॉन्ग एनी मोर. आई मीन सो मेनी पीपल आर सो अटैच्ड एंड दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू द लॉन्च ऑफ दिस सॉन्ग. सो प्लीज़ सर्च ऑन यूट्यूब और ये गाना ज़रूर सुनिए, अपना प्यार दीजिए.
1: थैंक यू सो मच. आपने बहुत ही प्यारी लाइन्स हमारे साथ शेयर करी. योजना जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगी, हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम है. अचीवमेंट्स की लिस्ट हम देखते ही हैं हमेशा. अब जैसे सोशल मीडिया होता है, जो दिखता है वो होता नहीं
0: जी.
1: लेकिन उनके पीछे कई सैक्रिफाइसेस होते हैं, कई चैलेंजेस होते हैं. आपकी जर्नी में सक्सेस की सबसे बड़ी अनसीन कॉस्ट क्या रही, एंड व्हाट हैज केप्ट यू गोइंग?
0: देखिए, टाइम आपके पास लिमिटेड होता है और चीज़ें आपको करनी होती हैं. सक्सेस की अनसीन कॉस्ट सबसे बड़ी सबके लिए ही आई थिंक होती है टाइम. टाइम एंड नॉट बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, कि आपको कहीं ना कहीं अपने पर्सनल टाइम में से, अपने सुकून में से, अपने स्लीप टाइम में से, अपने परिवार के टाइम में से आपको वो टाइम निकालना पड़ता है. लेकिन सक्सेस का जो फल होता है वो बहुत मीठा भी होता है. और उसका जो ऊर्जा होती है वो आपको लंबे समय तक ईंधन की तरह आपको चलायमान रखती है. सो दैट इज़ द थिंग. लाइक मुझे लगता है कि मैं अगेन बहुत खुशनसीब हूँ कि मैंने जो भी किया उसका मुझे, उसके लिए मुझे बहुत सारा प्यार भी मिला, बहुत सारा सपोर्ट भी मिला और मिलता जा रहा है लगातार. एंड दैट इज़ समथिंग दैट कीप्स मी गोइंग.
1: वंडरफुल मैम, आज की इस मुलाकात में हमने साइंस की बात करी है, लिटरेचर की बात करी है, टेक्नोलॉजी, इंडिया, जर्मनी, कल्चर, और ऑफ कोर्स वुमेन स्पेशल है तो हमने महिलाओं की भी बात करी है. लेकिन शायद इन सब के बीच जो एक मुझे कॉमन थ्रेड समझ आया है, नजर आया, वो ये है कि अपने आप को किसी एक डेफिनेशन में बांध कर हमें नहीं रखना चाहिए.
0: Absolutely.
1: और मुझे लगता है कि आज हमारी बहुत सी फीमेल लिसनर्स से उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें हमसे उठाई होंगी, क्योंकि जिंदगी में एक वक्त पर हम जो हैं, ज़रूरी नहीं हम हमेशा वही रहें. अपने आप को बदलना, लाइक यू सेड कि आपने अपने आप को इवॉल्व किया, आपने अपने ऊपर काम करा है. ऑफकोर्स हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं. जाने से पहले एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी मैम, कि आकाशवाणी एफएम रेनबो पर सुन रही हर उस महिला के लिए जिसके दिल में कोई ड्रीम है लेकिन शायद अभी तक उन्होंने उस तरफ कदम नहीं बढ़ाए हैं, डॉक्टर योजना क्या कहना चाहेंगी, उनसे क्या मैसेज देना चाहेंगी?
0: मेरा मैसेज आप सबके लिए ये है कि कॉन्फिडेंस आने का, परफेक्ट मोमेंट का वेट मत कीजिए. पहला स्टेप लीजिए. कॉन्फिडेंस नाम की जो आंटी हैं, कॉन्फिडेंस नाम की जो चिड़िया हैं, वो आपको रास्ते में मिल जाएंगी. सेकेंडली, हम महिलाओं के लिए बहुत होता है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हमारे ऊपर. तो देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होंगी. किसी इंसान की ख़त्म नहीं होती, जब तक उसकी सांसें चलती हैं कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. तो इसलिए ये जो बहाना है, मैं इसे बहाना ही कहूँगी ऑनेस्टली, कि अब जब कि बच्चे छोटे हैं या घर का काम है या ये चीज़ है वो चीज़, जब ये हो जाएगा तो हम ये करेंगे, जब ये हो जाएगा तो ये करेंगे, नहीं, ये मत कीजिए. स्टार्ट स्मॉल. एक कोर्स, एक एप्लीकेशन, एक पेज, एक फ़ोन कॉल, एक स्टेप, एक आइडिया. सब चीज़ें एक साथ नहीं करनी है. बस शुरू कीजिए, चल पड़िए, धीरे धीरे कीजिए. और आपके अंदर नारी शक्ति, हमारे अंदर जो मल्टीटास्किंग का एलिमेंट है, शक्ति है ना, वो ये मेल्स तो समझ ही नहीं सकते, वो कर ही नहीं सकते. और आप कर सकती हैं, आप कर सकती हैं. तो इसलिए अपने पे विश्वास कीजिए. स्टार्ट स्मॉल बट डू स्टार्ट, डू स्टार्ट एंड फुलफिल योर ड्रीम्स.
1: क्योंकि हमारी टू डू लिस्ट तो कभी खत्म नहीं होती.
0: यस.
1: हम लोग सब कुछ करना चाहते हैं. सो जस्ट लाइक मैम सेड, आपको बस एक कदम बढ़ाना है और धीरे धीरे हो सकता है वक्त भी आपका साथ दे. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच आज आशियाना में आने के लिए और अपनी जर्नी इतनी खूबसूरती से हम सबके साथ यहाँ शेयर करने के लिए. आई एम श्योर नॉट ओनली द लिसनर्स बट इवन आई एम वेरी मच मोटिवेटेड टू ट्राई समथिंग वेरी न्यू.
0: थैंक यू सो मच वंस अगेन. एक चार लाइंस बोलना चाहूंगी आपकी इजाजत.
1: प्लीज प्लीज.
0: कि सूरज तो मेरा मैं तेरी जमी, सूरज तो मेरा मैं तेरी जमी, रहे दुनिया में चाहे कहीं, तेरे नाम से जाने जाएंगे. और हो रंग पासपोर्ट का कुछ भी मगर, हो रंग पासपोर्ट का कुछ भी मगर, सदा हिंदुस्तान.

0: हिंदुस्तानी कहलाएंगे, सदा हिंदुस्तानी कहलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सारे NRIs की तरफ से सारे भारतवासियों को, हम सबको इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: Such beautiful lines, ma'am. मेरे को goosebumps आ गए हैं. I'm feeling so emotional right now. और दोस्तों, कहानियाँ अलग हो सकती हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन अपने सपनों की तरफ एक छोटा सा कदम बढ़ाने का हक हम सबका है. इसी थॉट के साथ आज का आशियाना एक मुलाकात वुमेन स्पेशल से मैं ज्योतिका लेती हूँ आपसे इजाज़त. मुलाकात होगी आपसे 4 बजे अल्फा जेन में. तब तक खुश रहिए, अपने सपनों से जुड़े रहिए और सबसे ज़रूरी, खुद से जुड़े रहिए. नमस्कार. And now, आप सुनेंगे हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम.

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका आदित्य और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: धरती केवल हमारी नहीं आने वाली पीढ़ियों की भी अमानत है। आइए इसे स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित रखने का संकल्प लें।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में कहानी न्याय की कुर्सी एवं लालच नाटक के रूप में सुनी एवं पसंद आई। कहानी शिक्षाप्रद लगी और सुखद संदेश देने में भी कामयाब हुई। ये दोनों कहानी सुनवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
3: अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
2: कोकाबिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ इनके बच्चे।
3: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं,
3: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में ये भी जानिए श्रृंखला में पारंपरिक मेला उत्सव पर जो जानकारी सुनाई जा रही है बेहद पसंद आ रही है। जॉनबिल मेला और हॉर्नबिल मेला पर जानकारी बहुत ही अच्छी लगी। आगे आपने लिखा है,
2: आप जब मेला उत्सव पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहे होते हैं तो हम इतने मग्न हो जाते हैं, सचमुच हम मेले में ही घूम रहे हों और मेले का आनंद ले रहे हों। मेला उत्सव पर कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: आप सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंखला ये भी जानिए श्रृंखला में आप सबका एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष महीने में स्वागत है। श्रोताओं, अगले सप्ताह हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इस विशेष सप्ताह में हम चर्चा करेंगे भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल कुछ ऐसे लोगों की जिनकी चर्चा कम होती है।
2: आंदोलन के बड़े बड़े और मुख्य नेताओं को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम का प्रयास रहेगा उन लोगों को सामने लाना जो बहुत ज्यादा चर्चित नहीं रहे।
3: तो करते हैं शुरुआत और आज करते हैं बात एक महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के बारे में। तो विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: जी अजीत जी, बिरसा मुंडा भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी जननायक और समाज सुधारक थे। उन्हें आदिवासी समाज में श्रद्धापूर्वक धरती आबा यानी धरती का पिता कहा जाता है। आबा मुंडारी और संथाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पिता।
3: जी श्रोताओं, उन्होंने अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध आदिवासी समाज को संगठित किया तथा सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सुधारों का नेतृत्व किया। आइए अब लेते हैं जानकारी उनके प्रारंभिक जीवन की। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू नामक गांव में हुआ था जो तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थित था और अब झारखंड राज्य में है।
2: बचपन में उनका परिवार आर्थिक कठिनाइयों से जूझता रहा। उन्होंने कुछ समय तक मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन बाद में अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लिया। आदिवासियों की दुर्दशा देखकर उनका मन हमेशा विचलित रहता था।
3: वे चाहते थे कि उनकी दशा में सुधार हो। वे

0: शिक्षित हों और उनका शोषण न हो।
1: जी।
0: उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने आदिवासी समाज से कहा कि वे अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों को छोड़ें, स्वच्छता और शिक्षा को अपनाएं,
1: नशाखोरी से दूर रहें,
0: अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें
1: और एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करें।
0: जी, तो श्रोताओं, उनकी शिक्षाओं ने आदिवासी समाज में आत्मविश्वास और जागरूकता की भावना पैदा की।
1: ये वो समय था जब अंग्रेजी शासन जमींदारों और महाजनों द्वारा आदिवासियों का शोषण कर रहा था। उनकी भूमि छीनी जा रही थी और उन पर भारी कर लगाए जा रहे थे।
0: बिरसा मुंडा ने लोगों को संगठित कर एक सामूहिक विद्रोह आयोजित किया जिसे उलगुलान कहा जाता है। उलगुलान शब्द का अर्थ है महाविद्रोह। यह आंदोलन केवल अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था बल्कि अन्याय, शोषण और भूमि अधिकारों के लिए भी था। उनका नारा था
1: अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा शासन। यही नारा प्रसिद्ध जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी सिदो और कानू द्वारा भी दिया गया था।
0: श्रोताओं, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आंदोलन बहुत प्रभावशाली बन गया और इसके कारण अंग्रेजी हुकूमत परेशान हो गई। अंत में अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहते हुए 9 जून सन 1900 को रांची केंद्रीय कारागार में मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
1: उनके आंदोलन का प्रभाव इतना व्यापक था कि बाद में अंग्रेजों को आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनों में परिवर्तन करना पड़ा।
0: श्रोताओं, उनकी जन्मतिथि 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनके नाम पर अनेक विश्वविद्यालय, संस्थान, संग्रहालय और हवाई अड्डे के साथ साथ कई सरकारी योजनाएं भी संचालित होती हैं।
1: बिरसा मुंडा का जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध साहसपूर्वक खड़े होना, अपनी संस्कृति का सम्मान करना और समाज की भलाई के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। वे भारतीय इतिहास के ऐसे अमर नायक हैं जिनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा।
0: जी हाँ श्रोताओ, धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन स्वाभिमान, संगठन और राष्ट्र प्रेम का अद्वितीय उदाहरण है। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा आज का प्रश्न है,
1: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था। 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपना संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर लीजिए।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर
0: और सुनते हैं कार्यक्रम जलियांवाला बाग।
1: इस कार्यक्रम में जलियांवाला बाग के बारे में जानकारी दी गई है कि किस प्रकार यहां आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले असंख्य देश प्रेमियों को स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्योछावर करना पड़ा और इस भीषण जनसंहार की घटना का आंदोलन पर क्या असर पड़ा।

0: ये बात उस वक्त की है जब पहले महायुद्ध में हिंदुस्तानियों ने विदेशी सरकार की तन मन धन से सहायता की और इसके बदले में भारतीयों को मिला रॉलेट बिल।
1: रॉलेट बिल ने पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने, नजरबंद करने और तलाशी लेने के पूरे अधिकार दे दिए। अदालतों में पैरवी करने की मनाही कर दी गई।
0: इस कानून का सीधा सा मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत। 6 फरवरी 1919 को रॉलेट बिल नाम के दो बिलों को बड़ी काउंसिल में पास करने के लिए पेश किया गया। 24 फरवरी के दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर बिलों को पास कर दिया गया तो सारे देश में सत्याग्रह होगा और 30 मार्च 1919 को रॉलेट बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई गई। लेकिन इस हड़ताल की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई, पर दिल्ली खबर न पहुंचने की वजह से 30 मार्च को ही हड़ताल हुई।
1: लेकिन इसी बीच पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया, जो रॉलेट एक्ट कहलाया।
2: मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।
3: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रॉलेट एक्ट वापस लिया जाए।
2: रॉलेट एक्ट वापस लो, रॉलेट एक्ट वापस लो, रॉलेट एक्ट वापस लो, रॉलेट एक्ट वापस लो।

पूरे देश में हड़ताल हुई। पंजाब के सभी नगरों में यह हड़ताल शांतिपूर्वक रही। 9 अप्रैल के दिन रामनवमी थी। रामनवमी के अवसर पर अमृतसर में हिंदू मुसलमानों ने जुलूस निकाला।

0: और नो।
1: ये हिंदू मुसलमानों की कौमें एक होकर तो हमारा सरदर्द बन जाएंगी। क्यों नहीं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए? इससे आवाम का जोश भी ठंडा पड़ जाएगा। यस, हे यू, कम अप।
2: इसी बीच गांधी जी भी पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर वापस बंबई भेज दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी से पंजाब और ज्यादा उत्तेजित हो उठा और अमृतसर को सेना के हाथों सौंप दिया गया। सेना का सर्वे सर्वा था जनरल डायर। 11 अप्रैल को अमृतसर में जनता ने हड़ताल की और जुलूस निकाला। 12 अप्रैल को अमृतसर एक सैनिक कैंप बन गया। जनरल डायर ने हवाई जहाज से शहर का निरीक्षण किया और गली गली फौजी मार्च कराया गया।

0: महात्मा गांधी की
1: जय।
0: महात्मा गांधी की
1: जय।
2: भारत माता की
1: जय।
2: भारत माता की।
3: जनरल डायर के सामने नारे लगाने की ऐसी हिम्मत, चाहता है इन्हें कोरियर से बूंद डालूं। नो नो नो, मुझे इससे बेहतर मौके का इंतजार करना होगा।
4: इंतजार, जनरल डायर ने और ज्यादा इंतजार नहीं किया। 12 अप्रैल को जुलूस के नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें हथकड़ियां पहनाई गईं और रामबाग ले जाकर उन्हें पेड़ों से बांध दिया गया। निगरानी के लिए डायर ने गोरखों को तैनात कर दिया। दमन चक्र सख्त होता जा रहा था। तेरह अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में आसपास के गांव से लोग बैसाखी का त्योहार मनाने पहुंचे थे। बैसाखी के मेले में भाग लेने आए इन लोगों ने अपना डेरा जलियांवाला बाग में जमाया हुआ था। इसी बीच जनरल डायर ने यह ऐलान कराया था कि शहर में कोई मीटिंग न की जाए, लेकिन यह ऐलान सब लोगों तक पहुंचा नहीं। जलियांवाला बाग में नेताओं की रिहाई के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैसाखी मनाने आए लोगों ने जब मीटिंग की भीड़ देखी तो कौतूहलवश वे भी इसमें शामिल होने पहुंच गए। शाम 4:30 बजे

0: वापस लिया जाए।
1: रॉयल अटैक
2: वापस लो,
1: रॉयल अटैक
2: वापस लो,
1: रॉयल अटैक
2: वापस लो।
0: ये सभा 10 अप्रैल के दिन हुए गोलीकांड की निंदा करती है और शहीदों के परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करती है।
3: मारो,
0: सभा सरकार से अनुरोध करती है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को फौरन रिहा किया जाए।
4: सत्यपाल को
2: रिहा करो,
4: डॉक्टर किचलू को
2: रिहा करो,
4: सत्यपाल को
2: रिहा करो।
5: सभा चल रही थी और उधर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे पर आ डटा। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवारें थीं और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाया जा सकता था। इसी दरवाजे पर डायर के सैनिकों ने अपनी खूनी बंदूकें तान ली।

0: लोग एकमात्र दरवाजे की ओर भागे और गोलियां उन्हें बीनती रही। कुछ लोग दीवारों पर चढ़े जिससे कि दूसरी ओर कूदा जा सके, लेकिन कोशिश बेकार रही। गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कुछ कुएं में भी कूदे, लेकिन मौत उनका वहां भी इंतजार कर रही थी। पूरे 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच होता रहा।
1: गोली चलाना बंद क्यों कर दिया? आई से फायर, फायर अगेन।
2: सर, सर कारतूस खत्म हो गए हैं।
1: और शट अप। देख, ये सबक काफी है। अबाउट टर्न, फायर।

मौत का दरिंदा जब दरवाजे से हटा, तब रतन देवी उस मौत के मैदान में अपनों को खोजती हुई पहुंची।

जब कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो उसे सलाम करे। अगर घोड़े पर सवार हो तो हिंदुस्तानी अंग्रेज की शान में घोड़े से उतर जाए। अगर हिंदुस्तानी छाता लगाए हो तो नीचे झुका ले।

0: पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब की खबरों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई।
1: और यही वजह थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर कांग्रेस के नेताओं को कई हफ्ते बाद मिली।
0: इस खबर के मिलते ही भारतीयों के मन दुख, ग्लानी और आक्रोश से भर गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब सम्मान पदक शर्म पदक लग रहे हैं। डायर की मनमानी करतूतों के कारण पूरे पंजाब में विद्रोह भड़क उठा और इसी के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते दमन चक्र की वजह से कसूर, गुजरावाला और लाहौर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। ये सब देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 6 महीने बाद अक्टूबर 1919 में हंटर जांच समिति नियुक्त की, जिसको जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की जांच करनी थी।
2: जनरल डार।
3: यस सर।
2: आप जब जलियांवाला बाग में पहुंचे तो आपने क्या किया?
3: मैंने गोली चलाने का हुक्म दिया।
2: क्या ये हुक्म आपने फौरन दिया?
3: यस, मैंने पहुंचते ही गोली चलाने का हुक्म दिया।
2: क्या वार्निंग नहीं दी?
3: नो, क्योंकि हमारे सुबह के ऐलान के बावजूद भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उन्हें कोई भी मीटिंग करने से मना कर दिया गया था। वैसे उन्हें मेरे आने की चेतावनी तो मिल ही गई होगी।
2: फिर गोली चलाने का क्या मकसद था?
3: मेरा मकसद गोली चलाकर फीट को टिटर बिटर करना नहीं था। मैं चाहता था कि इस तरह की फायरिंग के बाद पूरे पंजाब के लोगों में कुछ ऐसा डर बैठ जाए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो।
0: जनता को डराने धमकाने के इस शर्मनाक तरीके को हंटर जांच समिति ने ताक पर रख दिया। हंटर जांच समिति की कार्यवाही केवल इस हत्याकांड पर लीपापोती करती रही और डायर को बरी कर दिया गया।
1: लेकिन कांग्रेस ने पंजाब की घटनाओं की सही जानकारी लेने के लिए अपनी एक समिति नियुक्त की, जिसके प्रमुख सदस्य थे सर्वश्री मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, देशबंधु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी और जयकर। इस समिति ने 3 महीने तक पंजाब की घटनाओं का अध्ययन किया। समिति ने पंजाब के प्रशासकों की घोर निंदा की, प्रमुख रूप से पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर और सेना के जनरल डायर की भर्त्सना की गई।
4: कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन सन 1919 में पहले से ही अमृतसर में होना निश्चित हुआ था और वहीं हुआ। इस अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने जलियांवाला बाग के अमानवीय एवं निर्मम हत्याकांड के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई।
5: हम मांग करते हैं कि जनरल डायर को अपने पद से हटा दिया जाए।
6: पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
7: अब भारतीयों का विश्वास वायसराय कोर्ट से उठ गया है, उन्हें आप ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस बुला लेना चाहिए।
5: आज के इस अधिवेशन में हम संकल्प लेते हैं कि जलियांवाला बाग के शहीदों की याद हम अमर करेंगे और जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाएंगे।
4: जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 शांतिप्रिय, निहत्थे एवं असहाय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को

0: स्तब्ध कर दिया और इस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गया।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जलियांवाला बाग।

0: दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: खत्म हुआ झगड़ा।
2: पहाड़ा पहाड़ा पहाड़ा, मैं नहीं सिखाता पहाड़ा।
3: माँ देखो, भैया मुझे पहाड़ा नहीं सिखा रहा।
2: मैं खेलने नहीं जाऊं, जैसे ही मैं खेलने जाऊंगा वैसे ही पहाड़े की रट लगा देगी। मैं तो जा रहा हूँ।
3: मैं फेल हो जाऊंगी, सब हंसेंगे।
2: ये तेरा रोज रोज का नाटक। अच्छा बाबा, मैं खेलने नहीं जाता। छे एकम छे,
3: छे एकम छे,
2: छे दुनी बारह,
3: छे दुनी बारह।
4: राहुल, खेले नहीं आ रहे?
2: अरे यार, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता। छेती अठारह,
3: छेती अठारह,
2: छे चौक चौक।
1: क्या ये आदर्श स्थिति है? क्या आप इसे यूं ही चलने देंगे? क्या आप बच्चों को दूसरे के हितों से अपने हितों को जोड़ना नहीं सिखाएंगे?
5: अरे मीना, तू रो क्यों रही है? और राहुल, तू खेलने नहीं गया?
2: माँ, मीना कहती है मुझे पहाड़ा सिखा।
5: तो क्या इसलिए तू खेलेगा नहीं?
2: मैं क्या करूं, क्या मीना को पहाड़ा ना सिखाऊं?
5: पहाड़ा तो जरूर सिखाओ, पर तुम्हारा खेलना भी तो जरूरी है।
2: ये कैसे होगा, मैं खेलूं भी पहाड़ा भी सिखाऊं?
5: ये तो तुम दोनों जानो, लेकिन रोना धोना झगड़ा नहीं।
1: वाह, क्या बात है, लेकिन क्या बच्चे हल निकाल पाएंगे?
3: जब भी मैं पहाड़ा सिखाने को कहती हूँ तुम खेलने चले जाते हो।
2: तू पहाड़े की बात ही तब करती है। अच्छा अब रो मत। अच्छा बता, तू किसी और समय पहाड़ा याद नहीं कर सकती? तेरा मन शाम को खेलने को नहीं करता?
3: करता है, पर पहाड़ा
2: तो ये नहीं हो सकता कि हम दोनों ही शाम को खेल लें।
3: फिर पहाड़ा कब?
2: देख, मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ, तू जल्दी सो जाती है, तो तू जल्दी उठा भी कर, सुबह एक दो घंटे मुझसे पढ़ लिया कर।
3: तब तू कहेगा कि मैं सो रहा हूँ।
2: नहीं कहूँगा ना, मैं भी सुबह जल्दी उठा करूँगा और तुझे पहाड़ा सिखाऊंगा।
3: पक्का?
2: पक्का।
3: फिर गुस्सा तो नहीं करेगा?
2: क्यों करूँगा, तू तो मेरी छोटी बहन है।
3: हाँ सच? तो फिर मैं खेलने जाऊँ?
2: चप्पल तो पहन लो, मैं भी आ रहा हूँ।
1: कमाल है भाई, ठीक ही है, दूसरे की जरूरत को समझे बिना अपनी जरूरतें पूरी करना कहां तक ठीक है? क्या उमा देवी की तरह आप अपने बच्चों को अवसर देते हैं कि वे विवाद का ऐसा हल स्वयं निकालें जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो?
6: तो श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता, जगबंधु
7: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार, नमस्कार।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अनुराधा। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है महिलाओं से जुड़ा एक खास रोग एंडोमेट्रियोसिस। क्या है ये बीमारी, शरीर में क्यों पनपती है, कारण, निवारण, यानी पर्याप्त जानकारी आपको मिलेगी। जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ममता मिश्रा जी, और आपसे हम बात करेंगे। आपको बता दें कि आप फोर्टिस हॉस्पिटल नई दिल्ली से संबद्ध हैं। यदि आपका भी है कोई सवाल तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज के विषय से जुड़ा या स्त्री रोग से जुड़ा आपका भी है कोई सवाल तो हम तक पहुंचाइए, तुरंत फोन उठाइए, कॉल करिए। नंबर है 01123421080 01123421082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। तो आप नंबर डायल करिए। इधर हम स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो मेरा पहला सवाल आज का यही है कि क्या है एंडोमेट्रियोसिस।
2: एक शब्द में समझाना तो बहुत मुश्किल है। ये एक लंबी बीमारी है जो मुख्यतः औरतों को प्रभावित करती है। आज के समय में चाहे वो यंग गर्ल्स हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव एज की औरतें हों, चाहे वो मेनोपॉजल वुमेन हो, हर किसी में ये बीमारी पाई जाती है। ये समझना कि हर महीने जब हमें पीरियड्स आते हैं, हम बच्चेदानी की लाइनिंग को शेड ऑफ करते हैं
1: जी।
2: और वो बच्चेदानी के रास्ते से वो बाहर आ जाता है। एंडोमेट्रियोसिस में वही सेल्स जो होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर यूट्रस के पीछे, ओवरीज के ऊपर या ट्यूब्स के ऊपर पाए जाते हैं
1: जी।
2: जब साइक्लिकल ब्लीडिंग होती है, चूंकि वो अंदर ही ब्लीड करते हैं वो सेल, तो उससे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। कई बारी ओवरी में उनसे सिस्ट बन जाती हैं और बच्चेदानी, ब्लैडर जो उसके आगे है या बॉवल जो उसके पीछे है, ये सारी चीज़ें आपस में चिपक जाती हैं
1: जी।
2: यूजुअली सिम्टम्स जो इसमें आते हैं उसमें आपको मेन सिम्टम होते हैं पेन के। तो हमने सुना है कि जो लड़कियां यंग होती हैं 16-17 साल की, उनको सीवियर पेन होता है ड्यूरिंग पीरियड। एंडोमेट्रियोसिस का एक सिम्टम ये भी हो सकता है
1: जी। डॉक्टर साहब, आपसे बहुत सारी चर्चा करेंगे क्योंकि अभी तो कार्यक्रम की शुरुआत है। फिलहाल यहाँ एक ले लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज एंडोमेट्रियोसिस पर, और हमारी विशेषज्ञ ममता मिश्रा जी हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर साहिबा की पसंद की ये प्यारी सी गज़ल हमने सुनी, अब हम चाहेंगे कि आपके जो भी सवाल हैं आप हम तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए स्टूडियो के नंबर्स आपको बता दें, नंबर है 01123421080 और 01123421082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। डॉक्टर साहिबा, अब अगला सवाल मेरा जो है वो ये कि थोड़ा सा इंडिकेशन आपने दिया था कि लक्षण होते हैं तो

0: इन होता है, लेकिन पेन बहुत सारी वजहों से भी हो सकता है। तो ये प्रॉपर लक्षण क्या होते हैं इस रोग के?
1: आपने बिल्कुल सही कहा, पेन के कई कारण हो सकते हैं।
0: जी
1: मुख्यतः मुख्य तौर पे अगर हम कहें कि पेन ड्यूरिंग पीरियड्स या आफ्टर पीरियड्स,
0: जी
1: वो एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। क्रॉनिक पेल्विक पेन, मतलब पेन आप हमेशा महसूस करते हैं, या बैक एक, वो भी इसका एक लक्षण होता है। पेन ड्यूरिंग सेक्स इन यंग वुमेन, वो भी एक बड़ा सिम्टम होता है। पेन वाइल पासिंग मोशन और पेन वाइल पासिंग यूरिन, या पेशाब करते समय या मोशन पास करते समय जो पेन है, ये सारे पेन आपके लक्षण इंडोमेट्रियोसिस के हो सकते हैं।
0: जी
1: कई बार ये असिम्टोमेटिक भी होता है, मतलब आपके कोई लक्षण नहीं है पर आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपने अल्ट्रासाउंड कराया उस कारण से, तब आपको पता चलता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है।
0: जी डॉक्टर साहबा, अगला हमारा सवाल है उसको लेंगे, उससे पहले हमारे एक कॉलर लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना शुभ नाम बताएं।
2: जी मेरा नाम सना है। जी
0: जी सना जी, कहाँ से बोल रही हैं आप,
2: मैं मेरठ से बोल रही हूँ।
0: बताइए क्या सवाल है।
2: जी मेरा सवाल है कि मेरी बहन 2 साल की है और उसके पीरियड थोड़े थोड़े आते हैं।
0: ठीक
2: अभी
0: है।
2: उसे पीरियड शुरू हुए हैं तो उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो थोड़े थोड़े आते हैं।
0: जी।
1: उसको पीरियड्स कब शुरू हुए?
2: जी अभी थोड़े दिन पहले ही शुरू हुए हैं।
1: पीरियड्स शुरू होने समय जो पेन होता है उसका एक कारण ये होता है कि उसके अंडे बनने लगे हैं, तो ये एक अच्छी बात होती है। अगर ये पेन बहुत बढ़ता है जिससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो रही है, वो स्कूल से छुट्टी ले रही है या स्कूल जाना नहीं चाहती है, उस केस में इन्वेस्टिगेशन बनता है। उस केस में हम लोग कहते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड करा करके आप एक बार देख लो।
2: जी डॉक्टर साहब, जरा बहुत ज्यादा वॉशरूम जाना पड़ता है, बार बार उसका टॉयलेट आता है।
1: हाँ, तो एक बार अल्ट्रासाउंड करा करके देख लें उसमें क्या निकलता है, फिर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं या वहाँ पे किसी लोकल डॉक्टर को भी अल्ट्रासाउंड के बाद दिखा सकते हैं।
0: जी तो सना जी की समस्या का समाधान आपने कर दिया है मैम, और अब जो हम बातचीत आज की कर रहे हैं वो है एंडोमेट्रियोसिस पर। तो किस तरह से इसको जाना जाए, आपने बताया कि लक्षण क्या होते हैं, लेकिन जब ये रोग होता है तो किस शरीर को विशेष तौर पर प्रभावित करता है?
1: ये जो बीमारी है मोस्टली जो है ये पेल्विक ऑर्गन, जिसको मैं यूट्रस, बॉबल, ब्लैडर, उसके आसपास के हिस्सों को अफेक्ट करता है। बेसिकली ओवरी में या तो सिस्ट बन जाती है जो हमें अल्ट्रासाउंड में दिखाई देती है। कई बार ये अल्ट्रासाउंड में नेगेटिव फाइंडिंग्स भी होती हैं, मतलब हमें अल्ट्रासाउंड में सारी चीज़ें नॉर्मल पता चलती हैं,
0: जी
1: फिर भी पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी हो
0: हो
1: सकती
0: सकता
1: है। कई बार हमें एमआरआई भी करा करके देखना पड़ता है, क्योंकि एमआरआई में हमें ये पता चल जाता है कि बॉबल, ब्लैडर सब आपस में चिपके हुए तो नहीं है। बट सिम्टम्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर पेशेंट को सिम्टम्स हैं तो भी हम लोग उसको एंडोमेट्रियोसिस मान के एम्पेरिकली ट्रीट कर सकते हैं।
0: मैम क्या कहेंगी कि इस रोग के होने का कारण क्या है, वजह क्या है? क्योंकि आजकल जो खान पान है वो भी कहीं ना कहीं दायित्व होता है उसका भी, रोगों को बढ़ाने में या उनको बढ़ावा देने में।
1: एग्जैक्ट कारण का तो हमें पता नहीं है आज भी,
0: जी
1: पर अगर औरतें को जो माना गया कारण ये है कि आजकल की जनरेशन में जैसे हम प्रेगनेंसी लेट करते हैं या ब्रेस्ट फीडिंग भी कम होती है, तो वी आर एक्सपोज टू मोर नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अलॉन्ग विद दैट जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है। इन दोनों के तहत कुछ लोगों को ये बीमारी आजकल पाई जाने लगी है, ज़्यादा हम देखने लगे हैं।
0: किस तरह के टेस्ट जरूरी होते हैं और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये आपसे जानेंगे। फिलहाल मैं टेस्ट जानना चाहूंगी कि क्या क्या होते हैं और किस तरह से कराने चाहिए, क्या सीक्वेंस में होना चाहिए।
1: अगर आपकी पेन से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो रही है, मतलब अगर आप एडोलेसेंट एज ग्रुप में हैं और पेन के कारण आप छुट्टी लेके घर पे बैठे हैं, या आप यंग एज ग्रुप में हैं और ऑफिस से छुट्टी लेके बैठे हैं, या आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो पा रही है और क्लिनिकली डॉक्टर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि एंडोमेट्रियोसिस है, तो पहला जो होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड हम लोग कहते हैं। वो हमें कुछ हद तक आइडिया देता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी हमें बताता है। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम लोग MRI की ओर जाते हैं।
0: जी, हमारे कॉलर लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताएं सर।
3: हेलो
0: जी, बताएं अपना नाम बताएं। जी
3: मैम, सरस्वती।
0: जी सरस्वती जी, कहाँ से बोल रही हैं आप?
3: मैम अहमदाबाद से। आप अनुराधा मैम बोल रहे हैं?
0: जी बिल्कुल बोल रहे हैं, और डॉक्टर साहिबा आपको सुन रही हैं। बताएं क्या सवाल है आपका?
3: हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते
0: जी, नमस्कार आपको भी, हम दोनों की ओर से नमस्कार। बताइए
3: मैम, मैं ब्लाइंड हूँ
0: जी,
3: और मेरा एक बेटा है।
0: हाँ हाँ,
3: लेकिन आप ये जो एंडोमायोसिस के बारे में आप बता रहे हैं
0: जी,
3: तो मैम इसमें डायबिटीज और सीट्स आते हैं मुझे, तो उससे भी रिलेटेड ये बीमारी हो सकती है?
1: नहीं, डायबिटीज अलग बीमारी है और एंडोमेट्रियोसिस अलग बीमारी है। एंडोमेट्रियोसिस में बेसिकली आपको पेन होता है बहुत सीवियर, नीचे के शरीर के नीचे के हिस्से में, बच्चेदानी के हिस्से में, वहाँ पे पेन।
0: जी आपका सवाल समझ नहीं पाए, दोबारा बताएं।
3: ये पूछ रही हूँ मैम कि डायबिटीज है मुझे,
0: ठीक है,
3: तो मुझे डायबिटीज ये जो एंडोमेट्रियोसिस के से रिलेटेड है क्या? क्योंकि जब मैडम जब मैं मेरी जो पेशाब की जगह है ना, तो वहाँ पे एकदम जाम जम जाता है, जैसे मैल जमती है ना बॉडी में,
0: जी
3: इस टाइप से जमती है।
0: मतलब आप कहना चाह रहे हैं
3: कि उसके लिए इचिंग की दवाई लेनी पड़ती है, तब वो फर्क पड़ता है?
1: नहीं,
3: और फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। मैंने अभी
1: एंडोमेट्रियोसिस से एंडोमेट्रियोसिस से उसका रिश्ता नहीं है। आपको डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ अगर कंट्रोल में नहीं है तो आपको नीचे में वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, और इचिंग की शिकायत आपको आ सकती है। आप एंटीबायोटिक लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, पर अगर आप डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो वापस आएगा।
0: तो क्या इनको टेस्ट कराने की ज़रूरत है? क्योंकि ये संदेह की स्थिति में लग रही हैं कि डायबिटीज़ की वजह से, ऐसा तो नहीं कि आज का जो विषय हम चर्चा कर रहे हैं इनको भी वो बीमारी हो? क्या कहना चाहेंगे?
1: नहीं, इनके सिम्टम्स पेन के नहीं हैं,
0: ठीक है,
1: पर और इनको एक बच्चा हो गया है, तो दो जो सिम्टम्स हैं एंडोमेट्रियोसिस के, वो पेन या सब फर्टिलिटी, वो दोनों ही नहीं है।
0: जी, जी।
1: चेक कराने में कोई नुकसान नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान इनके अल्ट्रासाउंड हुए होंगे, उसमें भी पिकअप नहीं हुआ है, तो अनलाइकली है। जो सिम्टम्स हैं वो डायबिटीज के ज्यादा लग रहे हैं।
0: जी, तो सरस्वती जी बिल्कुल फिक्र न करें, मैम ने आपको आश्वस्त कर दिया है कि ऐसा कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है, तो आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, बाकी सारी समस्या खुद सुलझ जाएगी, ऐसा हम सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहिबा, और जब हम ये बात कर रहे हैं कि टेस्ट कौन कौन से होते हैं, तो आपने अभी जानकारी दी, इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगी?
1: टेस्ट मेनली मैंने बताया कि एक अल्ट्रासाउंड है, MRI है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, जो डॉक्टर आप देख रहे हैं उसकी एक्सपर्टीज भी मैटर करती है एंडोमेट्रियोसिस में। इन सब के बाद हमें कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है कि नहीं है। फिर उसका इलाज उस हिसाब से कि आपकी क्या सिम्टम्स है उसके आधार पे किया जाता है।
0: जी। कोई खास उम्र होती है इस रोग को होने की, या किसी को भी हो सकता है?
1: नहीं, ये किसी को भी हो सकता है। आजकल हम लोग एडोलेसेंट एज ग्रुप में भी देखते हैं, और मेनोपॉजल एज ग्रुप में भी देखते हैं, यंग एज में तो पर्टिकुलरली ये बहुत ही कॉमन है, तो कोई भी एज इससे परे नहीं।
0: ठीक है, हमारे पास मैसेजेस आ चुके हैं। रविंद्र पाठक जी, आशा पाठक जी फ्रॉम नीदरलैंड से, इन्होंने लिखा है कि हमारा प्रश्न है, नमस्कार भेजा है डॉक्टर साहिबा आपको
1: जी, नमस्कार
0: जी। फिर ये लिख रहे हैं कि यूट्रस रिमूव करने के बाद किस प्रकार की सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, क्या इसे खान पान का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, इनका क्वेश्चन है।
1: ये डिपेंड करता है कि आपका यूट्रस किस वजह से रिमूव हुआ था। आपका यूट्रस अगर हेवी ब्लीडिंग के कारण रिमूव हो सकता है, आपका यूट्रस कैंसर के कारण रिमूव हो सकता है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस वजह से आपका यूट्रस रिमूव हुआ था, सावधानी उसी हिसाब से आपको बरतनी चाहिए। तो वो सब चूंकि डिटेल मेरे पास नहीं है, तो ये कहना कि एग्जैक्ट क्या सावधानी बरतनी होगी, ये मेरे लिए मुश्किल होगा
0: जी।
1: तो बेहतर होगा कि आपके जो नियर बाय डॉक्टर हैं आप उनसे मिलें, और अपनी समस्या उनसे बात करें
0: जी। और हम अपने ऐसे श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहेंगे कि इतनी दूर बैठकर कार्यक्रम सुन रहे हैं और क्वेश्चन करके लोगों की जो जिज्ञासा है उसको शांत कर रहे हैं। और हमारे जो हमारे श्रोता हैं उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। स्टूडियो के नंबर्स हैं 01123421080 और 01123421082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है

0: 6810070070। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज के विषय से जुड़ा तो आप सवाल कर ही सकते हैं, साथ साथ आपको अगर स्त्री रोग से जुड़ा कोई भी सवाल करना है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आज की हमारी विशेषज्ञ ममता मिश्रा जी आपको बता रही हैं कि आप कैसे अगर किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो उसको आप कैसे निदान पा सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, जैसा कि हमने कहा कि किसी उम्र में भी आपने बताया कि ये रोग हो सकता है, तो क्या ये वंशानुगत भी होता है?
1: हाँ, इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का रोल है। कई बारी देखा गया है कि फैमिली में रन करती है कि अगर मदर को था तो डॉटर को हो सकता है, बट ये ज़रूरी नहीं है। कई बारी पेरेंट्स को नहीं भी होता है तो भी फीमेल्स नाउ ए डेज आर गेटिंग दिस डिजीज़।
0: जी, तो श्रोताओं बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि वंशानुगत भी ये रोग हो सकता है जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने आपको बताया है, और आपको कारण निवारण सब कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरह से इस समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आप उसको किस तरह से निदान पा सकते हैं। अगर रोग की शुरुआत की बात करें मैम, तो किस तरह से माना जाता है कि वजह क्या हो सकती है इसकी?
1: जैसे मैंने बताया, कारण एग्जैक्टली तो नहीं पता है, पर अगर यू आर एक्सपोज टू लॉन्गर मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स, आपको ये हो सकता है।
0: जी,
1: प्रिवेंशन का एग्जैक्ट एविडेंस तो नहीं है, बट हेल्दी लाइफस्टाइल है अगर, एक्सरसाइज है अगर, एंड तो उसका रोल है इसमें, ये माना गया है, पर एविडेंस नहीं है कि हम वो करेंगे तो ये नहीं होगा।
0: जी,
1: दूसरा होता है कि अगर आपके अर्ली डायग्नोसिस जैसे एडोलेसेंट एज ग्रुप में हो गई है तो मेडिकल मैनेजमेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट मतलब हार्मोनल टैबलेट्स होते हैं जो हम उन्हें प्रेस्क्राइब करते हैं। डिजीज़ को क्योर तो नहीं कर सकते कम्प्लीटली, बट उसको सप्रेस करके रखा जा सकता है
0: जी
1: फॉर ए लॉन्गर टाइम।
0: जी क्या इसकी वजह से कंसीव करने में भी दिक्कत आती है? जैसा कि आपने बताया कि सिम्टम ही ये माना जाता है कि अगर कंसीव नहीं हो पा रहा है तो क्या ये वजह हो सकती है?
1: एक वजह हो सकती है, पर ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं और एविडेंस कहता है कि 15-20% ऑफ वुमेन जिनको कि एंडोमेट्रोसिस डायग्नोज्ड है, स्टिल दे कैन कंसीव नेचुरली एज वेल। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको अगर एक बार एंडोमेट्रोसिस डायग्नोज हो गया है तो आप कभी प्रेग्नेंट नहीं होंगे। जिनको भी डायग्नोसिस हुई है, एंडोमेट्रोसिस के भी कई स्टेजेस होते हैं, माइल्डर होते हैं और सेवियर भी होते हैं।
0: जी,
1: नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल है इसमें, ये जानना लोगों को बहुत ज़रूरी है। और नेचुरली अगर 20% कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ये बेहतर होता है कि सारे आप टेस्ट करा लें, और अगर कोई कारण नहीं मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, एंडोमेट्रोसिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, बट इसका इलाज पॉसिबल है।
0: जी, हमारे पास सालोका जी का नोएडा से सवाल आया हुआ है कि इनकी बेटी 24 साल की है, उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है पीरियड्स के दौरान, और साथ साथ वोमिटिंग भी फील होती है, तो लूज मोशंस भी होते हैं, तो क्या वजह हो सकती है इसकी?
1: नमस्कार आलोका जी। देखिए, अगर आपकी डॉटर्स का कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है तो एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लें। ज़रूरी नहीं है कि उसको एंडोमेट्रोसिस हो।
0: जी,
1: कई बारी इसको हम लोग कंजेस्टिव डिसमेनोरिया कहते हैं, ये यंग एज में काफ़ी कॉमन है। जब आप एग रिलीज करते हैं जिस साइकिल में, उस साइकिल में आपको पेन हो सकता है, और केवल सिम्टोमेटिक जैसे पेन किलर से भी इसका इलाज हो सकता है।
0: जी,
1: बट अगर आप हमारी सलाह मानेंगे तो एक बार अल्ट्रासाउंड करा के हम ये ज़रूर देखना चाहेंगे कि कोई और कारण तो नहीं है उनके पेन होने का।
0: जी, अल्ट्रासाउंड बताया मैम, और इन्होंने अभी अभी लिखा है कि अल्ट्रासाउंड ठीक आया है इनका, तो क्या कहना चाहेंगी?
1: तब तो अच्छी बात है ये कि अल्ट्रासाउंड ठीक आया, ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: जी,
1: तो उनको फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी जो हम लोग देते हैं वो नॉर्मली पेन किलर ही देते हैं, तो आपके नियर बाई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वो पीरियड्स के समय ले सकते हैं।
0: जी,
1: सेकेंड लाइन थेरेपी होता है अगर वो हेल्प नहीं कर रहा है, या आपको उससे एलर्जी है या कोई साइड इफ़ेक्ट्स है, तो आप सेकेंड लाइन में हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं वो सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट होते हैं, वो आप कंटिन्यूसली भी ले सकते हैं और नॉर्मली जैसे किस दिन के गैप पे भी ले सकते हैं।
0: जी,
1: तो वो आप ले करके, एंड दैट इज़ वन ऑफ द गुड मेथड टू गेट रीड ऑफ द पेन
0: जी। और ये तत्काल मैसेज करके धन्यवाद भी कर रही हैं। तो आलोका जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की जो जिज्ञासाएं हैं उनके माध्यम से लोगों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है, क्योंकि कभी कभी कॉल्स नहीं लगते हैं, लोग करना चाहते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो आप लोगों के जो सवाल हैं उसके माध्यम से बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं उनकी समस्या का समाधान उनको मिलता है। तो हमारी ओर से आपको धन्यवाद। और अब आगे बढ़ते हैं मैम, एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे की बातें।

0: जी।
1: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
2: जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ अनुराधा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ममता मिश्रा जी, जिनसे आज हम बहुत विशेष चर्चा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि स्त्री रोग से जुड़ी आपकी भी कोई समस्या है तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। उसके लिए स्टूडियो के नंबर हैं 01123421080 और 01123421082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107007। तो इस समय हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं लाइन पर, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: आप मेरे को सुन रहे हैं?
2: जी बिल्कुल, आपका ही सवाल ले रहे हैं। आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
3: तो ये जो हैबिचुअल अबॉर्शन की जो दिक्कत है ये किन कारणों से होती है, वाइफ के 5 टाइम?
2: जी सर, अपना नाम बता दें, सवाल तो आपका सुन रही है डॉक्टर साहिबा, अपना शुभ नाम बता दें।
3: नहीं, मेरा नाम राजेश
2: सुन
3: रहा हूँ।
2: हाँ जी,
3: तो ये 5 टाइम आफ्टर 3 मंथ जो है, हमने एमसी से भी इलाज करा दिया, तो आफ्टर 3 मंथ के बाद अबॉर्शन हो जाता है, कोई रीजन नहीं, प्लाज्मा करेंगे, ये करेंगे, बच्चे जाने का हम आप 6 महीने आपको हॉस्पिटल।
2: आवाज कट कट के आ रही है सर, आपकी आवाज कट के आ रही है। क्वेश्चन दोबारा कर दें और थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आ जाएं सर।
3: हाँ नहीं, अभी अबॉर्शन हो जाता है आफ्टर 3 मंथ, है ना?
4: जी Hello? जी मैं समझ गया आपके सवाल, नाम मैं नहीं सुन पाई, नमस्ते। देखिए बहुत सारे कारण हैं और हमारे पास समय इतना नहीं है कि मैं उन सब कारणों को आपको बता पाऊँ, लेकिन अगर आपके बार बार एबॉर्शन हो रहे हैं तो ज़रूर कुछ टेस्ट आपके भी हुए होंगे और कुछ टेस्ट आपके वाइफ के भी हुए होंगे, और कई बार हम लोग टेस्ट जो होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर भी करते हैं। उसके बाद हम लोग एक कारण पर पहुँचते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बारी हम आपको कारण बता पाएं। इसीलिए इस अभी तो इसमें चर्चा करना कि क्यों हो जाते हैं कारण, ये तो लंबी चौड़ी एक लिस्ट हो जाती है और हमें एक एक करके सबको हटाना होता है कि ये नहीं है और ये नहीं है। बेहतर होगा कि अगर आप आ करके एक बार मिल लें। आप कहाँ रहते हैं?
3: तुम्हें भी दिखा दिया है।
4: कोई बात नहीं, एक बार आकर के अगर मिल लेंगे।
3: इनका लास्ट डिसीजन यह है कि बच्चेदानी का मुंह शील्ड करना पड़ेगा।
4: देखिए बिना पेपर देखे बिना कारण जाने मैं आपको कोई भी सलाह इस पे प्लेटफॉर्म पे तो नहीं दे पाऊंगी
2: जी।
4: मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, बेहतर होगा
3: कि मुश्किल है सर।
4: हाँ मैं समझ गई, मैं कोई आप एक बार आके मिल सकते हैं कहीं पे भी, वसंत कुंज बहुत दूर नहीं है, फोर्टिस में या मेरे क्लिनिक पे, कहीं पे भी आप आके मिल लें तो हो सकता है आपकी समस्या का समाधान हो जाए। थैंक यू
2: जी। हमारे पास मैसेज आया हुआ है डॉक्टर साहिबा, नरदेव सिंह चौहान कोटद्वार उत्तराखंड से लिख रहे हैं, आपको नमस्कार भेजा है इन्होंने, साथ ही मुझे भी भेजा है। लिख रहे हैं कि स्त्री परिवार की धुरी होती है, सुबह से रात तक काम करती है परंतु अपने शरीर पर ध्यान नहीं देती है। आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं तो इस नाते आप क्या कहेंगी कि किस तरीके का चेकअप कराते रहना चाहिए महिलाओं को?
4: नमस्ते, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। दो चीज़ें मैं सोचती हूँ मेरे प्रैक्टिस में जो मैं हर किसी को कहना चाहती हूँ ज़रूर कराएं। वो एक है कि आप अपना पैप्समियर टेस्ट, जो कि कैंसर प्रिवेंशन के लिए है, सर्वाइकल कैंसर, और ये 5 साल में एक बार ही होता है, इसको पैप डुओ टेस्ट कहते हैं, ये सर्वाइकल कैंसर से आपको बचाता है, ये ज़रूर अपने वाइफ और आपके घर में जितनी औरतें हैं उनका ज़रूर कराएं। दूसरा जो होता है उनको एनुअली डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर के लिए भी चेक कराएं, और तीसरा है फ्लू वैक्सीनेशन मैं रिकमेंड करती हूँ ताकि वो डे टू डे एक्टिविटी नॉर्मली कर सकें। इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन द एज ब्रेस्ट चेकअप के लिए मैमोग्राम इज़ रिकमेंडेड, पर ये 50 के ऊपर की है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वो कर सकते हैं सो दैट अगर ब्रेस्ट कैंसर आता है तो उसको वो जल्दी पकड़ सकते हैं
2: जी।
4: ये मिनिमम है, इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं बट ये बहुत ज़रूरी है, और फिजिकली एक्टिव रहना दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट।
2: जी, हमारे पास मैसेज आया हुआ है प्रिंसी जैन जी का, इन्होंने लिखा है, कहाँ से भेजा है ये मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, नहीं लिखा है शायद इन्होंने। इन्होंने लिखा है कि इनकी उम्र 30 वर्ष की है और लिख रही है कि पीरियड के दौरान इनको पेन होता है, साथ साथ जब ये मॉर्निंग में यूरिन पास करती हैं तो ब्लड भी आता है, ऐसा इनके साथ रेगुलर चल रहा है। क्या समस्या हो सकती है, किस तरीके का इनको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है?
4: मेरे लिए जानना ज़रूरी है प्रिंसी कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपके बच्चे हुए हैं या आपकी सर्जरी कोई हो रखी है या नहीं। इस आधार पे हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं आपको। पहला चीज़ है यूरिन इन्फेक्शन रूल आउट करना, जिसमें यूरिन रूटीन और कल्चर टेस्ट होता है जो यूरिन इन्फेक्शन रूल आउट करेगा
2: जी।
4: और दूसरा होता है कि हम अल्ट्रासाउंड करा के देखें कि यूट्रस में कोई लंप बम्प है कि नहीं, जो कि जिसके कारण आपको ये तकलीफ या परेशानी हो रही हो
2: जी। डीएसए भी इन्होंने लिखा है कि डीएसए भी हुआ है और बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बताई ही हैं इनके लिए।
4: हाँ, बट ये जैसे मैंने कहा कि इतने शॉर्ट टाइम में हम आपको सारी चीज़ें तो नहीं बता सकते, बट बेसिकली जो आपकी समस्या है वो पेनफुल पीरियड्स है एंड ब्लड इन द यूरिन है। इसके लिए पहले हमें, मैंने जैसे एंडोमेट्रियोसिस अगर रूल आउट करना है तो अल्ट्रासाउंड और एमआरआई बनता है और साथ में किडनी का इवैल्यूएशन भी बनता है विथ यूरिन टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड किडनी के अलावा
2: जी।
4: ये सब चीज़ों के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट हो सकता है
2: जी। मैम अगर उम्र की बात करें तो अगर किसी 17 वर्ष की बच्ची को एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट है तो उसका क्या इलाज होगा, या उससे बड़ी किसी उम्र की महिला को है तो क्या इलाज अलग अलग होता है?
4: हाँ, इलाज का जो हम इलाज जब करते हैं तो बहुत सारे वेरिएबल्स जिसको हम कहते हैं, पहला वेरिएबल होता है एज कि क्या एज है, दूसरा होता है कि उसके सिम्टम्स क्या हैं, पेन अगर हो रहा है तो ड्यूरिंग पीरियड्स, आफ्टर पीरियड पेन, ड्यूरिंग सेक्स, ये सब चीज़ें हम इवैल्यूएट करते हैं
2: जी।
4: फिर अल्ट्रासाउंड कराते हैं और एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है तो कराते हैं। नाउ जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट सिम्टम्स पेशेंट्स आर हैविंग वी गो फॉर इनिशियली मेडिकल मैनेजमेंट
2: जी।
4: मेडिकल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम दवाइयों से उनकी इलाज करने की कोशिश करें। तो दवाइयों में पहला होता है पेन किलर, अगर उनका पेन बहुत सिवियर नहीं है और एंडोमेट्रियोसिस माइल्ड है तो हम लोग सिर्फ पेन किलर से भी मैनेज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि एक हार्मोनल थेरेपी जिसे कहा जाता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कहते हैं, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं
2: जी,
4: या प्रोजेस्ट्रॉन टैबलेट्स आती हैं, वो भी मेडिकल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। जैसे आपने मेरे से पूछा कि 17 साल की है और सिस्ट है, सिस्ट का साइज हमें ये बताता है कि इसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट हो सकता है
2: जी।
4: सिस्ट के बावजूद भी हम लोग मेडिकली उसको मैनेज कर सकते हैं अगर सिस्ट साइज स्मॉल है तो। मेडिकल मैनेजमेंट में बस ये है कि
2: इस पर चर्चा करेंगे आगे, फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, शुभ नाम बताएं अपना।
0: मेरा नाम सुषमा है।
2: सुषमा जी कहाँ से बोल रही है?
0: ये दिल्ली से बोल रहे हैं
2: जी। बताएं क्या सवाल है आपका?
0: ये किसी सब बच्चा हो सकता है, एक बच्चा है हमारे पास वो 5 साल का है, दूसरा बच्चा बहू के लिए सोच रही है।
2: अच्छा, आप अपनी बहू के लिए सवाल कर रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगी आप मैम?
4: वो कोशिश कर रहे हैं बच्चे होने के लिए और बच्चा नहीं हो रहा है, ऐसी कोई हालत?
0: अभी कोशिश तो नहीं कर रहे।
4: तो फिर उनको कोशिश कर लेने दीजिए, हमारी जरूरत तो तब पड़ेगी जब वो कोशिश करें और सक्षम ना हो पाए
2: जी।
0: अच्छा, 40
4: 40 साल में भी बच्चे होते हैं

0: उनको कोशिश करनी चाहिए,
1: अच्छा जी ठीक
0: हो जब तक पीरियड्स आते हैं तब तक बच्चे हो सकते हैं,
1: है
0: और हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग हैं।
2: जी। तो ये घर की बड़ी बुजुर्ग हैं, उस नाते इन्होंने ये सवाल कर लिया और मैम ने आपका समाधान भी कर दिया है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि उम्र के अनुसार जिस तरीके के ट्रीटमेंट आप बता रहे थे, क्या कहेंगे?
0: जी, तो मेडिकल मैनेजमेंट भी अगर सिस्ट साइज स्मॉल है तो हो सकता है। एडोलेसेंट में प्रेफर करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, अगेन देर आर मेनी वेरिएबल्स जैसे मैंने कहा, और लेकिन उसमें फिर आपको लॉन्ग टर्म फॉलो अप में भी रहना होता है। इस बीमारी के साथ यही है कि लंबी बीमारी है, आपको अगर सर्जरी भी होती है, मेडिकल मैनेजमेंट भी होता है, तो भी रिकरेंस का रिस्क रहता है, तो आपको हमेशा आपको फॉलो अप में रहना पड़ता
2: तो
0: है।
2: क्या सर्जरी ही एक विकल्प है मैम, या फिर मेडिसिन के जरिए भी बीमारी ठीक हो सकती है?
0: बीमारी को हम लोग कंट्रोल करके रख सकते हैं मेडिसिन के द्वारा। सर्जरी भी करना पड़ता है कई केसेस में, मैंने जैसे कहा कि मान लीजिए अगर उनको सीवियर पेन है, स्टेज इंडोमेट्रियोसिस का स्टेज 3-4 है, कई बार 1-2 में भी करना पड़ता है। सिस्ट का साइज काफ़ी बड़ा है, अगर कट ऑफ हमारे लिए 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, और सबसे बड़ी बात होती है पेशेंट का सिम्टम्स और उसके क्या चॉइसेस हैं।
2: जी
0: जब अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उन्हें सारे ऑप्शंस देते हैं, मेडिकल सर्जिकल, और उनकी सुविधा अनुसार जो उनके लिए बेस्ट अप्रोच होता है फिर हम लोग वही निर्धारित करते हैं।
2: डॉक्टर साहिबा, हमारी एक श्रोता हैं श्याम मित्तल जी, रोहिणी से लिख रहे हैं कि इनकी उम्र 74 वर्ष की है और इन्होंने सवाल तो नहीं भेजा है लेकिन प्रोग्राम की तारीफ की है। लिख रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि आज रेडियो डॉक्टर के माध्यम से जो फीमेल्स हैं वो खुद आज बातचीत कर रही हैं और उनके कॉल्स आ रहे हैं। साथ साथ ये बधाई दे रहे हैं यहाँ पे शालिनी मैम को, मुझे और डॉक्टर साहिबा आपको भी, कि
0: जी
2: इतने
0: धन्यवाद।
2: अच्छे विषय पर आज आप चर्चा लेकर आए हैं, तो इन्होंने उसके लिए हमें बधाई दी है। तो सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं और हमारी जो आप तारीफ करते हैं उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि आप अपने कोई सवाल भी भेजें तो और भी अच्छा रहेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सर अपना शुभ नाम बताएं। हेलो
3: हेलो
2: जी मैम, बताएं क्या सवाल है आपका, पहले नाम बता दें अपना।
3: नमस्ते मैम, मैं प्रभ पंजाब से बोल रही हूँ।
2: जी
3: हाँ जी मैम, मैं अपनी फ्रेंड के बारे पूछना चाहती हूँ।
2: बिल्कुल पूछ लीजिए, लेकिन नाम नहीं बताया हमने आपसे, नाम बताने का आग्रह किया था पहले।
3: मैं प्रभ बोल रही हूँ।
2: ओके ठीक है, बताइए मैम क्या सवाल है आपका।
3: मैम मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड है, वो में है, बल्कि उसकी शादी को 7 साल हो गए मैम, पर उसके ना बच्चा नहीं ठहरता है, प्रेगनेंसी नहीं होती मैम।
2: ठीक है
3: हाँ जी, तो
0: जी
3: वो जब मतलब थोड़ा टाइम होता है जब प्रेगनेंसी होती, 2 बार उसका इससे केस की खराब हो जाता है।
0: जी ये सवाल पहले भी आया था, जिन्होंने एम से पूछा था कि उनके 5 बार खराब हो गए हैं। इसके कई कारण होते हैं, और जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो वो कारणों को उनके बारे में पता लगाते हैं। कई बार क्या होता है, 2-3 मिसकैरेजेस के बाद भी आपकी संभावना नेचुरली प्रेग्नेंट होने की काफ़ी होती है, तो इसमें आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और सही इलाज से आप कंसीव कर सकते हैं, ये उन्हें हिम्मत देने की हमें ज़रूरत पड़ती है। ऐसे सिचुएशन में आदमी काफ़ी निराश हो जाते हैं, और ये निराशा ही कई बार प्रेगनेंसी नहीं होने देती है।
3: मैम वो बहुत टेंशन में रहती है
0: हाँ,
3: बच्चे।
0: ये उनको ये कहना होगा कि अगर आपके एक बार बच्चा खराब होता है तो 90% चांस है कि आप दोबारा आराम से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अगर आपका 2 बार बच्चा खराब होता है तो भी आपके 85% चांसेस हैं कि आप आराम से प्रेग्नेंट हो करके आपके नॉर्मल बच्चा हो सकता है, पर इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, सही इलाज की ज़रूरत है। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ से मुझे ये बताना कि क्यों हो रहा है ये थोड़ा मुश्किल है, आप नियर बाई जो भी डॉक्टर हैं उनसे आप मिल सकते हैं, कारणों के बारे में जान सकते हैं, और हिम्मत रखेंगे तो ज़रूर कुछ ही दिनों में आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी।
2: जी और आपने बात की मैम कि खुश रहना, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए संगीत भी बड़ा ज़रूरी होता है, तो क्यों ना एक म्यूजिकल ब्रेक ले
0: जी
2: लिया जाए
0: थैंक
2: यहाँ
0: यू।
2: पर।

0: हाँ, इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी लेकर आप अपने आशियाने में खुश रह सके, इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि आप किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। और साथ साथ महिलाएं अगर स्वस्थ रहती है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, ये कोई बात ऐसी नहीं है जो कोई ना समझ सके। और आज हम चर्चा कर रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस पर, किस तरह की ये बीमारी और कैसे आप इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं, इस विषय पर तमाम जानकारी हमें दे रही हैं डॉक्टर ममता मिश्रा जी। मैम, अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की तो कितने लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है, क्योंकि कोई भी बीमारी होती है सबसे पहले रोगी के मन में ये सवाल होता है कि क्या सारी उम्र मेडिसिन खानी पड़ेगी या ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा।
1: ये एक लंबी बीमारी है, इसमें आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको दवाइयाँ लंबी चलें या ना चलें
0: जी,
1: आपको दवाइयों की ज़रूरत है या आपको सर्जरी की ज़रूरत है या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट एक चीज़ तो है कि आपको फॉलोअप में कंटिन्यूसली रहना पड़ेगा। फॉलोअप में रहना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हम इसको, अगर रिकरेंस होता है, दोबारा ये बनता है, तो हम इसको जल्दी पकड़ सकते हैं और मेडिकली हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट इसका चलता है और ये तब तक चलता है मोस्टली जब तक कि आपके पीरियड्स बंद नहीं हो जाते हैं
0: जी।
1: तो अगर आपके जो रिप्रोडक्टिव एज टाइम है, जिस समय आपके पीरियड्स शुरू हुए और जब तक वो ख़त्म नहीं होते हैं, किस एज में आपकी डायग्नोसिस होती है, मान लीजिए किसी की डायग्नोसिस ही 45 में हुई है तो उसका इलाज बहुत लंबा नहीं चल सकता है, पर किसी के अगर 16 ईयर्स में डायग्नोसिस हुई है तो हो सकता है उसका इलाज लंबा चले, ये एक्सेप्ट करना पड़ता है।
0: तो ये क्या सिर्फ पीरियड्स के दौरान ही होने वाली डिजीज है, ऐसा कह सकते हैं?
1: हाँ, ऐसा आप कह सकते हैं कि मेनली जो कारण होता है इसका ये पीरियड्स से ही रिलेटेड होता है जो हम

0: लाइनिंग पीरियड्स के समय शेड करते हैं
1: जी,
0: जब आपके हॉर्मोन्स चेंजेस होते हैं, तो वही लाइनिंग आपके बच्चेदानी के आसपास की जो जगह है वहाँ पे ये पनपती हैं आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से, इसी की वजह से ये बीमारी पनपती है
1: जी। मैम, आजकल जो देखा जाता है कि बहुत अब लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, पहले भी लोगों को मालूम था लेकिन इतना लोग नहीं करते थे, अब खास करके योग की तरफ लोग दोबारा आकर्षित हो रहे हैं, क्या व्यायाम से और योग से इस बीमारी पर कोई असर पड़ेगा और खान पान बदला जाए, प्राकृतिक रूप से जुड़ा जाए?
0: इस पर काफ़ी जगह चर्चा होती है, पर अगर साइंटिफिक एविडेंस कहें तो हमारे पास बहुत नहीं है। हैविंग सेड दैट, इट इज़ ऑलवेज इनकरेज टू हैव ए हेल्दी लाइफ स्टाइल विच इंक्लूड्स लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज, ये तो बिल्कुल ही करना चाहिए। इस बीमारी पे कितना इम्पैक्ट है ये कहना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है।
1: तो श्रोताओं, यहाँ पर हम आपको बहुत विशेष चर्चा के दौरान बता रहे हैं कि आपके जीवन में अगर कोई भी स्त्री रोग से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय अब हमारे पास नहीं है, थोड़ा सा समय है, अगर आपका भी कोई सवाल है तो हम तक तुरंत पहुँचाएं। स्टूडियो के नंबर से 01123421080, 01123421082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। तो मैम, एक म्यूजिकल ब्रेक और बनता है, यहाँ लेते हैं।
0: थैंक यू।

0: तो मैम हमारे एक कॉलर और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: मैं राधा गुप्ता बोल रही हूँ दिल्ली से। मैम
0: जी आपका स्वागत है, बताएं क्या सवाल है आपका।
1: मेरे दो बच्चे हो चुके हैं सेकेंड डिलीवरी, तो
0: जी
1: मैम इस जैसे मेरे पीरियड्स में के दौरान पेन होता है, तो मैम इस टाइम भी मुझे ये बीमारी हो सकती है इस टाइम पे भी? और मैम मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैंने कोपर्टी सेकेंड डिलीवरी के बाद कोपर्टी लगवा ली थी, तो मैम 10 इयर्स होने वाले हैं, तो उसके बाद निकाल सकते हैं कि मतलब उससे पहले निकलवा लेना चाहिए? जैसे अप्रैल में मैम होने वाले हैं 10 ईयर, तो उससे पहले निकालना चाहिए कि बाद में 1-2 महीने का डिले भी कर सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछूं मैम से।
2: पहला क्वेश्चन है तुम्हारा कि तुम्हें पेन जो हो रहे हैं वो एंडोमेट्रोसिस की वजह से हैं या कोई और कारण भी हो सकता है।
1: हाँ जी मैम,
2: तुम्हारे जो ऑपरेशन हुए हैं, ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है या नॉर्मल
1: यस
2: डिलीवरी?
1: मैम, पहली डिलीवरी मेरी नॉर्मल है, सेकंड डिलीवरी से हुआ है।
2: तो पेन तुम्हें पहले डिलीवरी के बाद शुरू हुआ या पेन तुम्हें सेकेंड डिलीवरी के बाद शुरू हुआ?
1: मैम ये शुरू से ही मैम पीरियड्स के दौरान मैम होता ही है।
2: हाँ, तो बेस्ट होगा कि पहले तुम अल्ट्रासाउंड करा करके देख लो, इसके इससे रिलेटेड कोई इश्यू तो नहीं है। एंडोमेट्रोसिस एक कारण हो सकता है, कई बारी सर्जरी के कारण भी ऑर्गेन आपस में चिपक जाते हैं जिसे हम एडहेशंस कहते हैं, इसकी वजह से भी पेन हो सकता है। और पेन के और भी कई कारण हो सकते हैं, वो हमें इवेलुएट करना पड़ेगा। बट सिर्फ ये नहीं कह सकते कि एंडोमेट्रोसिस है इसी वजह से तुम्हें अभी ये पेन हो रहा है। एंडोमेट्रियोसिस अगर होता है तो कई बारी लोगों को बच्चे होने में भी दिक्कत आती है, और तुम्हारे दो बच्चे हो चुके हैं तो मोस्ट लाइकली कोई और भी कारण हो सकता है पेन का, जो हमें इवेल्युएशन के बाद पता लगेगा।
0: दूसरा भी इनका सवाल था।
2: दूसरा सवाल था कॉपर्टी के लेकर के, जब 10 साल पूरे हो जाते हैं तो उसमें से कॉपर जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो बेहतर होता है कि आप उसको उसी समय निकलवा लें। डिले करने से उसकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी नहीं रह जाती है, तो इससे बेहतर होगा कि आप टाइम पे ही उसको निकलवा लें।
0: ये पेन कहीं उसकी वजह से ही तो इनको नहीं है, ऐसा कहा
2: नहीं,
0: जा
2: मैंने
0: सकता
2: जैसे
0: है?
2: कहा कि 10 साल से है इनको कॉपर्टी इन्होंने लगा रखा
0: ठीक
2: है,
0: है।
2: अगर इतना सीवियर पेन होता तो शायद ये अब तक निकलवा चुकी होती। ये इवेलुएट करना पड़ेगा एग्जैक्टली कि पेन का कारण क्या है, तभी हम उस पर एड्रेस कर सकते हैं। पर एंडोमेट्रोसिस एक कारण हो सकता है, विच इज़ वेरी अनलाइकली दो।
0: ठीक। टीना जी पंजाब से हमें सवाल भेज रहे हैं कि सिस्ट होने का रीजन क्या होता है ओवरीज में?
2: ओवरीज में सिस्ट बहुत तरह से बनते हैं। कुछ सिस्ट में जो बनते हैं उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, वो नॉर्मली नेचुरली बनते हैं, बहुत सारे औरतों को बनते हैं, और उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है टीना। तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा सिस्ट कौन से प्रकार का है, उसके आधार पे ही हम लोग बता सकते हैं कि ये नेचुरल है या इसके लिए तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। हम जो इस टॉपिक पे आज बात कर रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस, वो भी एक तरह से सिस्ट बनाता है। उस सिस्ट के अंदर, सिस्ट मतलब होता है बैलून, जिसके पतला बैलून जिसके अंदर पानी भरा हो, जब उसके अंदर ब्लड भर जाता है तो उसे हमें एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहते हैं। तो जैसे सिस्ट के बहुत प्रकार होते हैं, तुम्हारे अगर तुम्हें है या तुम्हारे परिवार में किसी को है तो उस प्रकार के तहत हमें निर्धारित करेंगे कि उसे इलाज की ज़रूरत है या नहीं है।
0: जी तो मैम एक आखिरी सवाल के मेडिकल अन सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा बताएं चलते चलते।
2: जी, ये मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट जो होते हैं एंडोमेट्रियोसिस के, पहले हम मेडिकल की बात कर लेते हैं। तो मेडिकल में बहुत तरह की मेडिसिन आती हैं जो हम सिम्टम्स के आधार पर तय करते हैं और साइड इफ़ेक्ट के आधार पर तय करते हैं, और एक जो बड़ा फैक्टर होता है वो होता है एज ऑफ द पेशेंट। तो कोई भी मेडिसिन जो होता है, जैसे आते हैं पेन किलर आता है फर्स्ट लाइन, दूसरा जो होता है वो होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तीसरा होता है प्रोजेस्टेरोन थेरेपी, और दो तरह के इंजेक्शंस भी आते हैं जो हम देते हैं एंडोमेट्रियोटिक पेशेंट को। मोस्टली ये इफ़ेक्टिव होते हैं अगर आपकी डिजीज़ माइल्ड है, या मॉडरेट में भी दिया जाता है और सिस्ट साइज स्मॉल है, या आपकी सर्जरी हो चुकी है उसके बाद हम रिकरेंस प्रिवेंशन के लिए भी देते हैं।
0: जी
2: सर्जिकल मैनेजमेंट में कई बारी बहुत तरह की सर्जरी होती है, ये भी डिपेंड करता है कि आपके कौन कौन से ऑर्गेन इन्वॉल्व्ड हैं और आपकी उम्र कितनी है और आपके सिम्टम्स पेन है या सब फर्टिलिटी है। अगर सिस्ट है तो सिस्ट को निकाला जा जाता है, और बाकी अगर अडहेशंस हैं तो उनको छुड़ाया जाता है सर्जरी के दौरान, और उस पोस्ट ऑपरेटिवली फिर हम लोग उनको मेडिकल मैनेजमेंट पे डाल देते हैं।
0: जी, तो श्रोताओं आपको बता दें कि आज हमने चर्चा की एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। उम्मीद है कि आपको पर्याप्त जानकारी मिली होगी। आज हमारी विशेषज्ञ थी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ममता मिश्रा जी, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल नई दिल्ली से संबद्ध हैं। तो कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, इस उम्मीद के साथ अब आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अनुराधा को दीजिए इजाजत। उसके पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो और अब इस घंटे के मुख्य समाचार। लोकसभा ने केरल विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद के सुचारू संचालन की अपील की। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती किए गए। विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज के बाद आज भाजपा ने झारखंड बंद का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में भाग लिया। महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 घायल हो गए हैं। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लोकसभा में सरकार ने बताया है कि मौसम विभाग के समन्वय से मानसून की बदलती स्थिति और एलनीनो के कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की लगातार निगरानी की जा रही है। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की ईगा स्वायतेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। और ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। 4 बज चुके हैं बाय द स्टूडियो क्लॉक, 4:03 का समय। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो और मैं हूं ज्योतिका आपके साथ। और अब वक्त हो चला है अल्फा जेन का, जहां बात होती है करियर की, अपॉर्चुनिटीज की और उस फ्यूचर की जिसे आप आज अपने डिसीजन से शेप कर रहे हैं। और आज एक बहुत ही सिंपल सा सवाल कि अगर डिग्री मिल गई तो अब जॉब मिलेगी या नहीं। एक टाइम था जब हमारे घरों में करियर का एक फिक्स्ड फॉर्मूला होता था, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छे मार्क्स ले आओ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो, डिग्री कंप्लीट कर लो और फिर एक अच्छी नौकरी। लेकिन आज पिक्चर थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। कंपनीज क्वालिफिकेशन तो देख रही हैं, लेकिन साथ में ये भी पूछ रही हैं कि आप क्या कर सकते हैं। कैन यू कम्युनिकेट, कैन यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कैन यू वर्क विद अ टीम, कैन यू लर्न समथिंग न्यू क्विकली, और जो पढ़ा है क्या उसे प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सकते हैं या नहीं। तो आज अल्फा जेन में बात होगी डिग्री वर्सेस स्किल्स की। आज के जॉब मार्केट में एक्चुअली मैटर क्या करता है। अगला गाना बस एक ही चीज कहता है बार बार, कुछ भी हो जाए बस फिकर नॉट।

कुछ भी हो जाए, फिकर नॉट, सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं अल्फा जैन आकाशवाणी FM रेनबो पर। और अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ज्योतिका तो कह रही है कि डिग्री की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरा ये मतलब नहीं है। डॉक्टर, आर्किटेक्ट, लॉयर, रिसर्चर, प्रोफेसर, बहुत सारे प्रोफेशंस में फॉर्मल एजुकेशन फंडामेंटल तो है, और बाकी करियर्स में भी डिग्री आपको नॉलेज, डिसिप्लिन और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देती है। प्रॉब्लम डिग्री में नहीं है, प्रॉब्लम तब आती है जब हम डिग्री को अपनी फिनिश लाइन समझ लेते हैं। कॉलेज ने आपको क्या पढ़ाया ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आपने कॉलेज के बाहर क्या सीखा ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। सो इमेजिन, दो कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए आए हैं, दोनों के पास सेम डिग्री है और सेम मार्क्स भी आए हैं। एक के सीवी पर सिर्फ क्वालिफिकेशन है, लेकिन दूसरे ने इंटर्नशिप्स की हैं, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, प्रेजेंटेशंस दी हैं और एक दो यूजफुल टूल्स भी सीखे हैं। अब अगर आप एम्प्लॉयर होते तो आप किसको चूज करते, आप किसको हायर करते अपनी कंपनी के लिए, सोचिए सोचिए।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: मम्मी, बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
4: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
3: अरे मम्मी, 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
4: हैं? इतनी जल्दी?
3: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

वेलकम बैक आफ्टर द स्मॉल एड ब्रेक. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो और ये है अल्फा जन. देखिए, स्कूल और कॉलेज में हमने एक चीज को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दे दी. एनी गेसेस? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ परसेंटेज की. हमने परसेंटेज को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे दी. कितने आए हैं? 80, 90 या 95? लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट बदल जाता है बॉस. वहां क्वेश्चंस अलग होते हैं. डेडलाइन हैंडल कर सकते हो, टीम में काम कर सकते हो, या क्लाइंट के सामने बड़ी कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख सकते हो या नहीं. प्रॉब्लम आए तो सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो. मार्क्स अनडाउटेडली इंपॉर्टेंट तो होते हैं. देखिए, दे शो कंसिस्टेंसी एंड सब्जेक्ट नॉलेज, लेकिन मार्क्स आपकी कैपेबिलिटी की पूरी कहानी नहीं बताते. इसीलिए अगर आप एवरेज स्कोरर रहे हैं तो अपने करियर को एवरेज डिक्लेयर मत कर दीजिएगा. आपकी नेक्स्ट स्किल, नेक्स्ट प्रोजेक्ट, नेक्स्ट इंटर्नशिप डायरेक्शन चेंज कर सकती है. बिकॉज करियर में अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त.

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं अल्फा जैन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। एक टर्म आपने जरूर सुना होगा, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, एडेप्टेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट। नाम सॉफ्ट है लेकिन करियर पर इम्पैक्ट काफी सॉलिड है। इमेजिन आप ब्रिलियंट हो टेक्निकली लेकिन इंटरव्यू में अपना आइडिया एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे, या नॉलेज तो आपको बहुत है लेकिन फीडबैक एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और ये स्किल्स ना सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करने के लिए नहीं होती, कल जब आप किसी टीम को लीड करेंगे, क्लाइंट हैंडल करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे या अपनी वर्क प्लेस में किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को मैनेज करेंगे, वहां आपकी डिग्री से पहले आपका टेम्परमेंट और कम्युनिकेशन काम आएगा। एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करिए, आज अपने किसी दोस्त से पूछिए, मेरी कम्युनिकेशन की सबसे अच्छी और सबसे खराब, या आप कह सकते हैं वीक, क्या ऐसी चीज है। हो सकता है आंसर आपको सरप्राइज कर दे, क्योंकि समटाइम्स करियर ग्रोथ स्टार्ट्स विद सेल्फ अवेयरनेस। कई बार होता है कि हमें खुद के ही बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है जितनी अच्छी जानकारी आपके दोस्त को होती है। देखिए, नॉलेज आपको इंटरव्यू रूम तक तो पहुंचा सकती है, बट हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट एंड वर्क विद पीपल कैन इन्फ्लुएंस व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट। तो अपने टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ अपनी पीपल स्किल्स पर भी काम आपको करना चाहिए, क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि हम तो अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या सच्ची में जानते हैं?

चलिए आज अल्फा जेन में एक क्लासिक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। फ्रेशर कहता है कि जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए जॉब भी तो चाहिए। हर कोई आजकल बड़ा कंफ्यूज्ड सा रहता है। तो शुरू करें तो कहां से करें? देखिए, आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इंटर्नशिप करिए, कॉलेज का प्रोजेक्ट करिए, फ्रीलांस असाइनमेंट करिए, वॉलंटियरिंग, अपना पोर्टफोलियो बनाइए, किसी लोकल बिजनेस के लिए सोशल मीडिया हैंडल कर लीजिए, कोडिंग करते हैं तो अपना प्रोजेक्ट बिल्ड कर लीजिए, डिजाइनिंग करते हैं तो सैंपल पोर्टफोलियो बनाएं, और प्लीज स्मॉल अपॉर्चुनिटीज को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट मत करिए क्योंकि वो सीवी पर ग्लैमरस नहीं लगती। कभी कभी एक छोटी इंटर्नशिप में आप वो सीख जाते हैं जो क्लासरूम के पूरे सेमेस्टर में बिल्कुल नहीं सीख पाते। आपने किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व किया, किसी डेडलाइन को मीट किया, किसी कस्टमर को डील किया, वो एक्सपीरियंस कहलाता है। और जब इंटरव्यू में पूछा जाए, टेल मी अबाउट अ चैलेंज यू हैंडल्ड, तब आपके पास सिर्फ थियोरेटिकल आंसर नहीं होगा, एक रियल कहानी होगी। सीवी पर तो सब कहते हैं आई नो दिस, लेकिन उसके बाद ये कहना कि आई हैव डन दिस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। छोटी बिगनिंग को अंडरस्टैंड करिए, उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। समटाइम्स द स्मॉलेस्ट अपॉर्चुनिटी बिकम्स योर एंट्री पॉइंट टू अ वेरी वेरी वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी।

वैसे जब जब मैं ये गाना सुनती हूँ मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं, कॉलेज के फेस्ट याद आ जाते हैं, और जब कॉलेज के फेस्ट की बात होती है तो ये भी लगता है कि जब इंडिपेंडेंस डे आ रहा होता है तो हर जगह एक अलग ही माहौल, अलग ही सेलिब्रेशन होता है। दोस्तों 15 अगस्त अब बस कुछ ही दिन दूर है और जैसे जैसे इंडिपेंडेंस डे करीब आ रहा है वैसे वैसे हवा में एक अलग ही एहसास घुलने लगा है, अपने तिरंगे का, अपनी मिट्टी का और उन वीरों का, उनके बलिदान का, जिनकी वजह से हम आज आजाद हैं। आजादी सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं, ये एक जिम्मेदारी भी है, और कभी कभी कुछ जज्बात लफ्जों से नहीं सुरों से बयां होते हैं। तो आज 11 अगस्त की इस खूबसूरत शाम में चलिए उन्हीं जज्बातों को महसूस करते हैं एक ऐसे गीत के साथ जो देश से मोहब्बत

मोहब्बत को सिर्फ गाता नहीं, दिल में उतार सा देता है। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अब पेश है केसरी का ये ब्यूटीफुल ट्रैक। वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा लीजिए और दिल से सुनिएगा। ये गीत है उनके नाम जो अपनी मिट्टी के लिए सब कुछ कुर्बान कर गए।

रोंगटे खड़े कर देने वाला ये बेहतरीन गाना बी पराग की आवाज में फ्रॉम द मूवी केसरी। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं अल्फा जैन और अब मैं अल्फा जैन में कुछ बात पेरेंट्स से करना चाहूंगी। जो जो पेरेंट्स अभी मुझे सुन रहे हैं ये बात आपके लिए है। देखिए, हम नेचुरली अपने बच्चों के लिए सिक्योरिटी तो चाहते ही हैं। इंजीनियरिंग कर लो, MBA कर लो, गवर्नमेंट एग्जाम तो ट्राई करो, कुछ स्टेबल चूज करो। कंसर्न देखिए आपका बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन करियर लैंडस्केप रैपिडली ना चेंज हो रहा है। आज ऐसे करियर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में शायद 10-15 साल पहले हमने सुना भी नहीं था। और एक और छोटी सी इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि हर बच्चा जो मैथ्स में अच्छा है जरूरी नहीं इंजीनियर बन पाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और जो बोलने में अच्छा है उसके उसका जो करियर सिर्फ ट्रेडिशनल प्रोफेशन तक लिमिटेड हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। कभी कभी हम बच्चे की जो स्ट्रेंथ होती है ना उसको देख नहीं पाते, लेकिन उस स्ट्रेंथ से जुड़े कई नए करियर ऑप्शंस उनको एडवाइस कर सकते हैं किसी से सुन के, कहीं पे पढ़कर। इसीलिए परहैप्स पेरेंट्स और यंगस्टर्स दोनों को एक दूसरे से बात करना बड़ा जरूरी है। एक तरफ एक्सपीरियंस, दूसरी तरफ चेंजिंग वर्ल्ड की अवेयरनेस। इसीलिए बच्चे से सिर्फ ये मत पूछिए कि आप कौन सी डिग्री करोगे, या कभी ये भी पूछकर देखिए तुम किस चीज में जेन्युइनली अच्छे हो और उस स्किल को करियर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। डिग्री चूज करने में गाइड जरूर कीजिए, लेकिन स्किल डिस्कवर करने की उनको थोड़ी सी स्पेस भी देना बड़ा जरूरी है।

देखिए, आज एक स्टूडेंट के पास एडवांटेज है जो शायद प्रीवियस जनरेशन के पास इतनी इजीली अवेलेबल बिल्कुल नहीं थी, और वो है एक्सेस टू लर्निंग। आपके फोन पर कोर्सेज हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, पॉडकास्ट हैं और केस स्टडीज भी हैं। फोटोग्राफी सीखनी है तो पॉसिबल है, एक्सेल कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, रिसोर्सेज की कमी तो नहीं है, लेकिन एक कैच जरूर है यहाँ। देखो, कंटेंट कंज्यूम करना और स्किल डेवलप करना सेम चीज नहीं है। आपने गिटार बजाने के 50 ट्यूटोरियल्स देख लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गिटार प्ले करना आ गया, है ना? करियर स्किल्स के साथ भी एग्जैक्टली यही है। सिर्फ सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करते रहना और रेस में लगे रहना आपको क्या देगा? एक सर्टिफिकेट से ज्यादा पावरफुल वो प्रोजेक्ट है जिसे आप इंटरव्यू में खोल कर दिखा सकें। एम्प्लॉयर्स को बताइए कि आप क्या कर सकते हैं, आप कितने क्रिएटिव हैं। उसके बजाय आप उन्हें शो करिए समथिंग यू क्रिएटेड। बताइए नहीं कि यू कैन कोड, शो देम व्हाट यू बिल्ट। 100 वीडियोस देखने से बेटर है 10 देखो और फिर अपना कुछ बनाओ। लर्न, प्रैक्टिस, क्रिएट, इंप्रूव। देखो, फोन सिर्फ एंटरटेनमेंट का टूल नहीं है, सही यूज करेंगे तो करियर बिल्डिंग टूल भी बन सकता है ये।

0: क्या है बबई, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
2: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाले खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
1: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
2: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
1: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।

आप सुन रहे हैं अल्फा जन, वेलकम बैक आफ्टर द स्मॉल एड ब्रेक। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक है ज्योतिका, पर मुझे तो पता ही नहीं कि मैं किस चीज में गुड हूँ, तो क्या करें। देखिए, वो भी एकदम परफेक्टली ओके है। स्किल आसान से अनाउंसमेंट करके नहीं आती है कि अचानक आपने प्रे किया और आसमान से और टपक के नीचे आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ट्राई करने से डिस्कवर होती है। इंटर्नशिप कीजिए, कॉलेज सोसाइटी ज्वाइन कीजिए, इवेंट ऑर्गेनाइज कीजिए, राइट डिजाइन, सेल समथिंग, कुछ बेचिए, वॉलंटियर करिए, स्टेज पे जाके बातें करिए, बिल्ड समथिंग। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो चीज़ पहली बार ट्राई करके अच्छी ना लगे, ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें बुरे हैं। स्किल और इंटरेस्ट दोनों को डेवलप होने में टाइम लगता है। अपने आप को थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन दीजिए। हर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो, इट्स ओके, पर सक्सेस हो भी सकता है, है ना? समटाइम्स डिस्कवरिंग इज बेटर। ये मेरे लिए नहीं है कहना बहुत जल्दी हो जाता है। ऑब्जर्व कीजिए किस काम में आप नेचुरली क्यूरियस रहते हैं, किस काम के लिए लोग आपके पास आकर आपसे मदद मांगते हैं, किस काम को करते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता। इन छोटे छोटे क्लूज में कभी कभी आपकी स्ट्रेंथ छुपी होती है। करियर क्लैरिटी कभी कभी सोचते रहने से नहीं, डूइंग से आती है, करने से आती है।

देखिए, अब एक सवाल का आंसर देने का वक्त आ चुका है। डिग्री वर्सेस स्किल्स का विजेता कौन है? जी हाँ, हु इज द विनर, डिग्री या स्किल्स? देखिए, मेरे हिसाब से ये कंपटीशन होना ही नहीं चाहिए। डिग्री प्लस स्किल्स होना चाहिए। डिग्री गिव्स यू अ फाउंडेशन, स्किल्स मेक दैट फाउंडेशन यूजेबल, और प्रैक्टिकल एक्सपोजर उस स्किल को क्रेडिबिलिटी देता है। सो सपोज आप बीकॉम कर रहे हैं, डिग्री के साथ एक्सेल, फाइनेंशियल एनालिसिस या कम्युनिकेशन पर काम कीजिए। इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स ऐड कीजिए। मीडिया पढ़ रहे हैं तो पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए। मतलब बहुत ही सिंपल सी बात है, अपनी डिग्री के अराउंड एक स्किल का इकोसिस्टम क्रिएट कर लीजिए। हर 6 महीने में खुद से पूछिए, मेरी क्वालिफिकेशन तो सेम है लेकिन मेरी कैपेबिलिटी में क्या नया ऐड हुआ है? क्योंकि अल्टीमेटली सीवी में डिग्री तो एक लाइन हो गई लेकिन आपकी स्किल्स पूरी कॉन्वर्सेशन बन सकती है। तो अपनी डिग्री को छोटा मत समझिए और सिर्फ डिग्री के भरोसे भी मत बैठिए। क्वालिफिकेशन दरवाजा दिखा सकती है दोस्त, स्किल आपको उस दरवाजे के पार ले जाने में हेल्प करेगी।

और इसी के साथ वक्त आ गया है आज के अल्फा जन को रैप अप करने का। आज अगर इस पूरी कॉन्वर्सेशन से आप सिर्फ एक थॉट लेकर जाएं तो वो ये हो कि अपनी डिग्री पर प्राउड रहिए, लेकिन अपनी लर्निंग को डिग्री के साथ खत्म मत करिए। करियर एक सर्टिफिकेट नहीं है जो एक बार मिल गया तो काम खत्म। करियर इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अनलर्निंग एंड ग्रोइंग। और अगर आप अभी कॉलेज में हैं तो वेट मत कीजिए कि डिग्री कंप्लीट होगी तब करियर स्टार्ट होगा। आपका करियर प्रेपरेशन आज से ही स्टार्ट हो सकता है। एक स्किल चूज कर लीजिए, उस पर अगले 30 दिनों तक काम करें। एक प्रोजेक्ट बनाइए, किसी प्रोफेशनल से बात कीजिए, एक इंटर्नशिप एक्सप्लोर करिए। छोटा सा स्टेप बट टेक दैट स्टेप। हर कुछ महीनों में खुद से पूछिए, मैं आज क्या जानता हूं जो मैं पिछले 6 महीनों में नहीं जानता था। मैं अपने CV में सिर्फ एक और लाइन ऐड कर रहा हूं या एक्चुअली अपने अंदर एक नई कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहा हूं? क्योंकि दुनिया चेंज होगी, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, जॉब्स चेंज होंगी, लेकिन जिस इंसान ने सीखना शुरू कर दिया उसके लिए नए रास्ते हमेशा अपने आप खुलते रहेंगे। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योतिका, आपसे इजाजत लेती हूं। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग और अपने करियर की स्टेयरिंग किसी और के हाथ में मत दीजिए, अपने हाथ में रखिए। सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो। और जाते जाते एक गाना उन सभी ड्रीमर्स के नाम जो अपनी मंजिल की तरफ अभी भी चले जा रहे हैं।

नमस्कार, अब समय है एफएम मुख्य समाचारों का। संसद ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2025 पारित कर दिया है। आज राज्यसभा ने भी इसकी मंजूरी दे दी। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने स्पष्ट किया है कि उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निःशुल्क रहेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के संसद को सुचारू संचालन की अपील की है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्रनाथ महतो को तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया है। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम में जिले के सारंडा, कोल्हान और पुराहट वन विभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी है, चाहे उम्र का लिंग कुछ भी हो। महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मृत्यु हो गई और दो घायल हो गए हैं। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वीटायक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। ये थे रेनबो मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी
1: जी नमस्कार। हम सबकी वाणी मिलकर आकाशवाणी पर जरूर आती है, लेकिन उसे बल देता है, संबल देता है आपका साथ। मैं हूँ आकाशवाणी में 102.6, आप जानते हैं, आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी ओनली ऑन स्टेशनरी लाइट्स। और देखिए, जब सिटी की बात होती है तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे से साझा करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप भी आज फिर जानना चाहते होंगे, तारीख भी आपको बताई जाती है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी भाग दौड़ है ज़िंदगी में। 11 तारीख है आज ही, बिल्कुल 11 अगस्त 2026। वही हूँ आपकी गज़ब की गीतांजलि सोनी, शुरुआत कर चुके हैं आपके साथ मिलकर सिटी लाइट्स का, लेकिन सबको आने दीजिए, बहुत सारी बातें और करते हैं, सुनते रहिए है।

जी बिल्कुल, बहुत ही प्यार से, दुलार से हम सब एक दूसरे को मिलते हैं, और कितना अच्छा लगता है ना जब हम इतने टाइम बाद एक दूसरे से बात करते हैं। तो हमेशा कहती हूँ, हर बार मैं कहती हूँ कि मैसेजेस आपको बताए जाएं ना बताए जाएं, बट बाय डिफ़ॉल्ट आपको सब चीज़ें हमेशा पता होती हैं। मैसेज आप भेज रहे हैं हमेशा की तरह, लेकिन आप ये भी जानते हैं ना कि मैसेजेस पढ़ना आपके सारे वन टू वन ये सिटी लाइफ में पॉसिबल नहीं है। अभी जब बाद में मैसेज मसाला मिक्स आएगा तो उसमें ज़रूर पढ़े जाएंगे, लेकिन फिर भी आपका जो प्यार है, आपका जो सम्मान है सर माथे पर ऑलवेज, तो जो भी ऐसे मैसेजेस होंगे जो मुझे लगता है कि एज एन इन्फॉर्मेशन सबको बताने ज़रूरी हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, थोड़ी सी उसमें छानबीन करके मैं ज़रूर उसको बता दूँगी। अगर आप कहीं सोच रहे हैं कि आप वंचित रह गए हैं, आपके पास नंबर नहीं है, हालांकि इम्पॉसिबल है, तो आपको मैं बता देती हूँ, 9818107070 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इस पे अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। और इतना मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जब भी आप मैसेजेस भेजते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी बातें, रिक्वेस्ट आप भेजते हैं, तो मेरे ख्याल से आप सालों से आकाशवाणी से जुड़े हैं, तो आपको पता है कि जो रिक्वेस्ट बेस्ड शोज़ होते हैं ना, वो बहुत अलग होते हैं। इसलिए प्लीज़ कोई भी गुस्सा, गिला, नाराज़गी बिल्कुल मत कीजिएगा, बिकॉज़ फिर मुझे बुरा लगता है ना। हम लोग खुशियाँ बटोरने एक दूसरे के पास आते हैं, और अगर उसमें कहीं नाराज़गी हो जाती है तो बुरा लगता है। फिलहाल नाराज़ होने नहीं देंगे आपको। मौसम का हाल 29 डिग्री है भाई। कुछ लोग कह रहे थे कि बारिश और होनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं कम हो तो अच्छा है, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा मैं महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहती हूँ, सभी जानते हैं कि 15 अगस्त आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, और क्या बताऊँ, बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है हम सब के लिए। हर घर तिरंगा लहराता है, और लहराना भी चाहिए, हमारा गर्व है, हमारा सम्मान है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ, जब हम अपने घर पे तिरंगा फहराने की बात करते हैं, या फिर सोसाइटीज़ में तिरंगा फहराने की बात करते हैं, अपनी गाड़ी के ऊपर बड़े प्राउड से लगाते हैं, अपनी बालकनियों में, अपनी छतों पर अपने तिरंगे को लहराते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि देखिए ऐसा है ना, हम सभी जानते हैं कि जो तिरंगा है ना, ये खाली झंडा नहीं है, ये हमारे देश के प्रति हमारा समर्पण, हमारा प्यार, हमारा भाव, अलग अलग तरीके से हम जताते हैं उसको। लेकिन हम सबको पता होना चाहिए ये हमारी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारा जो तिरंगा है, हमारे सर का ताज है, और जब भी हम अपने तिरंगे को लेकर आगे बढ़ते हैं तो उसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना, सम्मान करना, ये हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। तो जितने भी यंगस्टर्स मुझे सुन रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जोश

आते हैं बिल्कुल, कि तिरंगा हाथों में लेके आगे बढ़ते हैं, अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर रखते हैं। लेकिन देखिए कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग, मैं आपकी लैंग्वेज में बोल दूँ, डूज और डोंट्स होते हैं, यानी कि हमें करनी चाहिए कुछ चीज़ें और कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और जो चीज़ हमें नहीं करनी है वो क्या है, हमें कैजुअली अपने तिरंगे का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि टी शर्ट्स के ऊपर लगा के, क्योंकि देखिए टी शर्ट्स को आप धोते हैं, ज़मीन में फेंकते हैं, सुखा देते हैं, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रखते ना चीज़ों की। तिरंगा जैसे हम अपने घर के बड़े का सम्मान करते हैं, उस तरीके से सम्मान से उसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो मैं ये ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जितने भी लोग तिरंगे को बहुत ही प्यार से अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ ये ज़रूर रखें ध्यान कि पहले तो हमारा जो झंडा है, हमारा तिरंगा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसको साफ़ सुथरे तरीके से लगाएं। अगर आप अपनी सोसाइटीज़ में उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप झंडा फहरा रहे हैं, तो कुछ नियम हैं, उनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारा तिरंगा होता है वो झुका हुआ या फिर डैमेज नहीं होना चाहिए, है ना, एकदम साफ सुथरा बड़े अच्छे ढंग से फहराना चाहिए। और हमेशा हम कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना, तिरंगा हमारा कई बार बहुत समय से हमारे पास पड़ा होता है, क्षतिग्रस्त भी हो सकता है, तो अगर क्षतिग्रस्त हो गया है, तिरंगा फट गया है या फिर किसी तरीके से उसमें कुछ लग गया है, तो आपको अगर तिरंगे को डिस्कार्ड भी करना है, आपको उसको विदाई भी देनी है, तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से देनी चाहिए। और इन सब के नियम हैं, कायदे हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप जितनी भी ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं उस पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर जल्दबाजी में कोई भी कदम ना उठाएं, होता है ना कि सारे लोग झंडा लेके जा रहे हैं, हम भी लेके जाएंगे, बस झंडे को आपने फहराया और फिर फंक्शन के बाद आप देखो चेयर के ऊपर पड़ा है, साइड में चढ़ा है, पड़ा है, पैरों के ऊपर पड़ा है, तो देखिए अपने तिरंगे का ऐसा तिरस्कार नहीं होना चाहिए। अगर तिरंगा क्षतिग्रस्त हो गया है तो अच्छे से सम्मान सहित एक गड्ढा खोदें, साफ जगह, उसको एक अच्छे साफ कपड़े पे लपेटें और फिर उसको आप गड्ढे के अंदर उसको समाधि की तरह उसको आप अच्छे से उन विराम दें, और फिर बहुत ही सम्मानजनक तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। और अगर आप और भी ज़्यादा अपने देश की भावना सबके साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप अपने तिरंगे के साथ एक सेल्फी लें, ये डिजिटल प्राइड हम इसे कहते हैं, उसको भी आप शो करें डिजिटल प्राइड को, और अपने जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑफिशियल पोर्टल्स हैं, उस पर अपनी पिक्चर्स अपलोड करें। तो जितने भी तरीके हैं रिस्पेक्टफुल तरीके से आप अपने झंडे को प्रदर्शित करें, रिस्पेक्ट फर्स्ट, और फिर आप उसकी पोजिशनिंग का ध्यान रखें, और अपने डिजिटल प्राइड को अपने सोशल मीडिया पे ज़रूर ज़रूर शोकेस करें, हम यही चाहते हैं। बाकी हमारे झंडे को लेकर तो बहुत बातें हो गई हैं, बहुत प्राउड से हम अपने देश में अपने झंडे को लहराते हैं, 15 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मिलजुल कर करना चाहते हैं ओनली ऑन सिटी लाइट्स। वो क्या क्या चीज़ें हैं आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी सिटी लाइट्स में आप जुड़ते हैं तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत सारी मस्ती भी होती है। तो ये जो बावलापन है हमारा चलता रहेगा, सुनते रहिए सिटी लाइट्स, आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी के साथ।

बावली होगी जी। जिसको नहीं पता बावली का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत, आप देखिए हमारी जो आकाशवाणी है ना, खासकर रेनबो, वो देश के कोने कोने तक जाता है। आप हमें बहुत अलग अलग स्टेट्स में सुनते हैं, और मज़ेदार बात क्या है ना, इतनी सारी डाइवर्स लैंग्वेजेस हम सुनते हैं, तो एक दूसरे की लैंग्वेज लर्न करना बहुत ज़रूरी है, इन इन टर्म्स ऑफ कि जब हम कोई गाने सुनते हैं या बात करते हैं तो समझ आना चाहिए ना कि किस कंटेक्स्ट में हो रहा है। तो बावली का मतलब होता है, थोड़ी सी क्रेजी हो गई मैं जी। सो इट्स सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। इसकी इसकी एक्चुअली अगर आप सुने ना वर्डिंग्स, तो चाहे मस्ती में गा रही हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है। खैर कोई बात नहीं, अभी के लिए इतना फिर से कहना चाहती हूँ आप सबको कि सावन के दिन तो शुरू हो गए हैं, सभी जानते हैं सावन चल रहे हैं। बहुत सारे जो लोग हैं व्रत रखते हैं सावन में, तो जिन्होंने रखे हैं तो बहुत ही केयरफुली अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अपने खाने पीने का ध्यान ज़रूर रखेंगे। क्योंकि पता है मैं क्यों जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, हम बहुत ही डिटेल में ये बातें ऑलरेडी कर चुके हैं, और कई लोग फिर पता है मुझे लिखते भी हैं इस पर मैसेज में कि आप ना बहुत ज़्यादा सिंसियरली कई बार ज्ञान दे देते हो, तो फिर मैं चाहती नहीं ना बोर हो जाए, उनको लगे ज्ञान दे रही हूँ, इसीलिए मैं आपको जल्दी जल्दी ये बता रही हूँ कि अगर फास्ट रखा है आपने तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, मेडिकेशंस को ध्यान में रखते हुए फास्ट रखें। और दूसरा, आज शिवरात्रि है, ख़ासकर उनके लिए जो कांवड़ लेके आ रहे हैं, ख़ासकर नोएडा से आपने देखा होगा ना बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो आज वो फाइनली गंगा जल अर्पित करेंगे अपने भोलेनाथ पे, तो बहुत बहुत ही खूबसूरत सेलिब्रेशन होने वाली है आज। तो इसीलिए अगर आपको कहीं पे भी कांवड़ दिखते हैं, कहीं भीड़ दिखती है, तो उनको जगह दें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। हालांकि ये सारी चीज़ें आपसे हज़ार बार हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी होता है ना, कई बार जल्दबाजी में होता है और हमें लगते हैं कि हमें ऐसी बातें, ऐसा लगता है कि हमारा भी तो समय है ना, हमें भी तो जल्दी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन ना करें, गाड़ियों की टी पी हॉर्न ये सब ना बजाएं, साइड दे दें, जाने दें। और कुछ फेस्टिविटीज़ हैं, उनका मज़ा सबको लेना चाहिए, रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। और ख़ास कर फिर से मैं बोलना चाहती हूँ कि अभी जो माहौल बना हुआ है ना, उसको इन्जॉय करना हम सबको ज़रूरी है, ज़रूर कीजिए। आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स ऑफ की अपनी गज़ब की गीतांजलि सोनी के साथ।

जी, रेनबो के साथ बहुत सारी बातें चलती रहती हैं. आपको पता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हम आज कैसे अपने अपनी सिटी में मनूवर कर सकते हैं इजीली, क्या क्या चीज़ें सुन सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर क्या कुछ हो रहा है. इट इज़ अबाउट कनेक्शन ऑल्सो ना, कि हमारा आपस में कैसा कनेक्शन अभी तक चल रहा है, हम लोग क्या करने वाले हैं आने वाले समय में, क्या नहीं करने वाले हैं. क्योंकि आप तो बाय डिफ़ॉल्ट शेयर करते रहते हैं मुझसे बहुत सारी बातें. जी जी बिल्कुल, मैं आपकी बातें बिल्कुल समझ रही हूँ. बहुत सारे लोगों ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है मुझे, और ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए, बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही हैं आसपास पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर, हमारी सोसाइटी कर रही है, उस बारे में भी बताएं. देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप देते हैं ना, मैं ज़रूर शेयर करती हूँ. लेकिन क्या होता है, कुछ बातें हमें रिकन्फर्म करनी पड़ती हैं. इतने बड़े मैसिव प्लेटफॉर्म पर जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं, डिटेल शेयर करते हैं, तो देखिए, ऐसे थोड़ा सा बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के तो नहीं कर सकते ना. तो मुझे टाइम दीजिए, मैं देखती हूँ इसमें से क्या क्या चीज़ें मैं सबको बता सकती हूँ. शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना. अच्छा, एक और मैं आपसे बात शेयर ये करना चाहती हूँ कि बिकॉज़ 15 अगस्त की बात चल रही है और बहुत सारी बातें एक दूसरे से हम शेयर करते हैं, उसमें ये भी करते हैं कि भाई, जब इतना मैसिव अरेंजमेंट होता है तो बहुत सारी चीज़ें मनूवर करनी पड़ती हैं, ट्रैफिक डाइवर्जन्स होते हैं, ख़ासकर जब जो भारी व्हीकल्स होते हैं ना, जिसे हम कहते हैं हैवी लोडर व्हीकल, जो बहुत भारी सामान लेके आते हैं, उनको काफ़ी समय के लिए थोड़ा सा मनूवर अच्छे से करना पड़ता है, डाइवर्ट करना पड़ता है. तो यही एक कारण है कि जितने भी हैवी व्हीकल्स जो गुरुग्राम, जिसको आप गुड़गांव प्यार से जानते हैं, या फिर दिल्ली की तरफ जाते हैं ना, तो उनको 15 अगस्त तक के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है. तो अगर आपकी कंपनी है या फिर आप अपना व्हीकल चलाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाइए, इन्फॉर्मेशन के साथ ट्रैवल कीजिएगा, अदरवाइज़ दिक्कत हो सकती है. और आप देखते हैं ना, कितने सारे हैवी व्हीकल साइड में लगे होते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि ट्रैफिक जाम की सिचुएशन बन जाती है. तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको देते ही रहेंगे, ओनली ऑन सिटी लाइन.

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: जी। जैसा हर बार मैं कहती हूँ, लगातार मैं कहती हूँ कि वाणी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब हम लोग एक दूसरे से ना जुड़े तो कैसे कनेक्शन मेंटेन होगा ना। तो देखिए, एक चीज़ और आपको मैं कहना चाहती हूँ फिर से कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें थोड़ी कंट्रोल मैनर में करनी पड़ेंगी। अभी जैसे बहुत सारे लोगों को बर्थडे विशेस चाहिए, एनिवर्सरी विशेस चाहिए। अच्छा, पता नहीं मेरे साथ ही होता है क्या, जैसे मैं स्टूडियो में आती हूँ और आप ये रिपीटेड रिक्वेस्ट करते हैं, ये जानबूझ के मुझे छेड़ते हैं क्या कि हाँ सिटी लाइट्स में बहुत ज़्यादा मैसेजेस नहीं पड़े जाते, तो कम से कम विशेस तो हों, ऐसा करते हैं मुझे लगता है। चलिए, सब आपका, आपके लिए सब कुछ ओके है ना। आपको जैसे कहते ना, आपको बस आपको अलाउड है ये सब चीज़ें और सबको नहीं होती हैं। तो भाई, जिनके आज बर्थडेज और एनिवर्सरीज हैं उनको मैं इतना कहना चाहती हूँ कि भाई थोड़ा सा वेट करें, सबको भी मिलने दें। अभी तो हाफ वे थ्रू हमारा शो निकला है, एक बार एंड में ना सबको इकट्ठे विशेस दे देंगे। धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं, फिर उनको बुरा लगता है, उनको थोड़ी पता होता है कि हमने पहले ही ऑलरेडी विशेस कर दिए हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा एक दूसरे के साथ ना हमें मिलके पेशेंस से डील करना पड़ता है। एंड पेशेंस की बात की है तो प्लीज़ सड़कों पर अपने पेशेंस का मुजाहिरा पूरा पूरा कीजिए। बहुत सारे रोड रेज के केसेस अभी भी आ रहे हैं। कितनी बार तो हम लोगों ने बातें की हैं, फिर भी सेम चीज़ें रहती हैं भाई। तो थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान ज़रूर रखें, गुस्सा ना हो। मुझे पता है कई बार चीज़ें आसान होती हैं कहनी, करनी बहुत मुश्किल होती हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ, एक सर्टन एज के बाद ना, सर्टन एज के बाद, अभी तो मुझे पता है कि जैसे हम अब हमें ऐसी फीलिंग आने लगी है, बड़े हो गए हैं, समझदारी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो यंगस्टर्स हैं, यंग ब्लड है, जेन ज़ीज़ हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ, जितने आप हमें एक्शन सिखा रहे हो ना कि क्रॉकेट, आप एक्शंस देख नहीं सकते, लेकिन मैं तो वर्ड सुन के हैरान हूँ भाई अपने जेन ज़ीज़ के, कि जैसे हम कुछ पहले बोलते थे ना, ओ आई अप्रिशिएटेड, देन दे वुड नॉट से, वो अपने हाथ से साइन करते हैं फिंगर से, क्रॉकेट क्रॉकेट, मतलब या वी रजिस्टर्ड इट, गुड जॉब भाई। हम प्लीज़, वी विल टेक टाइम टू गेट यूज टू ऑल योर एक्शंस। सो अगर आप कोई भी चीज़ें एक्शंस में बता रहे हैं वो हमें नहीं समझ आती हैं भाई, तो प्लीज़ थोड़ा सा रोड पे भी लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। आपके जो एक्शंस हैं वो कई लोग को नहीं समझ आ सकते, तो प्लीज़ मेंटेन द काम एंड कैरी फॉरवर्ड इन लाइफ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिलहाल आपको फिर से बताना ज़रूरी है, आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी के साथ, ओनली ऑन स्टेशन ओवर द नेशन।

भाई सब के जो चन है वो घर आने वाले हैं, शाम होने वाली है, और जिनके टोला कहंदे ने वो भी घर आने वाले ने। जितनी भी अच्छी वाइब्स है ना अपने घर की ऑन रखिए, अच्छे खाने बनाइए, अच्छे तरीके से वेलकम कीजिए। एंड इट्स नॉट अबाउट, अभी सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे, वाई चन्ना चन्नी क्यों नहीं हो सकती, गाना ऐसा था तो मैंने बोल दिया। मतलब दोनों के लिए है, हस्बैंड के लिए वाइफ, तो जेंडर वाली फाइट हम सिटी लाइफ में कभी करते नहीं है भाई, करना भी मत। अच्छा, मुझे मज़ा इसीलिए आता है बहुत, मैंने थोड़ी देर पहले ऐसे ही बोला ना कि समटाइम्स बिकॉज सिटी लाइफ से मुझे चीज़ें कई बार एक्सप्लेन करनी पड़ती है, तो लोगों को कई बार लगता है ओह ज्ञान टाइम अगेन। तो मुझे बड़ा अच्छा, सौरभ नेजा जी हैं, रेगुलर हमें काफ़ी मैसेजेस भेजते हैं, उन्होंने लिख के भेजा है कि भाई ज्ञान का ही तो शो है, तो ज्ञान तो देना बनता ही है।

आपका, और आप अपना बेस्ट करती हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग माई बैक. ये चीज़ें बड़ी आपको कॉन्फिडेंस भी देती हैं और अच्छा भी लगता है कि लोग इतने प्यार से ध्यान से सुनते हैं. और कुछ लोग तो हमारे साथ सदियों से जुड़े हुए हैं, सो दे नो द वाइब, एंड दिस इज द वाइब ऑफ सिटी लाइट्स. जी बिल्कुल, आपकी अपनी गज़ब की गीतांजलि सोनी के साथ यू आर हैविंग दिस वाइब ऑन सिटी लाइट्स. अच्छा, ये भी लोग जानना चाह रहे थे कि आपने ये तो बता दिया कि आज कांवड़ है, तो नोएडा से बहुत सारे आपको जो कांवड़ लेके आते हैं डेविटीज वो मिलेंगे, तो कौन से रास्ते अवॉइड करने हैं. देखिए, आज तो लास्ट डे है, 11 तारीख है, 5 तारीख से शुरू हुआ था. तो देखिए, अगर आप, मैंने ये भी काफ़ी खोजा, फिर मैंने कहा कौन से ऐसे एरियाज जो 100% आपको अवॉइड करने हैं. एक तो वो जो नजफगढ़ फिरनी रोड है, रोहतक रोड है, पंखा रोड है, और एक थी देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, देन नांगलोई नजफगढ़ रोड एंड आउटर रिंग रोड. ये तो आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए. एंड कोई ऑल्टरनेट रूट आपको जानने हैं, देन गूगल भैया से पूछ लीजिएगा. और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको स्मार्टली करनी ही पड़ेंगी. अच्छा, पता है, जब भी हम ट्रैफिक की बात करते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो बहुत पेटेंट होती है ना. हमेशा हम कहते हैं कि कुछ सेलिब्रेशंस हो रही हैं तो प्लीज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए. अगर एक 3-4 लोग एक ही जगह जा रहे हैं तो एक गाड़ी से चले जाइए, और कोशिश कीजिए जितना आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम्स जब बहुत सारी सेलिब्रेशंस ऑन होती हैं, तो सबके लिए बेहतर रहेगा. सड़कों पे कम कंजेशन होगी, लोगों को कम गुस्सा आएगा ट्रैफिक पे, और लड़ाई झगड़े कम होंगे, और समझदारी से काम करेंगे तो बल्ले बल्ले है. बस इतना मैं कहना चाहती हूँ. आप लोग अभी तक बने हुए हैं, आगे भी बने रहिएगा. 6 बजे तक मैं आपके साथ हूँ. अब फाइनली हम पेस पकड़ेंगे ना, बहुत सारी बातें करेंगे, और ओनली ऑन सिटी लाइट्स.

अम्मो, कितना हैप्पी सॉन्ग है ना, कितना मजा आता है. और जब भी ऐसे हैप्पी सॉन्ग्स प्ले होते हैं ना, तो मुझे लगता है कुछ तो ऐसी खुशखबरी अच्छी सी जिसमें एक वाइब हो, लोग इन्जॉय करें. बता दूं तो खासकर पूर्वांचल वालों के लिए एक खुशखबरी है. वो क्या है ना कि रेलवे गोरखपुर से दिल्ली और मुंबई के लिए ट्रेन चलाने जा रही है जी, और ये नवम्बर से स्टार्ट हो जाएंगी दोनों. तो क्या है कि दिल्ली और मुंबई ना, मुझे ऐसे लगता है कि दिल तो दिल्ली है ही और मुंबई जान है हमारे देश की, बिकॉज कर्म प्रधान लोग हैं, मुंबई में पहुंचते हैं और बहुत तरक्की भी करते हैं. दिल्ली लोगों को सपने देना सिखाती है और बहुत सारी उम्मीदें देती है. दूर दराज से लोग दिल्ली मुंबई आते हैं, और जब डायरेक्ट आपका कनेक्शन बन जाता है, ट्रेन्स डायरेक्टली पहुँचेंगी, तो लोगों को सुविधा कितनी होगी. तो दिल्ली और मुंबई बांद्रा के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस को मंजूरी मिल गई है, और नवंबर से ट्रेन्स शुरू होंगी, और इसकी जो रेल प्रशासन ने संचालन की तैयारियां शुरू कर दी हैं. तो देखिए, लोगों को सुन के एकदम से ना ऐसे ख्वाब रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, ऐसी फीलिंग आने लग गई होगी. होता है ना ऐसा. और देखिए, जितने भी ख्वाब आप देखते हैं ना, चाहे आप ख्वाब कहें, ख्वाब कहें, लोग तो प्रोनंसिएशन में फंस जाते हैं, लेकिन जो भी हैं तो ड्रीम्स, और जितने ड्रीम्स को आप क्लियरली ब्यूटीफुली देखोगे, तो उतना आप उनको एक्सेस कर पाओगे और आगे उनको रियलाइज़ भी कर पाओगे और जल्दी से पूरे भी कर पाओगे. तो लबो लबो आप क्या है ना, इतनी डिटेल्ड और इतनी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्वर्सेशन का कि भाई सपने पूरे करो देखो और पूरे करो, बहुत ज़रूरी है. और आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत सारी चीज़ें हम पूरी करने वाले हैं, और मेरी पिंक डायरी जी खुल गई है. आई एम योर एवरग्रीन असिस्टेंट. और आप जानते हैं ना मेरी डायरी क्या कहती है. मेरी डायरी ये कहती है कि अगर आज की तारीख में आपने कोई बिल जमा करना है और आप भूल गए हैं, मैं दोबारा याद दिला देती हूँ. 11 तारीख है जी आज 2026, और आज मंगलवार है, अच्छा वार है, शुभवार है. तो अगर आप कुछ मिस कर रहे हैं, कोई आपको बिल पे करना है, कोई रेंट पे करना है, अपना चार्ज करनी है, कोई आपको अपनी प्रिस्क्रिप्शन या फिर कुछ भी ऐसा काम है जिसमें आपको पेमेंट आज की डेडलाइन थी, बच्चों के स्कूल की फ़ीस थी, मोबाइल का बिल था, कोई अपने क्रेडिट कार्ड का बिल था, तो प्लीज़ पे कर दीजिएगा. और 11 तारीख से आपको और क्या क्या चीज़ें याद आ रही हैं, किसी की बर्थडे याद आ रही है, एनिवर्सरी याद आ रही है. कितनी बार मैंने आपको बताया ना, अगर भूल जाते हैं, कई बार होता है ना मिस हो जाता है, तो सरप्राइज कह के बोल दीजिए कि अरे मेरे तो दिमाग में था, मैं तो बस ऐसी सरप्राइज देने के लिए मैं देखना चाहता था या चाहती थी कि आप उम्मीद कर रहे हैं मुझसे कि मैं विश करूँगी या करूँगा, मतलब जनरल कुछ बात घुमा दो. क्योंकि देखिए, जब भी ख़ास दिन होता है ना, सब उसमें खुश रहने चाहिए. वैसे ही बहुत सारे काम हम लोग मोमेंट्स अपने लिए, अपने आप को अलाउ करते हैं खुश होने के लिए या फिर सेलिब्रेट करने के लिए. सो बर्थडेज, एनिवर्सरीज, दे मीन समथिंग टू पीपल एंड दे शुड बी सेलिब्रेटेड. सो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू लवली रेनबो फैमिली. जितने भी लोग हैं रेनबो फैमिली से जुड़े हुए या नहीं भी जुड़े हैं ना अभी तक, उन सभी को हमारी दिली दिली विशेज हैं. खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, और अपने एम की तरफ बढ़ते रहिए, और खूब इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ. और जिनकी एनिवर्सरीज हैं, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव कम सो फार. मुझे पता है आसान नहीं है, आसान नहीं है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को खुशी खुशी आगे लेके जाना, बट यू कैन ऑलवेज ट्राई. एंड काफ़ी सारी चीज़ें अगर आप मजाक में निकाल देना, सो लाइफ इज़ गोइंग टू बी मच मोर ईजी एंड हैप्पी. सो जस्ट हैव अ गुड गुड टाइम. एंड दिस इज़ योर ओन गज़ब की गीतांजलि सोनी.

घड़ी देख रही हूँ बार बार, समय होने वाला है, अभी है अभी हमारे पास गुड प्रैक्टिकली 8 मिनट्स, तो कहीं जाइएगा नहीं, जाने दूंगी ही नहीं। सुनिए ना सच अ रॉकिंग नंबर आई एम प्लेइंग।

पारी। भाई देखिए, हमारा तो शो मी हाउ टू पार्टी करने का तरीका सिर्फ इतना है कि आपको ऐसी ऐसी खबरें दें कि बस आपको लगे लाइफ पार्टी बन गई है। कितनी सारी अच्छी खबरें दे चुकी हूँ मैं, पूर्वांचल में ट्रेन्स का भी मैंने बता दिया और ये जो दिल्ली की मेट्रो रेड लाइन है ना, उनके लिए भी बता देती हूँ। भाई आप लोगों को भी एडिशनल स्टेशन मिल रहे हैं हरियाणा टू गाज़ियाबाद, और ये जो एक्सटेंडेड मेट्रो नेटवर्क हो रहा है ना हम सबके लिए, जितने भी लोग ट्रैवल करते हैं ऑन डेली बेसिस थ्रू मेट्रो, जो मेरे हिसाब से सर्टिफाइड मैं आपको बता रही हूँ वन ऑफ द बेस्ट ट्रैवलिंग सॉल्यूशन है हम सबके लिए। कितनी बार मैंने अपनी स्टोरी आपसे शेयर की है ना कि मैं पहले बहुत घबराती थी जब शुरू शुरू में मेट्रो आई थी। इतना कंफर्ट होता है आपको अपनी गाड़ी का, सारा गाड़ी इज़ योर नेक्स्ट होम, मतलब ऐसा लगता है सारा सामान अपना गाड़ी में है। हम लोग को तो काफ़ी सारी म्यूजिकल चीज़ें कैरी करनी होती हैं, तो मुझे लगता था ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन जब तीन तीन घंटे जाम में फंसना शुरू किया ना जनाब, तो पूरी थिंकिंग बदल गई। और थैंकफुली अभी मुझे मेट्रो से ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। अगर वन टू वन डेस्टिनेशन है, हाँ मल्टीपल डेस्टिनेशन होती हैं तो मुझे थोड़ा डिफरेंट डिसीजन लेना पड़ता है, बट बाय एंड लार्ज देयर इज नथिंग लाइक मेट्रो। सो फाइनली फाइनल ज्ञान फॉर दिस इवनिंग, जैसे मैं कहती हूँ ना कि खुश रखिए, खुश रहिए, और अपने देश के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने लिए अगर कुछ करना चाहते हैं ना, तो जस्ट इतना कीजिए कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारा संविधान हमें अलाउ नहीं करता ना, वो ना कीजिए। चाहे वो फिर वो पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई बात हो, ट्रैफिक रूल का पालन करना हो, जैसे मैंने अपने तिरंगे का सम्मान करना बताया आपको, उसके बारे में आपको कैसे आगे बढ़ना है, जानकारियाँ और लेनी है, चीज़ों को कैसे आपने अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है, बस उतना कीजिए। बाकी आप खुश रहेंगे तो सबको खुश रख पाएंगे। फिलहाल आपको खुश रखते हुए मुझे जाते जाते भी बहुत ही रॉकिंग गाना आपके लिए बजाना पड़ेगा। अपनी गज़ब की गीतांजलि सोनी को अभी दे दीजिए इजाज़त, जल्दी मुलाकात करेंगे आपसे। जाऊं जाने तो जाने दो गाना याद आ गया ना, मुझे जाना है, लेकिन ये गाना भी नहीं प्ले कर रही। प्ले तो बहुत ही अमेजिंग गाना आपके लिए कर रही हूं, बस एक बार फिर कहना चाहती हूं जल्दी मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए जितनी बातें कही है ना, बस फॉलो दैट, और 15 अगस्त को खूबसूरती से, प्राउड से, खुशहाली से, इमेंस तरीके से मनाएं। जय हिंद, जय भारत।

नमस्कार, पूरे 6 बज चुके हैं। पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत ने दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी दे दी। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद के सुचारू संचालन की अपील की है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती किया है। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारिंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और कई पूर्व अधिकारियों को सीरियाई अदालत ने मानवता के खिलाफ अपराध सुनियोजित हत्या और यातना सहित कई अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है। पाकिस्तान सरकार के प्रायोजित आतंक को सबके सामने लाने के लिए पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्राइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। तो ये थे एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ, यानी आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ दोस्तों, पूरे 6:02 हो गए हैं और पूरे 43 सेकंड भी हो गए हैं। आपका अपना प्रोग्राम, जी हाँ, मैसेज मसाला मिक्स लेकर आ गई हूँ मैं आपके साथ। आपकी अपनी कौन, एमरीन, दिल की बातें होंगी अपनी, कुछ ऐसी बातें खास हम लोग करेंगे, खास बातें जो बहुत दिल कर रहा था कि सुबह से हम लोग कुछ शेयर करें, कुछ बातें करें, कुछ दिल का बोझ जो है हल्का करें। तो बस दिल का जो बोझ है ना, अब फिलहाल हल्का करना है, इसलिए क्योंकि अब इवनिंग हो गई है, थोड़ा सा रिलैक्स जो है वो करने का मन करता है। तो बस ऐसी बातें करेंगे जिससे दिल और दिमाग दोनों सुकून में आ जाए। गाने ऐसे प्ले करेंगे, गाने ऐसे इंजॉय करेंगे कि बस अच्छा अच्छा अच्छा लगता रहे, क्योंकि मौसम भी थोड़ा अच्छा हो रहा है, बातें भी अच्छी होंगी और कुछ बातें ऐसी मैं पूछूंगी भी कि जिससे और कोशिश होगा कि जो समा है, ये जो मूड है, और भी जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाए। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक के साथ। लेकिन जल्दी से बताएं कि कैसे हैं आप सब, फटाफट 9868107070 पर अपना हाल तो बयान करें ताकि एमरीन के भी दिल को सुकून मिल जाए। सुनते रहें आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

है, इतना प्यारा गाना सुनकर तो मजा आ गया ना। क्या टाइम हो रहा है, 6:09 और पूरे 27 सेकंड हो गए हैं। आप सुन रहे हैं FM रेनबो दिल से दिल तक, और विजेंद्रा का भी मैसेज आ गया, कह रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं हम शो को, मजा आ गया। बस हमारे उधर ना बारिश नहीं हो रही है, ओए होए बारिश नहीं हो रही है। चलिए जी, दुआ करते हैं आपके लिए भी कि आपका भी दिल कर रहा है वहाँ बारिश हो जाए और सुकून मिल जाए। तो बस दुआ करना हमारा काम है और उसको कबूल करना ऊपर वाले का काम है। चलिए आकाशवाणी FM रेनबो सुनते रहें और प्रोग्राम का मजा लेते रहें और दिल की जो बात ना वो भी कहते रहे। और अनिल शर्मा का भी मैसेज आ गया है, कहते हैं हम तो हर दिन एक जैसे हैं, आज भी हैं, अच्छी बात है ना, काम की थकान। चलिए अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात आपने लिखी है कि हम एक जैसे, और एक जैसे भी अगर हम सब चलते रहे ना बढ़िया, तो वो भी अच्छा ही रहता है, अच्छी बात है। और क्या लिखा है, हमने तो थकान को कौन से ईयर में छोड़ दिया, मतलब एक ईयर में छोड़ दिया है। कैसे छोड़ दिया ये भी बता दीजिए ज़रा, ताकि मुझे पता चल जाए कि इसलिए आपने ऐसे ऐसे करके आपने थकान को जो है ना वो दूर कर दिया है। और ये मैसेज सबके आ रहे हैं, लेकिन अभी दिल्ली में बारिश चालू है या बंद है ये बताएं। ओहो, उमरी का मैसेज आया है, यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ पर सुबह में हो रही है, कभी कभी दोपहर में हो रही है, कभी शाम में हो रही है, हमने बता दिया, अब आप भी बता दो, पूछा तो ऐसे ज़रा बताएं यहाँ से। अरे हाँ, दिल्ली के मौसम का हाल चाल तो आप वैसे भी पता कर सकते हैं, न्यूज़ देखिए पता चल जाएगा, लेकिन अभी तो आपने मुझसे पूछा है ना, तो बस मैंने बिल्कुल ऑनेस्टली बता दिया, बारिश हो रही है यहाँ पर, हो रही है, रुक रही है, मौसम बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर। दीपक का भी मैसेज आ चुका है बिजनौर से, लिखा है मेरे बेटे का जन्मदिन है। ओके दीपा, बेटे का क्या नाम है ये तो बताओ, और सारे विशेष लेते रहेंगे वैसे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हमेशा खुश रहें आपका बेटा, हमेशा हमेशा आप उसकी तरक्की देखें, यही जो है ना हम सब की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं। और आप तो जो दे रही होंगी वो तो लाइव लग रही होगी, अच्छी बात है। और ये किसके मैसेज हैं, जल्दी जल्दी जल्दी फटाफट लेते हैं, फिर मुझे कुछ पूछना भी है। पंकज का भी मैसेज आ चुका है, कहते हैं कि प्रोग्राम जो है मैं सुन रहा हूँ और मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, मैसेज जब आने लगते हैं ना तो मैं भी अच्छी होने लगती हूँ।

एमरीन हम भी ठीक हैं, सोनू का मैसेज है बिजनौर से, क्या बात है। आहा, राजकुमार का भी मैसेज आ चुका है, कहते हैं वेलकम जी, वेलकम, लिखा है कि आप भी बहुत अच्छे होंगे, ऐसा ऐसी मैं उम्मीद करूँ। बिल्कुल सही उम्मीद की आपने, बिल्कुल सही, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं भी ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आप भी अच्छे होंगे, सही कहा है ना। राजकुमार जी, जब सबके मैसेज आते हैं और जब आप लोग ये कहते हैं ना कि उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और मज़ा आ रहा है प्रोग्राम में, तो बस दिल जो है ना इसलिए खुश हो जाता है, लगता है कि सामने बैठे हैं और बातें जो है ना आमने सामने चल रही हैं, है ना भुवनेश, सही कहा ना मैंने, बताओ मैसेज में लिखोगे भुवनेश कि हाँ एमरीन आपने सही कहा है, बिल्कुल बढ़िया है और मैं भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ, अच्छा लग रहा है आप सबके मैसेज देखकर, मज़ा आ रहा है। और भी बहुत सारे मैसेज आए हैं लेकिन सब लेंगे, सारे मैसेज लेंगे। गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम वेलकम, देखिए कह रहे हैं अगर नहीं लगा तो शिकायतें नहीं होनी चाहिए, शिकायतें नहीं होनी चाहिए। ये भी मैसेज आ गया है किसका, सोनू का और राजपाल का, काजल का, मानवी का भी मैसेज आ चुका है, बलवीर का भी मैसेज आ चुका है, और भी बहुत सारे मैसेज आए जा रहे हैं। ये मैं प्रगति, प्रगति राज का मैसेज आ चुका है, बहुत बड़ा मैसेज लिखा है, आप कैसी हैं, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, अच्छी हूँ। अब फिलहाल मैं अब जो पूछने जा रही हूँ ना, अब उस पर भी बात शुरू करते हैं। सुदर्शन मुक्ति जी, अनीता मुक्ति जी, आप कैसे हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास। देखिए फटाफट ले लेती हूँ मैसेज, लेकिन शिकायतें नहीं होनी चाहिए, शिकवे नहीं होने चाहिए, कुछ भी दिल में नहीं रह जाना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। और आनंद विहार से ना किशन का मैसेज आ चुका है और नीलम स्वाति का भी मैसेज आ चुका है। अब मुझे आप सब ये बताएं, सबके हाल चाल तो मुझे भी पता चल गया, मेरा हाल चाल भी आपको पता चल गया है, हाल भी बिल्कुल बढ़िया है। आगे आप समझ गए होंगे, ये बताएं शॉपिंग का तो सबको शौक है, किसको नहीं होगा, किसको नहीं होगा। वैसे कुछ कुछ होते हैं जिनको शॉपिंग का बिल्कुल शौक नहीं होता, चलिए फिलहाल हम उन लोगों की बात नहीं करें जिनको शॉपिंग का शौक नहीं होता है, हम उन लोगों की बात करें जिनको शॉपिंग का शौक होता है। तो ये बताएं कि आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग भी हो गई है, बस घर बैठे मोबाइल लिया, देखा पसंद आया, ऑर्डर किया, चीज़ आ गई। और कुछ शॉपिंग अपनी ये भी है कि जो आज भी मज़ा आता है कि भाई मार्केट जाएंगे, मज़ा मतलब खूब इंजॉय करेंगे, थोड़ा गोलगप्पे वगैरह भी खा लेंगे और साथ में बातें बातें चैटिंग वेटिंग करते हुए और अपना पूरा दिन इंजॉय करते हुए फिर घर आएंगे। तो मुझे आपको ये बताना है, बल्कि मुझे तो जो बताना है वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन आपको ये बताना है कि आपको कौन सी शॉपिंग में मज़ा आता है, घर बैठे बिठाए कि बस फ़ोन उठाया और जल्दी से देखा ऑर्डर बुक किया। अब मुझे ना आप बहुत छोटा छोटा आंसर देंगे, छोटी छोटी बात में, ये नहीं कि उससे ये हो जाता है, उससे ऐसा हो जाता है, हमारा टाइम बच जाता है, नो, आपको सिर्फ बताना है कि हमें घर पर ही बैठ के ना शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मोबाइल लिया, हमने देखा, साइट्स निकाली और जो बुक करना है वो कर लिया। और जिन्हें मार्केट जाके शॉपिंग करना बहुत पसंद है तो वो मार्केट का बताएंगे कि हमें तो मार्केट जाके, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट अपने मैसेज भेजना शुरू कर दें और शिकायतें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर जिसका मैसेज बड़ा होगा तो पढ़ने में ना फिर वो होता है कि पढ़ तो जाते हैं लेकिन और मैसेज रह जाते हैं। 9868107070 पर एमरीन इंतजार कर रही है आपके मैसेज का। हाय, ये वाला गाना ना वैसे है तो थोड़ा सा सैड लेकिन बहुत दिन हो गए, बड़ा इमोशनल सॉन्ग है वो वाला गाना ना, सौ दर्द है, हाय हाय, बहुत प्यारा गाना है, सुनते रहे आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक।

6:20 और 25 सेकंड हो गए हैं। दर्द हैं तो राहतें भी हैं, गम हैं तो खुशियां भी हैं, सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं हो सकती कि सिर्फ एक ही है, इसलिए हर चीज़ को जो है उसका सामना करना आना चाहिए। गम है तो उसको सामना करना है, खुशियां हैं तो उसको इंजॉय करना है। सुनते रहें आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक। और बहुत सारे मैसेज आ गए हैं शॉपिंग के नाम पर, बस ये देखिए दिमाग और जुबान कैसे ज़बरदस्त चल रहे हैं। दिल तो साइड पर हो गया है, लिखा है कि मुझे तो बाजार जाकर शॉपिंग करना बहुत पसंद है। किसको बहुत पसंद है ये तो बताओ? प्रगति, प्रगति को बहुत पसंद है शॉपिंग, मतलब मार्केट में जाकर। क्यों? क्योंकि इससे जो होता है ना, जरा बाहर की रौनक और गोलगप्पे चाट वाट खाने को मिल जाते हैं। आए हाय, क्या गोलगप्पों का नाम ले लिया इस मौसम में, दिल करने लगा मेरा भी। कोई बात नहीं, अभी तो फिलहाल बात चल रही है ना कि शॉपिंग कौन सी अच्छी लगती है, ऑनलाइन या मार्केट जाकर। तो इन्हें तो भाई मार्केट जाकर अच्छा लगता है, क्योंकि ये साथ में ना इंजॉय भी करना चाहती हैं। अच्छी बात है, गुड गुड गुड। और नरेंद्र सोनी का भी मैसेज आ चुका है, कहते हैं कि हमें तो मार्केट जाकर ही बहुत मजा आता है। सबसे अच्छी बात मुझे आप सबकी इस टाइम ये लग रही है कि जैसे मैंने कहा था कि मैसेज जो है ना, जो

है आपका, बहुत शॉर्ट में होना चाहिए, मार्केट या ऑनलाइन, पूरा डिटेल नहीं, नहीं तो मैसेज रह जाते हैं। तो ये अच्छा काम कर रहे हैं आप, जल्दी जल्दी बता रहे हैं। और ये किसका मैसेज आया है, लिखा है कि शॉपिंग करना सबसे आसान काम, अच्छा, मेंस के लिए होता है। वैसे मैंने ये नहीं पूछा था कि आसान काम किसके लिए होता है, लेडीज़ के लिए होता है। राकेश वोरा, मैं आपकी बात कर रही हूँ। आपने लिखा है कि बस जो पसंद आता है मेंस तो खरीद लेते हैं, फीमेल्स को 100 बार चीज़ सोचनी है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सोच रहे होंगे, अच्छा, मतलब फीमेल्स की जो है हिमायत हो रही है, ऐसा नहीं है। पहले होता था, मैं मान सकती हूँ, लेकिन अब तो हर किसी के पास टाइम बहुत शॉर्ट शॉर्ट है। लेकिन फिर भी हाँ, कोई कोई ऐसा, मतलब किसी किसी का दिल होता है कि 100 बार भी चीज़ देखी, घर आकर फिर यही कहती हैं, ये इनका कहना है कि नहीं वो वाले अच्छा था। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा, मैंने जो पूछा था ना राकेश, ये पूछा था कि शॉपिंग आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब आप ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करना पसंद करते हैं, अच्छा लगता है, या फिर मार्केट जाकर शॉपिंग करना आपको पसंद है, इसका जवाब दीजिए ना मुझे जल्दी से। और अनिल शर्मा का भी मैसेज आ चुका है। ओह अनिल जी, जो आपने लिखा है सर आंखों पर, जो बात आपने, जो पहली बात का जवाब दिया, अब आप अनिल जी समझ गए होंगे ना मैं क्या कह रही हूँ, ये अनिल जी और मेरे बीच की बात है इसलिए वो समझ गए होंगे, आप बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं। और इन्होंने कहा है, अनिल जी ने, ऑनलाइन शॉपिंग जो है सस्ता घर बैठे अच्छा लगता है। अच्छा, घर बैठे अच्छी लगती है क्योंकि वैरायटी ज्यादा और सारे ब्रांड्स जो हैं वो बड़े सस्ते मिलते हैं, इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो अनिल शर्मा जी को अच्छी लगती है। हर किसी का अपना अपना एक है। अभी तक मार्केट वाला आ रहा था कि मार्केट जाकर अच्छा लगता है, लेकिन अनिल शर्मा जी को घर बैठे बिठाए शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। पहले कहाँ थी ये सब चीज़ें, अभी तो बहुत इजी इजी इजी हमारे लिए सारी चीज़ें होती जा रही हैं। और ये मैसेज है सोनू का, कहते हैं हमें तो फेस टू फेस, अच्छा, मतलब सामान सामने देखना है, सब पूरी परख करनी है उसकी, और तब सामान देख कर खरीदते हैं, तब मज़ा आता है, और ऑनलाइन शॉपिंग से बहुत दूर है। कोई बात नहीं, हर किसी का अपना अपना दिल होता है सोनू। और FM रेनबो सुन रहे हैं बसंत कुमार जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो मुझे और भी तब लगेगा जब ये बताओगे बसंत की शॉपिंग करना तो तुम्हें पसंद है, लेकिन कौन सी शॉपिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, मार्केट जाकर खूब मज़ा करते हो शॉपिंग का, या टाइम नहीं होता तो, या वैसे भी आपका अपना शौक भी कि घर में ऑनलाइन शॉपिंग आपको मज़ा आता है कि फ़ोन उठाया बस शॉपिंग करनी शुरू कर दी। जल्दी से बताइए मुझे, फटाफट इंतज़ार कर रही हूँ मैं। और ये पंकज का मैसेज आ चुका है, कहते हैं कि मार्केट जाकर शॉपिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हमेशा दुकान पर जाके ही मैं सामान खरीदारी जो है वो करता हूँ। अच्छी बात है पंकज, ऐसे भी होना चाहिए भाई, हर किसी का अपना चॉइस है। मार्केट जाते हैं, मार्केट की रौनक भी देखते हैं, है ना, ये भी बात है। और मोनीश इदरीसी का मैसेज आ चुका है, मुझको तो मार्केट में जाकर खरीदना सही लगता है, सही लगता है, सही से ले लो। अच्छा, सही से ले लो मतलब अच्छे से ले लो, यही कहना चाह रहे हैं ना। अच्छी बात है, मार्केट जाकर, सबको ज़्यादातर मार्केट जाकर शॉपिंग करना अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है इसके पीछे रीज़न यही है कि खाना पीना खूब इंजॉय करना है ना, लेकिन गर्मी में बताइए। चलिए खैर, अभी तो मैं उसकी बात नहीं करी कि गर्मी में बताइए सर्दी में बताइए, अभी तो सिर्फ ये बात चल रही है कि पसंद क्या है। पसंद ये है कि शॉपिंग घर जाकर, मतलब घर में बैठकर, या फिर मार्केट में जाकर। और ये सब कुछ ऑनलाइन ठीक नहीं होता है, दीपा कह रही हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, दीपा कह रही हैं, हर सब कुछ ऑनलाइन ठीक नहीं होता है, घर की ज़रूरत जो के अकॉर्डिंगली हमें, हम मार्केट जाते हैं और फिर सामान देखभाल के जो है ख़रीदते हैं। और क्या लिखा है, रौनक और माहौल का भी एहसास होता है, क्या बात है, मतलब मार्केट जाके इन्हें रौनक जो फील करती हैं और जो माहौल देखती हैं वो इन्हें जो है ना दीपा को बहुत अच्छा लगता है। अच्छी बात है, थोड़ा सा घर से भी निकलना हो जाता है, आउटिंग भी हो जाती है, फ्रेंड्स का या अपने कलीग्स का या फिर अपने रिलेटिव्स जो भी हैं उनका साथ भी हो जाता है, बातें भी हो जाती हैं, सारे मज़े हो जाते हैं, है ना, सही कहा आपने। और ये मैं आपसे, अच्छा अक्षय कुमार, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग बहुत पसंद है, अक्षय का मैसेज है, अक्षय कुमार का मैसेज है, कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है, मैंने अभी अभी कुछ ऑर्डर भी कर दिया। क्या ऑर्डर किया है ये बताओ। चलिए अच्छी बात है, शॉपिंग इनको ऑनलाइन अच्छी लगती है और इन्होंने फटाफट ऑर्डर भी कर दिया है, गुड गुड गुड। हमें तो चीप एंड बेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की शॉपिंग करना अच्छा लगता है, मतलब दोनों ही, मतलब मार्केट जाके भी जब मार्केट का मन करता है मार्केट चले जाते हैं, और जब टाइम नहीं होता है तो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। अच्छी बात है, दोनों, वैसे तो आजकल सब लोग ऐसे भी करते हैं, लेकिन ये तो पसंद और नापसंद की चीज़ चल रही है,
मतलब ज़्यादा कौन सा अच्छा लगता है? ज़्यादातर लोग मार्केट जाने में जो है ना वो यकीन रख रहे हैं, मतलब मज़ा साथ में, मज़ा फन इंजॉय सब होना चाहिए। और भी जल्दी जल्दी मैसेज भेजिए, वैसे और भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, इंतज़ार कर रही है अमरीन आपके मैसेज का। ऑनलाइन शॉपिंग या फिर मार्केट जाकर रौनक देख कर गोलगप्पे खा कर शॉपिंग पसंद है? 9868107070 पर इंतज़ार कर रही है अमरीन। मैसेज मसाला मिक्स प्रोग्राम आपका अपना। राजा को रानी से प्यार हो गया, दिल भी बहुत बेकरार हो गया, कहीं मजा आए, हमारे साथ रहें। FM रेनबो, दिल से दिल तक सुनते रहें।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

आकाशवाणी रेनबो रेनबो और आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला में एक सैमरीन के साथ। और आपकी बात है, आपकी शॉपिंग, शॉपिंग में जो सामान है वो तो मेरे पास नहीं है लेकिन शॉपिंग की बातें जरूर मुझे पता चल रही हैं, मज़ा आ रहा है। ये देहरादून से मैसेज है, किसका है, आलोक का मैसेज है, मिनी का मैसेज है, कह रहे हैं कि हमें तो जहाँ मार्केट जाकर शॉपिंग करते हैं और जो वो जो मोल भाव करते हैं ना, अरे इतने का, अरे इतना लगा लो, ये बहुत अच्छा लगता है। इससे जो दुकानदार के चेहरे के भाव देखने वाले होते हैं, अच्छा मतलब ऐसी भी शॉपिंग मजा आता है कि जो दुकानदार के भाव हैं, जो फेस एक्सप्रेशन है वो देखकर भी इत्मीनान लेते हैं आप। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। मतलब ये वाली बात तो मैंने पहली बार सुनी है, अच्छा लग रहा है सुन के कि एक्सप्रेशन देखने में भी मजे आते हैं। और कन्हैया लाल का मैसेज है, कहते हैं कि हमें तो मार्केट जाकर शॉपिंग करने का बहुत शौक है, अच्छा है, मतलब और पता भी, मतलब सारी चीज़ें चल जाती हैं, गुड गुड, सबको मज़ा आ रहा है। मतलब मार्केट जाकर, घर में रहकर बहुत ही कम लोग आए हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग के दीवाने हैं। और ये गुड्डू का मैसेज है उज्जैन से, कहते हैं कि दोनों तरह की शॉपिंग पसंद है पर ज़्यादा जो है वो मार्केट जाकर, हाँ ज़्यादा मार्केट जाकर है, लेकिन कभी कभी जो है वो मतलब जब वक्त नहीं होता होगा तो आप गुड्डू मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते होंगे, है ना, मुझे ऐसे ही लग रहा है। और ये मैसेज है किसका, भुवनेश का मैसेज है, इन्होंने लिखा है मार्केट, सबका मार्केट मार्केट मार्केट जाकर और साथ में इंजॉय भी हो जाता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि हम लोग जो है ना कोशिश करते हैं कि कहीं पर भी जाएं आएं तो इंजॉय और फन साथ में हो, ताकि लगे कि अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं तो उसमें भी खूब मज़ा आ जाए। कहीं वैसे घूमने जा रहे हैं, घूमने तो खैर घूमना ही होता है, लेकिन मेन अब शॉपिंग का हो गया। पहले तो शॉपिंग मार्केट में ही होती थी, मार्केट जाकर ही होती थी, लेकिन अब जो है हमारे पास दूसरा विकल्प आ गया है ना ऑनलाइन शॉपिंग का, घर में भी बैठ कर आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। तो चलो भुवनेश, तुम्हें भी जो है मार्केट जाकर शॉपिंग अच्छी लगती है, मज़ा आया सुनकर। और इन्हें तो मॉल में जाके पसंद है शॉपिंग करना, किसको, सनी कपूर को, अच्छा जी। तो मतलब यही बात हुई कि बाहर जाकर ही अच्छा लगता है ना, घर में बैठे वाली जो शॉपिंग है वो पसंद नहीं आ रही है। और अगर अभी कह दूं ना मैं कि जो है ना ऑनलाइन शॉपिंग में ना ये सेल चल रही है, ये डिस्काउंट चल रहा है, देखो कोई मार्केट नहीं जाएगा, सब ऑनलाइन शॉपिंग पर लग जाएंगे। खैर अभी तो मजाक की बात है, ये तो अपनी अपनी पसंद है। और ये मैसेज किसका आ गया है, मिसेज धर्म भाटिया का मैसेज है, कहते हैं खुद जाकर शॉपिंग करना हमें अच्छा लगता है, तैयार होकर जाओ, क्या बात है, अच्छा जी। और आउटिंग भी हो जाती है, अपने मनपसंद की एक दो चीज़ें और खरीद लेते हैं, अच्छा हाँ ये बात तो है। मार्केट जाने पर कई सारी चीज़ें दिखती हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि ये चीज़ नहीं खरीदनी, चलो कोई नहीं खरीद लेते हैं, ये भी खरीद लेते हैं, सस्ती मिलती है ले लेते हैं, होता है होता है। लेकिन ऑनलाइन में नहीं, ऑनलाइन में तो लगता है कि हाँ ये अरे ये सही है, ये अच्छा है, इसको जो है मंगवा लो। सब जगह फ़ायदा नुकसान सब है, लेकिन हाँ ये जो मार्केट वाला है ना, ये ज़रा अभी ज़्यादा चल रहा है, इसकी वोटिंग ज़रा ज़्यादा हो रही है, कोई बात नहीं, देखते हैं अभी और कितना होता है। और ये मैसेज है लिखा है आधा फारूक अली का मैसेज है, फारूक अली फैजी और फराज फरहीन और फरहान फारिया ताहिरा, हम भी सुन रहे हैं, सुन तो रहे हैं, लेकिन आपने ना मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने ये पूछा था ना कि बताइए शॉपिंग कौन सी आपको अच्छी लगती है, कौन सी ज़्यादा करते हैं आप, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मार्केट जाकर करते हैं, आपने तो इसका जवाब ही नहीं दिया, तो इसका भी तो जवाब दो ना, इंतज़ार कर रही है अमरीन, फटाफट फटाफट। और प्रमोद कहते हैं नहीं नहीं ये प्रमोद का ही मैसेज है, इन्होंने लिखा है कि इनको तो ऑनलाइन क्या नहीं समझ में आ रहा, अच्छा मार्केट जाके कपड़े खरीदना, अच्छा मार्केट जाके इन्हें जो है ना शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, साथ में खाना पीना भी हो जाता है, खाना पीना भी हो जाता है, गॉसिप्स भी हो जाती हैं, बातें भी हो जाती हैं, दो तीन वैरायटी और चीज़ों की भी खरीद लेते हैं, क्या बात है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट जाकर। मार्केट जाकर लिखा है किसने, भेरूलाल का मैसेज है।

मान खुद देख लेते हैं, खुद महसूस करते हैं, देखते हैं, चीज़ की परख हो जाती है। ये जो चीज़ें हैं बहुत सही है, मतलब अच्छा लगता है। ऑनलाइन ख़रीदारी से सामान की, अच्छा, सामान के बारे में ज़्यादा नहीं पता चल पाता, कई बार चीज़ें जो है बहुत बेकार आ जाती हैं। वो सब चीज़ें होती हैं, कई बार हम मार्केट से भी लेकर आते हैं, कई जब घर पर आते हैं देखते हैं उसकी क्वालिटी, वहाँ मतलब देखते खुद ही हैं, लेकिन कई बार होता है कि नहीं इसको वापस कर दो, इसमें ये चीज़ हो रहा है, वो चीज़ हो रहा है, हर चीज़ वो चलती है। लेकिन यहाँ तो पसंद की बात है कि पसंद क्या है, आपकी पसंद जो है वो ज़्यादातर मार्केट जाकर है, तो ये भी अच्छी बात है कि मार्केट जाकर आपको पसंद है। ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी है, किसका, ललित का कहना है ऐसे, बर्थडे हो या मैरिज और जो भी हो, फटाफट ऑर्डर करो, कपड़े या कुछ भी हो, अगर कुछ सही समझ में नहीं आए तो रिप्लेस कर दो। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ गई, पैसे भी बच गए, आने जाने का वो भी बच गया। क्या बात है, क्या बात है, कितना सोचते हैं ना हम सब। अच्छी बात है, सोचना बहुत ज़रूरी है भाई। अगर हर चीज़, अगर किसी किसी का जो भी चीज़ उसमें बच रहा है, टाइम बच रहा है, पैसे बच रहे हैं, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। हर चीज़ देखनी होती है, गुड गुड गुड। और शॉपिंग करना बड़ी मुश्किल, बड़े मुश्किल है। क्यों भाई, क्यों मुश्किल है, किसका मैसेज है ये? मेरी बेटी की शादी है 13 अगस्त को, तो शॉपिंग करनी है। अरे कितना मज़ा आता है, और शादी की शॉपिंग में तो ओए होए, क्या बात है। कोई साड़ी खरीदने हैं, लहंगे खरीदने हैं, ज्वेलरी खरीदने हैं, बस क्या क्या नहीं खरीद रहे, खूब। और जब थककर घर पर आते हैं और चाय मिलती है ना, आ हा हा हा, कितना मज़ा आता है ना, उसमें तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसी भी मतलब चीज़ें शेयर हो रही हैं, मज़ा आ रहा है मुझे, लेकिन मुश्किल नहीं होती है, आसान होती है, अच्छा लगता है। इंजॉय कीजिए शॉपिंग को, वो भी शादी वाली शॉपिंग आपकी बेटी की, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। कब आना है ये भी बता दीजिए, साथ में इन्वाइट भी कर दीजिए। अगला मैसेज जो आना चाहिए ना, आपका इन्विटेशन खाना चाहिए। एमरीन इंतजार कर रही है, ओके। और हम दोनों को कौन सी शॉपिंग अच्छी लगती है, नाम क्या है? छाया का मैसेज है, लिखा है हम दोनों, हमें दोनों शॉपिंग अच्छी लगती है, कभी ऑनलाइन तो कभी मार्केट वाली भी। सस्ती चीज़ें बस मिलनी चाहिए, शॉपिंग तो दोनों ही बढ़िया है। क्या बात है, सस्ती चीज़ें मिलनी चाहिए, अच्छी बात है, सस्ती हो और अच्छी हो तो बस वाकई में मज़ा आ जाता है। तो मुझे और भी मैसेज का इंतज़ार है, फटाफट बताएं कि ऑनलाइन शॉपिंग, अभी तो जो वो बढ़ रहा है ना, वो ऑनलाइन शॉपिंग का नहीं बढ़ रहा है, वो मार्केट वाली शॉपिंग का, क्योंकि साथ में एंटरटेनमेंट करने को भी मिल रहा है ना। कहीं मत जाए ना, हमारे साथ रहें, कहाँ जाके क्या करेंगे, इतनी अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं, मज़ा आ रहा है। तो बस ये वाला गाना सुनते हैं, 1942 अ लव स्टोरी। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, लेकिन ये जरूर कहो कि शॉपिंग आपको कौन सी पसंद है। सुनते रहे आकाशवाणी रेनबो, एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। एमरीन आपके साथ है, आपके जज्बात मेरे साथ हैं।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी रेनबो और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी एमरीन। और बिना टाइम इधर उधर किए तो फटाफट मैसेज ले लेती हूँ, क्योंकि टाइम पता है ना क्या हो रहा है, 6:48 और पूरे 5 सेकंड हो गए हैं। प्रवीण चौहान का मैसेज आ गया, कहते हैं मार्केट जाकर शॉपिंग करना ना मुझे बहुत बहुत पसंद है, शॉपिंग के साथ साथ रौनक देखने को मिलती है, घूमने फिरने को मिल जाता है और ऑनलाइन जैसा जो वेट है वो भी नहीं करना पड़ता। खैर अपनी च्वाइस है, आपको अच्छा लगता है मार्केट जाकर रौनक देखने को जो मिलती है ये सबसे अच्छी बात लग रही है, अच्छा लग रहा है, साथ में एंटरटेनमेंट भी जो है ना वो भी होता रहता है। गुड गुड गुड, अच्छी बात है। और ये मैसेज है किसका, ये है अमरीन जी गुड इवनिंग, क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, इन्हें मुझे भी बाजार जाकर शॉपिंग करना, मार्केट जाकर अच्छा लगता है, क्योंकि मार्केट में हर तरह की जो है ना चीज़ें वो मिल जाती हैं, चाहे वो सस्ती से सस्ती हैं या महंगी से महंगी है, आपके अकॉर्डिंगली। नियमित का मैसेज, किसका मैसेज है ये, नियमित और हर्ष का मैसेज है, ठीक है, चलिए गुड। और इनको जो है कौन सी शॉपिंग अच्छी लगती है, ऑफलाइन अच्छा मार्केट जाकर इन्हें जो है बहुत शॉपिंग करना अच्छा लगता है। जावेद आलम मोहम्मद को कहते हैं कि बढ़िया रहता है कि मार्केट जाओ, शॉपिंग करके आओ, साथ में एंटरटेनमेंट भी करके आओ। गुड गुड गुड, मुझे तो मार्केट जाकर बहुत अच्छा लगता है शॉपिंग करना, क्या बात है। बसंत कुमार जी, आपको भी मार्केट जाकर ही अच्छा लगता है, गुड। और सुदर्शन मुक्ति, अनीता मुक्ति सिमरन, इन्होंने कहा है कि क्या कहा है, हमें दोनों, अच्छा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चीप एंड बेस्ट भी रहता है और कई बार टाइम भी बच जाता है, देखते हैं हमें किस अकॉर्डिंगली, मतलब सिचुएशन को देखते हुए उस तरह की जो शॉपिंग है ये कर लेते हैं। गुड, अच्छी बात है, टाइम का जो है हर चीज़ का देखना और उसके साथ तालमेल बिठाना ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये मैसेज किसका है, अच्छा बर्थडे आपकी बेटी का, बोला था कि नाम बताओ, पूछा था चन्नू, क्या बात है चन्नू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हमेशा खुश रहो, हमेशा ब्लेसिंग्स तुम्हारे लिए बहुत बहुत बहुत बहुत सारी पूरे रेनबो की तरफ से, और अपने माँ बाप का नाम तुम खूब रोशन करो, गुड, क्या बात है। और ये मैसेज किसका आया है, ये मैसेज है ऑनलाइन शॉपिंग का भी जो है अपना ही मज़ा है, पर मार्केट वाली शॉपिंग के सामने क्या बात है, कम चाय कम पानी वाला मसाला, अच्छा बार्गेनिंग का अपना ही मज़ा होता है कहते हैं, अच्छा ये इसलिए ले रही हूँ मैसेज। यशवंत का मैसेज है, कहते हैं साथ में अगर माँ हो, दीदी हो या वाइफ हो, कोई भी मतलब समझी, फिर देखो बार्गेनिंग का क्या खेला होता है। बार्गेनिंग का खेल होता है, अच्छा मतलब एक तो पैसे बचा रहे हैं शॉपिंग में, वो कर रहे हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है सस्ते में मिल जाए अच्छा सामान, और उसमें देखो ऐसी बातें, क्या बातें, मतलब कुछ भी, हाँ कुछ भी। और मार्केट जाकर किसको शॉपिंग करना अच्छा लगता है, कैलाश शर्मा का कहते हैं मार्केट जाकर शॉपिंग करना मुझे हमेशा ही बहुत एक एक्साइटमेंट बना रहता है, ये बात तो मेरे दिल की कही है आपने, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, एक एक्साइटमेंट बना रहता है कि शॉपिंग करनी है, मार्केट जाना है और मार्केट जाकर हमें खूब खूब खूब शॉपिंग करनी है, अच्छा लगता है ना, एक्साइटमेंट तो किसी भी चीज़ का हो तो मज़ा आता है, शॉपिंग इन मार्केट। पुष्पांजलि क्या लिखा है, मतलब रूटीन लाइफ से थोड़ा सा चेंज होता है, गुड, अच्छी बात है, ये भी बहुत बड़ी बात है। खंबागढ़ी ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, बालू राजड़ का मैसेज है, क्या बात है, मतलब रिस्पांस भी बताओ मुझे आप कि किस तरीके से मुझे इसका रिस्पांस भी देना है, क्योंकि मैं गलत रिस्पांस देने से बेहतर है मैं चाहूँगी अच्छा। खंबा गणी जो बोला ना इसलिए, गणी खंबा सही कहा, बताना ज़रूर, बताना ज़रूर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। और इन्हें भी, इन्हें जो है ऑनलाइन शॉपिंग बहुत अच्छी लगती है, अच्छी बात है, टाइम का जो है वो टाइम मेरे ख्याल से बचाना चाहते हैं। अवध का भी मैसेज आ चुका है, मार्केट वाली भाव ताओ वाली शॉपिंग का मज़ा ऑनलाइन में कहाँ, अच्छा ऑनलाइन में कहाँ, मतलब वहाँ जाके वही ना शॉपकीपर्स के मतलब सबके एक्सप्रेशंस देखने हो आपको भी फेस के, क्योंकि एक मैसेज आया था कि जो भाव हाव भाव देखने होते ना दुकानदार के उसमें बड़ा मज़ा आता है, बताओ इसमें भी मज़ा आता है, क्या बात है। और इमरीन क्या लिखा है, नरेंद्र सोनी का मैसेज है पटियाला से,

हमें तो मार्केट जाने में ही बहुत मजा आता है, मुझे भी मार्केट जाने में बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है मार्केट जाके शॉपिंग करना। ये मैं क्योंकि मुझसे भी सब पूछ रहे थे, आप भी बताओ, तो मुझे भी मार्केट जाकर शॉपिंग करने में बहुत अच्छा लगता है। गोलगप्पे खाने को मिलते हैं ना बहुत, उन्होंने लिखा है चाट पापड़ी तो अच्छा लगता है। फ्रेंड्स के साथ हो या अपने कलीग्स के साथ हो या अपने रिलेटिव्स के साथ हो, बातें करने का जो मौका मिलता है ना साथ में, अरे तुम्हें यू पसंद आ रहा है, अच्छा अच्छा मुझे ये पसंद आ रहा है, फिर पता चलता है वो ही पसंद आने लगता है, फिर ये होता है कि नहीं नहीं अलग अलग लो। ये जो चीज़ें चलती हैं ना, ये ऑनलाइन शॉपिंग में तो नहीं हो पाती हैं मार्केट में, लेकिन टाइम कई बार ऑनलाइन शॉपिंग पर अगर हम नज़र डालें तो ऑनलाइन शॉपिंग का भी ये है कि भाई टाइम बच जाता है, कई बार चीज़ें हमें बहुत उसमें आती हैं ना, ऑफर्स में आती हैं, तो ऑफर्स में भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान है, लेकिन यहाँ तो अपनी चॉइस की बात चल रही है, बात चल रही है कि मार्केट कर अच्छा लगता है या फिर भाई ऑनलाइन शॉपिंग अच्छा लगता है, यहाँ बात ये चल रही है। और भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, कोशिश की आज मैंने सारे मैसेज शामिल करने की। मेहताब का भी मैसेज आ चुका है दिल्ली से, मेरी बात का जवाब नहीं दिया ना, शॉपिंग करना नहीं अच्छा लगता मुझे, तो ऐसा लग रहा है ना नहीं अच्छा लगता आपको शॉपिंग करना, तभी शॉपिंग की कोई बात ही नहीं की है। और ये किसका है, राजेश भल्ला का मैसेज है। आपने भी बात का तो जवाब नहीं दिया है, बता तो दीजिए कि शॉपिंग कौन सी पसंद है। और अब देखिए ना टाइम क्या हो रहा है, 6:53 हो गए हैं। देखिए वक्त भी कैसे जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी भाग रहा है। रंजीत कुमार का भी मैसेज आ चुका है, मुझे तो दोनों शॉपिंग अच्छी लगती है, ज़रूरत और सुविधा के अनुसार। देखा मैंने कहा था ना कि कईयों को दोनों शॉपिंग अच्छी लगती है, लेकिन कईयों को बिल्कुल एक पर्टिकुलर ही अच्छी लगती है। इन्हें लगता है मतलब रंजीत कुमार को कि सुविधा के अकॉर्डिंगली जहाँ मौका मिलता है वहाँ शॉपिंग कर लेता हूँ, गुड अच्छी बात है। ये किसका है, मनीष कुमार का मैसेज है दिल्ली से, लिखा है कि अपनी शॉपिंग तो ऑफलाइन में भी पसंद करते हैं, मतलब पर्सनल अपनी, और कुछ चीज़ें फिक्स जिनकी क्वालिटी का कोई इशू नहीं होता वो हम ऑनलाइन ख़रीदना भी पसंद करते हैं। अच्छा दोनों ही हैं, दोनों ही चीज़ें हैं, ये गुड है। मैं क्योंकि मैसेज मैंने आपको बताया था कि अगर लंबे लंबे मैसेज हैं तो मैं और मैसेज शामिल नहीं कर पाती हूँ, इस कर पाती हूँ और फिर शिकायतें हो जाती हैं, लेकिन आज एक देखने वाली चीज़ है, मैंने ज़्यादातर सबके मैसेज शामिल किए हैं लेकिन किसी ने ये नहीं कहा। शिकायतें तो बड़ी जल्दी हो जाती है, मेरा मैसेज शामिल नहीं किया, मेरा मैसेज शामिल नहीं किया, लेकिन कोई मुझे ये कहते कि आज आज मेरा मैसेज शामिल कर लिया एम्ब्रीन, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया आज, मतलब ये किसी ने नहीं, शिकवा 1 सेकंड में है, शिकायत 1 सेकंड में है, दिल तोड़ना 1 सेकंड में है, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा हाँ हाँ मेरा मैसेज नहीं पढ़ा लो आ गया यही सोच रही थी मेरा मैसेज नहीं पढ़ा। किसका ना किसका मैसेज, कृष्ण कुमार का, मैं दिल्ली में रहता हूँ और आज शॉपिंग के बारे में कह रहे हैं कि मेरे से शॉपिंग करने के टाइम पर तो मोल भाव नहीं होता है, इसके लिए तो मेरी वाइफ जी भी कहती हैं घर पर, मैं घर पर आराम करता हूँ, शॉपिंग मुझे ही कर, अच्छा मतलब लिखा है कि शॉपिंग जो है वो उनकी वाइफ ही कर लेती है मेरे ख्याल से और वो घर पे, चलिए खैर अच्छी बात है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया करो उसमें क्या है। देखिए आपने जैसे कहा कि मेरा मैसेज नहीं पढ़ा, फ़ौरन पढ़ लिया, फ़ौरन पढ़ दिया, चलिए खैर। सुनते रहे आकाशवाणी FM रेनबो दिल से दिल तक, और अभी तो मैं जा रही हूँ लेकिन फिर से आऊँगी ना 8 बजे फिर से आऊँगी, तो बस अपना ख्याल रखें और अपने अपनों का ख़ास ख्याल रखें। और यही कहूँगी कि ये जो मौसम चल रहा है वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा तबीयत को लेकर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और यही मतलब शॉपिंग जो है, शॉपिंग के लिए तो सिर्फ यही कहूँगी कि वाकई में कि जब शॉपिंग करते हैं ना तो बहुत इंजॉय करते हैं, और हमें अपने इंजॉय के पलों को जो है ना वो जीना चाहिए, खोना नहीं चाहिए। मतलब अब वो इंजॉय आपको शॉपिंग करने पर मिल रहा है, मार्केट जाकर मिल रहा है, ज़्यादातर लोगों ने सबने यही बोला है, मेरे सभी दोस्तों ने बोला है कि मार्केट जाकर जो शॉपिंग करने का मज़ा है वो बस बहुत ज़बरदस्त है। तो इससे क्या होता है ना, दिल से जो है ना, दिल से खुशी मिलती है, तो बस हमें क्या चाहिए, खुशी हासिल करनी है। तो फिलहाल एमरीन को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर अभी थोड़ी देर में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का खास ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।

0: the way about all ye cravalio. That's the song from the soundtrack from to the movie Moana. Dear listeners, time now for a very short break. Stay with us. The evening is still very young and the music continues right after.
1: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
2: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
1: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
4: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
0: वेलकम बैक, दिस इज FM रेनबो 102.6 MHz एंड यू आर ट्यून्ड इनटू द प्रोग्राम ऑफ रिक्वेस्टेड म्यूजिक कॉल। यू आस्क्ड फॉर इट विद मी लिपिका दास। द नेक्स्ट रिक्वेस्टेड ट्रैक दैट्स कमिंग अप योर वे इज बाय फेमस R&B ग्रुप बॉयज टू मेन। इट्स अ ग्रैमी अवार्ड विनिंग ट्रैक फ्रॉम 1992 एंड द सॉन्ग इज कॉल्ड End of the Road। दिस ट्रैक इज गोइंग आउट फॉर अनदर लवली लिसनर फ्रेंड इन रोहिणी दिल्ली एंड शी इज मनीषा।

0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: Welcome back, everybody. And before I play you the final track this evening, I would like to thank each one of you for tuning into our program. I'm Lipika Das, and I'll be back at 10 p.m. with another session of Western music. Have a nice evening and stay tuned to FM Rainbow 102.6 megahertz, station of the nation.

पूरे 8 बज चुके हैं। पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 25 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी दे दी। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से सांसद के सुचारू संचालन की अपील की है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती किया है। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा ने झारखंड बंद का आह्वान किया है। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कुल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और कई पूर्व अधिकारियों को सीरियाई अदालत ने मानवता के खिलाफ अपराध सुनियोजित हत्या और यातना सहित कई अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है। पाकिस्तान सरकार के प्रायोजित आतंक को सबके सामने लाने के लिए पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की ईगा स्वीटेक ने रूस की डायना श्राइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ यानी आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो। जी हाँ, 8:03 और पूरे 15 सेकेंड, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी अमरीन। प्रोग्राम आपका अपना कौन सा, जी हाँ, म्यूजिक मस्ती। तो बस इस एक घंटे खूब इंजॉय करेंगे, गानों को मस्ती करेंगे इन गानों के साथ। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, यानी आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।
2: सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये, ये, ये, ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक प्रोग्राम आपका अपना म्यूजिक मस्ती है। अमरीन आपके साथ है। सफर अच्छा गुजरना चाहिए। आप वो सफर चाहे ट्रेन से कर रहे हो, आप सफर चाहे वो किसी भी चीज का हो, सफर चाहे आपके वो गानों का हो, तो बस मजा आना चाहिए। तो बस उस मजा जो लाने के लिए मैं काम कर रही हूँ ना, वो गाने बहुत अच्छे लेकर आई हूँ। तो कहीं मत जाएं, हमारे साथ बने रहें, क्योंकि मजा तो मजा है ना। वो गानों से पूरा वक्त गुजर जाएगा। ये एक घंटा कैसे गुजर जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। तो बस 8:12 और

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

वक्त क्या हो रहा है? वक्त हो रहा है बता दूं 8:22, बल्कि 8:23 हो चुके हैं। ये वक्त भी जो है ना कितनी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जाता रहता है। यही तो होता है जो खुशी के लम्हे होते हैं ना, हम कहते हैं कि अरे कितने ज़रा से थे। नहीं, वाकई में सारी चीज़ें ना इक्वल होती हैं, बस जो ये वक्त है ना ये हमें हर चीज़ बताता है कि वक्त के साथ भागो और उसको इंजॉय करो और उस लम्हे को जी लो। तो बस इस लम्हे को जिए और जीते रहें और हमेशा आकाशवाणी FM रेनबो सुनते रहें, कहीं मत जाएं। म्यूज़िक मस्ती में मैं हूँ आप के साथ, आपकी अपनी एम्ब्रेन।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: हाय
2: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

8:36 और पूरे 57 सेकंड हो गए हैं। आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती और एक के बाद एक, एक के बाद एक गाना, बस जिसमें खूब खूब खूब थिरकने का अगर मन कर रहा है तो थिरक लीजिए। कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ, यानी आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

8:01 और पूरे 8 सेकंड हो गए हैं, प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती। देखिए ना कैसे कैसे कैसे कैसे वक्त भाग रहा है, और हम वक्त को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते। तो बस पकड़ नहीं सकते ना, लेकिन साथ तो चल सकते हैं। तो बस एंजॉय कीजिए हमारे साथ, यानी आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।

8:55 और पूरे 14 सेकंड हो गए हैं फिलहाल। अमरीन के भी घर जाने का वक्त आ गया है। जब तक जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे, हमेशा कहती हूँ ना। तो बस अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास का खास ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। अब वक्त है मुख्य समाचारों का। संसद ने न्यायाधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा गया है। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक को भी स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आग्रह किया। भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में भाजपा के झारखंड में बंद से जनजीवन प्रभावित हुआ। भारत ने दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता की आवश्यकता पर बल दिया। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया और पाकिस्तान सरकार के प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के कारण सड़कें और राजमार्ग बाधित होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्ति और पुरस्कार प्रदान करेंगी। और सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और कई पूर्व अधिकारियों को सीरियाई अदालत ने मानवता के खिलाफ अपराध, सुनियोजित हत्या और यातना सहित कई अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है। आकाशवाणी पर ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

जी हाँ साहब, आकाशवाणी का रेनबो चैनल आप ट्यून किया है 102.6 FM पर। मैं हूँ आपके साथ है खुर्शीद, और प्रोग्राम शुरू हो चुका है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी याद आती रही। और साहब बात बारिश की करते हैं आज, क्योंकि बारिश का दौर चल रहा है, बूंदें पड़ रही हैं कभी और कभी गर्मी भी हो रही है। बहरहाल बारिश सिर्फ मौसम नहीं है बल्कि ये एक यादों का खूबसूरत सिलसिला होती है।

वैसे आपको बताऊं कि पहली बूंद गिरते ही ना जाने कितनी यादें जहन में उतर आती हैं। कभी बचपन में कागज की नाव चलाने का शौक, तो कभी भीगते हुए घर लौटने की जल्दी, वैसे कभी माँ की गर्मा गर्म पकौड़ी की खुशबू भी बड़ी याद आती है, और कभी किसी के साथ एक ही छतरी में भीगने की वो मासूम सी ख्वाहिश। बहरहाल ये जो बारिश का मौसम है, इसमें बहुत सारी यादें जो हैं वो जहन में उतर आती हैं। बहरहाल बहुत सारी बातें करनी है आपसे इस प्रोग्राम में, लेकिन फिलहाल ये गीत आपके लिए।

वैसे साहब, आपने कभी गौर किया है कि बारिश की हर बूंद एक जैसी नहीं होती, बल्कि हर इंसान उसे अलग अलग तरह से महसूस करता है। किसी के लिए ये छुट्टी की खुशी होती है, तो किसी के लिए गर्म चाय का मज़ा होती है ये बारिश, और किसी के लिए किसी अपने की याद। वैसे कई बार खिड़की पर गिरती बूंद, बारिश की बूंद, ऐसा एहसास दिलाती है जैसे ज़िंदगी कुछ देर के लिए कहीं रुक गई है और कह रही है कि ज़रा ठहर जाओ, अपने लिए भी कुछ पल निकाल लो। शायद इसलिए बारिश का मौसम सिर्फ भीगने का नहीं होता, बल्कि अपने दिल से मिलने का मौसम भी होता है। वैसे आपका क्या ख्याल है?

0: बचपन की बरसात और आज की बरसात में बस इतना सा फर्क है कि तब हम बारिश में भीगने के बहाने ढूंढते थे और आज उससे बचने के बहाने ढूंढते हैं। तब कपड़े गीले होने की फिक्र नहीं होती थी और आज मोबाइल भीगने की भयंकर चिंता हो जाती है। लेकिन सच कहूँ तो बारिश आज भी वही है, बदले सिर्फ हम हैं। कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ से थोड़ा सा वक्त चुरा कर बारिश को महसूस भी करना चाहिए। यकीन मानिए, भीगता सिर्फ जिस्म नहीं है बल्कि दिल भी हल्का हो जाता है और तभी समझ में आता है कि कुछ खुशियाँ मुफ्त में होती हैं, बस उन्हें महसूस करने का हुनर होना चाहिए। बहरहाल अगले गीत की तरफ बढ़ें उससे पहले ये छोटा सा वक्फा यानी कहें ब्रेक।
1: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
2: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
1: इम्पॉसिबल
2: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सरायकाले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 एफएम पर। मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद, प्रोग्राम आपकी याद आती रही। बहरहाल साहब, बारिश की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सिर्फ कहीं कि ज़मीन को ही नहीं बल्कि दिल को भी भिगा देती है। कभी खिड़की के पास बैठकर बारिश को देखिए, हर बूंद जैसे कोई पुरानी कहानी कहती हुई सुनाई देती है। कोई अधूरी सी हंसी है तो कोई भूली हुई शरारत, कोई पुराना सफ़र या फिर किसी अपने के साथ बिताए हुए वो वक्त, वो शाम जो आज भी यादों में ताज़ा है। बारिश हमें ये भी सिखाती है कि बादल चाहे या कितने ही घने क्यों ना हों, एक दिन छट ही जाते हैं। और शायद ज़िंदगी भी कुछ ऐसी है, मुश्किलें हमेशा हमारी ज़िंदगी में नहीं रहती, लेकिन उनसे मिली हुई सीख हमेशा हमारे साथ रहती है। बहरहाल, अगर मौसम का मज़ा लेना है तो घर से थोड़ा सा निकलिए,

0: राजवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग डेली।

0: NCR, always wherever you are. 102.6 आपके लिए.
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो.
2: जी हाँ, आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM पर. मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद. प्रोग्राम आपकी याद आती रही.

कभी कभी पहली बारिश और पहली मोहब्बत जैसे लगती है, जैसे धीरे धीरे आती है और दिल को छू कर चली जाती है और फिर अपने पीछे कोई ऐसी खुशबू छोड़ देती है जो बहुत दिनों तक हमारे साथ रहती है। लेकिन हर बारिश सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं सुनाती, कई बार हमें याद भी दिलाती है कि ज़िंदगी में जो पल आज हमारे पास है वो कल हमारी सबसे बड़ी याद बनने वाली है। इसलिए मौसम का इंतज़ार मत कीजिए, मौका मिले तो अपनों के साथ बैठिए, चाय पीजिए, बातें कीजिए और यादें जो हैं वो अपने आप बनती चली जाएंगी और उन्हें एक साथ मिलकर जीना सीखिए।

अभी जोड़ी ग्रीन बिल चैनल पर प्रोग्राम आपकी याद आती रही और यादों का ये सफ़र आगे बढ़ रहा है। और अभी कुछ देर पहले अपने बारिश की बात कर रहे थे, लेकिन अब ज़रा हट कर कुछ सोचते हैं तो बारिश याद नहीं बनती। याद बनते हैं वो लोग जो उस बारिश में हमारे साथ थे, यानी हमारा कोई दोस्त, कोई भाई बहन या फिर हमारे बेहद अजीज़। ज़िंदगी के मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ चेहरे हर मौसम में हमारे साथ चलते हैं। और शायद यही रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती है।

एक बात मैंने हमेशा महसूस की है कि यादें जो है वो कभी अकेली नहीं बनती हैं। ये हर याद के पीछे कोई ना कोई इंसान ज़रूर होता है। कोई हमें हंसाता है तो कोई हमें समझाता है और कोई जो बिना कुछ कहे हमारी फिक्र करता है। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं तो उन्हें सिर्फ याद मत कीजिए बल्कि उनके साथ नए लम्हे भी बिताइए, क्योंकि कल की यादें आज के रिश्तों से ही बनती हैं। बहरहाल देखते देखते ये महफिल भी अपने इख्तिमाम तक पहुंच रही है, लेकिन उससे पहले ये गीत आइए सुनते हैं।

और साहब देखते देखते वक्त आपसे विदा लेने का हो गया है। मौसम बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है, लेकिन सच्चे रिश्ते और उनसे जुड़ी यादें कभी पुरानी नहीं होती। बहरहाल अब इस प्रोग्राम से इजाज़त, और जाते जाते हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अपना ख्याल रखें और 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी प्रोग्राम रंग महफिल में।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

अभी जुड़ के रेनबो चैनल पर अब वक्त है मुख्य समाचारों का। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। विधेयक में राष्ट्रीय न्याय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा गया। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा है कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आग्रह किया है। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के कारण सड़कें और राजमार्ग बाधित होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे और सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल बस असद और कई पूर्व अधिकारियों को सीरियाई अदालत ने मानवता के खिलाफ अपराध, सुनियोजित हत्या और यातना सहित कई अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है। आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 एफएम पर। मैं हूं आपके साथ खुर्शीद। प्रोग्राम शुरू हो चुका है रंग महफिल। अजाब इंसान की पहचान सिर्फ उसके चेहरे से नहीं होती बल्कि उसके अल्फाजों से भी होती है। कभी किसी अजनबी की दो मीठी बातें भी पूरा दिन हमारा खूबसूरत बना देती हैं और कभी अपने ही किसी सख्त लहजे का असर बरसों तक दिल में रह जाता है। और यही वजह है कि हमारे बुजुर्ग हमेशा हमसे कहते थे कि बोलिए तो ऐसा बोलिए कि अल्फाज खत्म हो जाएं मगर उसकी मिठास बाकी रहे। गजल भी हमें यही सिखाती है, कम अल्फाज लेकिन गहरे एहसास। आज की महफिल उन अल्फाज के नाम जो टूटे हुए दिल को सुकून दे, थके हुए इंसान को उम्मीद दें और मुस्कुराते हुए चेहरे पर भी एक नई मुस्कान ले आए।

कभी आपने गौर किया है कि दुनिया की सबसे कहें कि सबसे सस्ती चीज़ क्या है? सबसे सस्ती चीज़ है वो अल्फाज, और सबसे कीमती चीज़ क्या है? कीमती चीज़ भी वही अल्फाज हैं जब दिल से निकलते हो। यानी किसी ने कहा है कि आपका ख्याल रखिए, या फिर घर पहुंचकर बता देना अगर आपसे ये अल्फाज आपसे कुछ कहता है, कोई कहता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, अपना

ख्याल रखिए। ये छोटी छोटी जुमले सुनने में बड़े सीधे लगते हैं, लेकिन इन्हीं से रिश्ते मजबूत होते हैं। गजलों की दुनिया में भी लफ्जों की बड़ी अहमियत है। हर शेर पहले दिल में उतरता है और फिर वो धीरे धीरे जुबां पर आ जाता है।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जब आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने टीम के 102.6 FM पर मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद। और शायर कहता है कि जुबां का जख्म दिखाई नहीं देता, जुबां का जख्म दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे देर से वो जख्म भरता है। इसलिए बोलने से पहले एक पल जरूर ठहर जाना चाहिए, क्योंकि अच्छा लहजा सिर्फ तहजीब नहीं होती बल्कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान भी है। हम शायद हर दिन किसी की मदद ना कर पाएं, लेकिन अपने अल्फाज से किसी का दिल दुखाने से तो बच सकते हैं ना। और जब यही अल्फाज सुरों का साथ पा लेता है तो गज़ल बन जाती है। सच यही है। बहरहाल रंगे महफिल आप सुन रहे हैं 102.6 FM की लहरों पर, खुर्शीद आपके साथ है।

रंगमंच पर 102.6 एफएम ग्लेरो पर सवार हैं आप इस वक्त। मैं हूं आपके साथ खुर्शीद। और साहब, कुछ किताबें हम एक बार पढ़ते हैं और फिर अलमारी में जाकर उन किताबों को रख भी देते हैं, लेकिन कुछ किताबें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जिन्हें हम हर बार पढ़कर एक नया मतलब निकालते हैं। और गज़लें भी कुछ ऐसी ही होती हैं। आज जो शेर आपको मोहब्बत का एहसास देता है, वही कुछ साल बाद, कुछ वक्त बाद ज़िंदगी का तजुर्बा लगने लगता है। यानी अच्छी शायरी की यही खूबी है कि वो उम्र के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि हर गुज़रे साल के साथ और ज़्यादा गहरी हो जाती है। शायद इसलिए हमारे बड़े बुज़ुर्ग गज़लों को सिर्फ सुनते नहीं थे, बल्कि गज़लों को जीते थे, क्योंकि गज़लों का हर एक अल्फाज हमारी ज़िंदगी होता है।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
7: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
5: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
5: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
8: मंगल भवन मंगल हारी,
9: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
10: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
11: जैन साहब, आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM के लहरों पर। इस वक्त खुर्शीद आपके साथ है। और साहब, कभी आपने गौर किया है कि अच्छे लफ्ज़ या कहें कि अच्छा लफ्ज़ किसी का पूरा दिन बदल सकता है, या फिर एक सच्ची तारीफ किसी का आत्मविश्वास जो है वो बढ़ा देता है। यानी एक छोटी सी माफ़ी किसी रिश्ते को फिर से ज़िंदा कर सकती है, और एक दिल से निकली हुई दुआ वो भी कभी खाली नहीं जाती। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपके लफ्ज़, आपके अल्फाज लोगों के लिए मरहम बन जाएं, जख्म ना बने। बस इतना ख्याल रखना है आपको, क्योंकि इंसान को उसकी दौलत से पहले उसके बोल याद रखे जाते हैं। बहरहाल, अब सुनते हैं एक ऐसी गज़ल जिसके अल्फाज आज भी उतने ताज़ा हैं जितने बरसों पहले थे।

रंगी महफिल 102.6 FM की लहरों पर सवार हैं आप और साहब। ज़िंदगी में बहुत सी बातें हम भूल जाते हैं कि किसने क्या कहा, कहाँ मिले, कब बिछड़े, लेकिन एक चीज़ हम ज़िंदगी में कभी नहीं भूलते, किसी ने हमें कैसा महसूस कराया। इंसान अल्फाज याद नहीं रखता, अल्फाज का असर याद रखता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी किसी से मिलें तो आपकी मौजूदगी उसके दिल में सुकून छोड़ दे। आपकी आवाज़ में अपनापन हो, आपकी बातों में अदब हो और आपकी मुस्कराहट में सच्चाई, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हमें उम्र भर याद रहती हैं। बहरहाल रंग महफिल आप सुन रहे हैं 102.6 FM की लहरों पर। अब वक्त हो गया है कि आपसे इजाज़त भी ली जाए, क्योंकि जाएंगे तभी तो लौट कर वापस आएंगे। बहरहाल इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा, लेकिन जाते जाते हमेशा की तरह एक इल्तिजा आपसे यही है कि अपना ख्याल रखिए, उनका भी ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम के लिए और इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।

आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए अब तक के मुख्य समाचार। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा गया है। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा है कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के कारण सड़कें और राजमार्ग बाधित होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया है।

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। पश्चिमी कोलंबिया में सोमवार को आए शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या 200 से ज्यादा हो गई है और सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को सीरियाई अदालत ने मानवता के खिलाफ अपराध, सुनियोजित हत्या और यातना सहित कई अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोता सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर और साथियों स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है रात्रि के 2:00, माफ़ कीजिएगा। देखिए आपसे मुलाकात के लिए इतने बेसब्रे हम भी हो जाते हैं कि देखिए मेरी जबान भी जो है कैसे फिसल रही है। समय हो रहा है रात्रि के 12:02:46 और अब आपके लिए लाए हैं कार्यक्रम जीरो आशो। तो लीजिए आनंद इन खूबसूरत से गीतों का मेरे यानी अलमास रजा के साथ। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यारा सा नमस्कार।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम जीरो आर शो। इसके साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अलमास रजक को आज्ञा दीजिए, कुछ ही देर में आपके साथ होंगी आरती शर्मा समाचार लेकर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा गया है। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के मौके पर नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। नासा ने ऑटोमन समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। पश्चिमी कोलंबिया में सोमवार को आए शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या 200 से ज्यादा हो गई है। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को सीरियाई अदालत ने मानवता के खिलाफ अपराध, सुनियोजित हत्या और यातना सहित कई अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: श्रोता, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेडियो चैनल और अब वक्त है कार्यक्रम जीरो आर शो का। और इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरती।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुं सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: शुदा आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम सुहानी रात और मैं हूँ आपके साथ आरती। तो देखिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से जयंत जी और ये कह रहे हैं कि आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और ये एक फिल्म है बेवफा सनम, इससे गीत सुनना चाहते हैं। तो चलिए आप ही की पसंद पे हम अगला गीत सुनाते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में।

तो श्रोताओं, अगली फरमाइश जो हमें भेजी है, ये हमें मैसेज कर रहे हैं एम राजकुमार जी तिरची से, और ये सुनना चाहते हैं फिल्म मैंने प्यार किया से कोई भी गीत, ये हमारा सुनना चाहते हैं। तो चलिए, उन्हीं की पसंद पे अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में।

लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल का नाम बदलने के लिए केरल विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा ने कल ही इस विधेयक को पारित कर दिया था। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा गया है। भारत ने कहा है कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के मौके पर नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ओमान की खाड़ी में नाकाबंदी तोड़ने पर पनामा के झंडे वाले एक जहाज पर गोलीबारी की। पश्चिमी कोलंबिया में सोमवार को आए शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या 200 से ज्यादा हो गई है। और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अमेरिका के ब्रेंडन नकाशिमा ने इटली के लुसियानो डार्डेरी को सीधे सेटों में 6-2, 6-3 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोता सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, समय हो रहा है 2:54। और लीजिए अब आइए सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम भुलाए ना बने। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम भुलाए ना बने। इसके गीत के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि का 3 बजने जा रहा है। कुछ ही पलों में हमारे साथी समाचार सुनेंगे। मुझे यानी अलमास रजा को आज्ञा दीजिए, आरती आपके साथ होंगी कुछ ही पलों में। नमस्कार।

मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल का नाम बदलने के लिए केरल विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा ने कल ही इस विधेयक को पारित कर दिया था। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। विधेयक में राष्ट्रीय न्याय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा गया है। भारत ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के मौके पर नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपनी महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अमेरिका सेना ने कहा कि ओमान की खाड़ी में नाकाबंदी तोड़ने पर पनामा के झंडे वाले एक जहाज पर गोलाबारी की। पश्चिमी कोलंबिया में सोमवार को आए शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या 200 से ज्यादा हो गई है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अमेरिका के ब्रेंडन नकाशिमा ने इटली के लुसियानो डडेरी को सीधा सेटों में 6-2, 6-3 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज का, और इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरती।

श्रोता, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं मिडनाइट मेलोडीज। और देखिए, इस खूबसूरत से सफ़र में हमारे साथ एक श्रोता ने अपनी पसंद की फरमाइश की है और वो सुनना चाहते हैं प्रेम रोग फिल्म से एक गीत। तो चलिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं प्रेम रोग से, और ये गीत है लता मंगेशकर की आवाज़ में।

तो दोस्तों, अगली फरमाइश जो हमें भेजी है, ये छाया रानी जी हमें मैसेज कर रही हैं गांव नवली गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने फरमाइश की है फिल्म खानदान से, और ये सुनना चाहती हैं गीत जिसके बोल हैं ये मुलाकात एक बहाना है।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु,
1: आए हाय।
0: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा ना इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।

0: घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
2: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा, कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
0: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
3: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल

पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी

0: बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
2: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: क्या है बदल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मिड नाइट मेलोडीज़ मेरे यानी आरती के साथ, और इसी के साथ ये हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, फिर उसके बाद समय रहेगा हमारे कार्यक्रम सारेगामा का, जिसे लेकर आएंगी अलमास जी।

लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल का नाम बदलने के लिए केरल विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा ने कल ही इस विधेयक को पारित कर दिया था। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा गया है। भारत ने कहा है कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के मौके पर नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ओमान की खाड़ी में नाकाबंदी तोड़ने पर पनामा के झंडे वाले एक जहाज पर गोलीबारी की। पश्चिमी कोलंबिया में सोमवार को आए शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या 250 से ज्यादा हो गई है। और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अमेरिका के बैडन नकाशिमा ने इटली के लुसियानी डार्डेरी को सीधे सेटों में 6-2, 6-3 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोता सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय आपको बताई देते हैं, सुबह के 4:03 हो रहे हैं। और लीजिए अब आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सारेगामा। मैं हूं आपके साथ अलमास रजा। ये कार्यक्रम लेकर आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

जब मैं 18 साल का था 1984 में, तो जो उस उम्र में सब करते हैं मैंने भी किया. मुझे एक आई स्टार्टेड लाइकिंग अ गर्ल, लड़की का नाम गौरी था. तो मैं उनके घर के पास जाकर या जहाँ पे नॉर्मली लवर्स मिलते हैं, गार्डन्स में या डिस्कोथेक्स में या रेस्टोरेंट्स में, जाकर उनके लिए गाना गाया करता था. विच वॉज़ गौरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया बारा आके यहाँ.

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग।

0: दिल्ली NCR, always wherever you are. 102.6 आपके लिए.
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना. 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती.

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: डेफिनेटली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

Sexy.

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम सारेगामा। आइए अब सुनते हैं मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल का नाम बदलने के लिए केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा ने कल ही इस विधेयक को पारित कर दिया था। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। विधेयक में राष्ट्रीय न्याय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा गया है। भारत ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के मौके पर नई दिल्ली में पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। नासा ने आर्टमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए कल से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अमेरिकी सेना ने कहा कि ओमान की खाड़ी में नाकाबंदी तोड़ने पर पनामा के झंडे वाले एक जहाज पर गोलाबारी की। पश्चिमी कोलंबिया में सोमवार को आए शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या 250 से ज्यादा हो गई। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा ने इटली के लुसियानो डाड्री को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।